91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

0: 91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला
1: 91.2 MHz पर। ए तोहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कन तोहा सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्या।

ਰੇਡੀਓ ਗੁੰਜਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਗੂੰਜ ਆਪਣੇ ਪੰਨ ਦੀ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये तोहां सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कनेश्वरों तोहां सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दें कार्यक्रम दा अगला गीत।

0: चूही
1: क्या है?
0: क्या ये?
1: आपने तो कहा था जब तक डस्टबिन ना मिले कचरा अपने पॉकेट में रखना, पॉकेट फुल हो गए। छोटी आदतों से ही होता है बड़ा बदलाव।
2: एक नई आदत अपनाते, जब तक डस्टबिन ना मिले
1: इंडिया के हर पॉकेट को ही डस्टबिन बनाते।

0: रवि जी, मैं से जो सुभाष चटनीस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यहीं हॉस्टल में पढ़ता है?
1: जी सर।
0: वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है।
2: ड्रग्स?
1: अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात कराइए प्लीज।
0: अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा।
1: अरे नहीं सर, कोई तो उपाय होगा।
0: जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर अंकल तो स्मार्ट निकले।
3: अबे चल आ जा।
4: वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया, मेरा गेम ओवर।
3: चले, असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत करें।
5: रुको, सोचो और एक्शन लो।

शिव और पार्वती के प्रिय पुत्र, रिद्धि सिद्धि के दादा, विघ्नहर्ता गणपति बप्पा आ रहे हैं अपने भक्तों के द्वार आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने, हर विघ्न बाधा को दूर भगाने और आपकी हर मंगल कामना पूर्ण करने। तो आप सभी को आ रहे इस साल के गणेश चतुर्थी के इस पावन त्योहार की ढेर सारी

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: सुनो, क्या मैं बदतमीज हूँ?
3: Oh, no!
4: नहीं।
2: क्या मैं बहुत बड़बड़ करता हूँ?
4: नहीं।
2: क्या मुझे बोलने की अक्ल नहीं है?
4: नहीं।
2: क्या मुझ में दिमाग की कमी है?
4: नहीं। तो
2: क्या मैं अगली दिखता हूँ?
4: अरे नहीं बाबा।
2: तो फिर मम्मी ऐसे क्यों बोल रही है कि तू अपनी बीबी जैसा बनता जा रहा है?

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापिस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये नए पुराने गीत हर शाम, हर दिन, हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को, जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, पढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों गीत सुहाने नए पुराने

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन।

दोस्तों जब भी मन चाहे आपका सुकून तो जुड़ जाइए नए पुराने गीतों के इस सफर के साथ। नए गीतों की ताजगी और पुराने गीतों की मिठास एक साथ। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं दोस्तों, गीत सुहाने नए पुराने, अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी, और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों गीत सुहाने नए पुराने।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे आज का ये न्यूज बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार के लिए 9.4 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन का अधिग्रहण होगा। एयरपोर्ट के चारों ओर रिंग रोड बनाने की भी तैयारी। हिमाचल में मोटर वाहन नियमों में बदलाव का प्रस्ताव। अब एक मालिक की दो या उससे अधिक समान श्रेणी की बसों को एक ही फ्लिक माना जा सकता है, जबकि टैक्स वास्तविक रूट और सीट क्षमता के आधार पर तय करने का प्रस्ताव है। कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार, जिसका असर शेयर बाजार पर भी पड़ा। सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार और मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड इस महीने के अंत तक सौंप सकते हैं। मंत्रिमंडल में फेरबदल और नए चेहरों को शामिल करने की चर्चा भी तेज। हिमाचल की फिल्म खुंटा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिली। फिल्म में हिमाचल और उत्तराखंड के जनजातीय क्षेत्र की संस्कृति, लोक जीवन और आस्था को प्रमुखता दी गई है। महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन लीग की मेजबानी हिमाचल को मिली। जनवरी 2027 में कांगड़ा के इंदौरा में होंगे मुकाबले। आंगनबाड़ी केंद्रों में अब गर्भवती

महिलाओं, धात्री माताओं और 3 साल तक के बच्चों के पोषण आहार में खाद्य तेल और शक्कर नहीं मिलेगी। हिमाचल में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की मांग को झटका, सरकार ने क्रीमी लेयर समाप्त करने से इनकार किया है। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार की प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ रही है। एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने के लिए 9.4 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके साथ ही कांगड़ा एयरपोर्ट के चारों ओर एक रिंग रोड बनाने की भी तैयारी है। सरकार की ओर से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रस्तावित रिंग रोड से एयरपोर्ट के आसपास यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। प्रशासन का मानना है कि एयरपोर्ट के विस्तार के बाद यात्रियों और वाहनों की संख्या बढ़ेगी। ऐसे में रिंग रोड वैकल्पिक कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यानी कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार केवल हवाई संपर्क ही नहीं बल्कि आसपास की सड़क व्यवस्था को भी बदलने वाला है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मोटर वाहन नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव के अनुसार एक ही मालिक की 2 या उससे अधिक समान श्रेणी की बसों को एक फ्लीट माना जा सकता है। सरकार ने इस संबंध में आम लोगों से 30 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। प्रस्ताव में एक महत्वपूर्ण बदलाव टैक्स निर्धारण को लेकर है। बस पर मोटर वाहन कर उसके वास्तविक रूट और बस में उपलब्ध सीटों के आधार पर निर्धारित करने की बात कही गई है। यानी केवल कागजों में निर्धारित रूट की बजाय बस जिस मार्ग पर वास्तव में संचालित हो रही है उसकी लंबाई को भी टैक्स निर्धारण का आधार बनाया जा सकता है। सरकार का कहना है कि प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा। कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। इसके साथ ही एशियाई शेयर बाजारों में भी दबाव देखने को मिला। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 813 अंक से अधिक की गिरावट के साथ 74,764 के आसपास बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी करीब 203 अंक नीचे रहा। बाजार में गिरावट का असर कई प्रमुख कंपनियों के शेयरों पर देखने को मिला। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से महंगाई और आयात लागत को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं। भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत महत्वपूर्ण होती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस महीने के अंत तक अपनी सरकार और मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड सौंप सकते हैं। खबर के अनुसार सरकार के कामकाज और मंत्रियों के प्रदर्शन के आधार पर आगे महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल में फेरबदल और कुछ नए चेहरों को शामिल किए जाने की चर्चा भी सामने आ रही है। बताया गया है कि मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के बाद कांग्रेस संगठन में भी गतिविधियां तेज हुई हैं। आने वाले समय में सरकार और संगठन दोनों स्तरों पर बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं कांग्रेस के मिशन 2027 को लेकर भी रणनीति पर चर्चा जारी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जनजातीय क्षेत्र की संस्कृति और लोक जीवन पर आधारित फिल्म खुंटा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिली है। फिल्म में पहाड़ों के जीवन, संस्कृति, प्रकृति और लोगों की आस्था को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया है। फिल्म की कहानी के माध्यम से पहाड़ी समाज और प्रकृति के बीच के संबंध तथा विकास और पर्यावरण के बीच पैदा होने वाले संघर्ष को सामने रखने का प्रयास किया गया है। फिल्म को कई मंचों पर प्रदर्शित किया जा चुका है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली है। यह हिमाचल की लोक संस्कृति और पहाड़ी जीवन को दुनिया तक पहुँचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। हिमाचल प्रदेश को महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन लीग की मेजबानी मिली है। जनवरी 2027 में कांगड़ा के इंदौरा में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में देश की प्रमुख महिला भारोत्तोलक हिस्सा लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू समेत कई बड़े खिलाड़ियों के प्रतियोगिता में भाग लेने की उम्मीद है। इस आयोजन से हिमाचल के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को करीब से देखने और उनसे सीखने का अवसर मिलेगा। साथ ही राज्य में खेल पर्यटन और खेल गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
हिमाचल प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और 3 साल तक के बच्चों को दिए जाने वाले पोषण आहार में बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था के तहत पोषण आहार में खाद्य तेल और शक्कर शामिल नहीं होगी। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से संबंधित व्यवस्था में बदलाव किया गया है। विभाग का कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से लाभार्थियों को दिए जाने वाले राशन और पोषण सामग्री की व्यवस्था निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार की जाती है। इस बदलाव का उद्देश्य पोषण व्यवस्था में सुधार और निर्धारित पोषण मानकों के अनुरूप आहार उपलब्ध कराना बताया गया है। हिमाचल प्रदेश में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की मांग को लेकर सरकार ने क्रीमी लेयर समाप्त करने से इनकार किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा नियमों और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार ही आरक्षण व्यवस्था लागू की जा रही है। क्रीमी लेयर को समाप्त करने की मांग पर सरकार का कहना है कि यह विषय संबंधित केंद्रीय नियमों और न्यायालय के आदेशों से जुड़ा है। वहीं ओबीसी वर्ग की ओर से आरक्षण और क्रीमी लेयर को लेकर लगातार मांगे उठाई जा रही हैं। सरकार ने कहा है कि विभिन्न मांगों और प्राप्त सुझावों पर नियमों के अनुरूप विचार किया जाएगा।

0: अभी क्या है? क्या है ये?
1: आपने तो कहा था जब तक डस्टबिन ना मिले कचरा अपने पॉकेट में रखना, पॉकेट फुल हो गए। छोटी आदतों से ही होता है बड़ा बदलाव।
2: एक नई आदत अपनाते, जब तक डस्टबिन ना मिले
1: इंडिया के हर पॉकेट को ही डस्टबिन बनाते।

0: रवि जी, मैं से तो सुभाष चटनिस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यहीं हॉस्टल में पढ़ता है?
1: जी सर।
0: वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है।
1: ड्रग्स? अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात कराइए प्लीज।
0: अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा।
1: अरे नहीं सर, कोई तो उपाय होगा।
0: जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर अंकल तो स्मार्ट निकले।
2: अबे चल आ जा।
3: वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया। मेरा गेम ओवर।
2: चले,
4: असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत करें।
5: रुको, सोचो और एक्शन लो।

0: शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे, बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम।
1: उस ढोल नगाड़ों और भक्ति के जयकारों के साथ तैयार हो जाइए गणपति बप्पा का भव्य स्वागत।

शिव और पार्वती के प्रिय पुत्र रिद्धि सिद्धि के दाता विघ्नहर्ता गणपति बप्पा आ रहे हैं अपने भक्तों के द्वार आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने, हर विघ्न बाधा को दूर भगाने और आपकी हर मंगल कामना पूर्ण करने। तो आप सभी को आ रहे इस साल के गणेश चतुर्थी के इस पावन त्योहार की

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: सुनो, क्या मैं बदतमीज हूँ?
3: Oh, no.
4: नहीं।
2: क्या मैं बहुत बड़बड़ करता हूँ?
4: नहीं।
2: क्या मुझे बोलने की अक्ल नहीं है?
4: नहीं।
2: क्या मुझ में दिमाग की कमी है?
4: नहीं। तो
2: क्या मैं अगली दिखता हूँ?
4: अरे नहीं बाबा।
2: तो फिर मम्मी ऐसे क्यों बोल रही है कि तू अपनी बीबी जैसा बनता जा रहा है?

दोस्तों, किसी ने कहा, सही कहा है, समझदार लोग भी तीन चीजों की वजह से कई बार कंगाल हो सकते हैं। जिंदगी में पैसा कमाना जितना जरूरी है, उसे सही जगह बचा कर रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जी दोस्तों, तीन चीजों की बात की है, एक औरत की मोहब्बत, नशे की लत और कर्ज। ये तीन ऐसी चीजें हैं जो इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा सकती हैं। कभी भावनाएं इंसान से गलत फैसले करवाती हैं, तो कभी नशा उसकी सोचने की शक्ति छीन लेता है, और कभी कर्ज उसकी पूरी जिंदगी को बोझ बना देता है। इसलिए समझदारी सिर्फ पैसा कमाने में नहीं, बल्कि उन चीजों से दूर रहने में भी है जो आपकी मेहनत की कमाई को आपसे छीन सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में।

जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे से आपकी आज की सुबह की शुरुआत आप सभी की रही है, बेहद खूबसूरत सी और प्यारी सी। जी दोस्तों, 11 सितंबर 2026 का दिन है, शुक्रवार का दिन है। दिन ब दिन हमारे ज़िंदगी में नए नए पल आते जा रहे हैं, नए नए लोग आते जा रहे हैं और हमारी ज़िंदगी और भी प्यारी और खुशनुमा होती जा रही है। तो आज के दिन आप क्या खास करने वाले हैं और किस तरह से आज के दिन को खास बनाने वाले हैं, तो ये तो आप सभी ने सोचकर पहले ही रखा होगा दोस्तों। लेकिन कुछ बातें, कुछ चीज़ें अचानक से हमारी ज़िंदगी में एंटर हो जाती हैं और अचानक से ही वो पल कई बार खास बन जाते हैं, कुछ बहुत ही खास बन जाते हैं। जी तो गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। 9:05 हो चुके हैं इस समय और अब 11 बजे तक आप सभी इस सफ़र को एंजॉय करने वाले हैं, ढेर सारी बातों के साथ और ढेर सारे मनोरंजन और जानकारियों के साथ। तो आइए, देर किस बात की है, बातचीत के साथ शुरुआत कर दी गई है, लेकिन देर तो है और वो है मनोरंजन की। तो लेकर चलते हैं आप सभी को कार्यक्रम के पहले गीत की और शुरुआत करते हैं इसी गीत से कार्यक्रम में मनोरंजन की।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने इंजॉय किया सुबह सवेरे, बिल्कुल मसीहा मूवी से लिया था दोस्तों। और सचमुच हमारी जिंदगी में कई बार कुछ लोग मसीहा बनकर ही आते हैं और जिंदगी में हमें एक ऐसी प्रेरणा दे जाते हैं कि जिंदगी कहीं अगर टूट रही होती है, बिखर रही होती है, तो एक अलग सी उमंग जाग उठती है और वो जीने की चाह फिर से जागृत हो जाती है। तो कल का दिन बहुत खास था, कल के दिन आप सभी ने बहुत ही खास दिन जो था वो सेलिब्रेट किया था दोस्तों, क्योंकि आज के समय में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं सुसाइड अटेम्प्ट के, तो उस पर अवेयरनेस, उस पर किस तरह से रोकथाम हम लगा सकते हैं, कैसे खुद की मानसिकता को हम बदल सकते हैं और अपनी ज़िंदगी की वैल्यू को समझ सकते हैं, तो इस दिन उम्मीद करते हैं कि ये दिन आपने खास भी बनाया होगा और जो उद्देश्य इस दिन का था वो भी आप सभी की जिंदगी तक जरूर पहुंचा होगा। तो दोस्तों इस प्यारे से गीत को आप सभी ने एंजॉय किया है कुमार सानू साधना सरगम की आवाजों के साथ। फिलहाल कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों इन्हीं बातों के साथ फिर से रुक करते हैं एक और प्यारे से गीत की ओर, क्योंकि बातचीत के साथ साथ मनोरंजन भी बेहद जरूरी है बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जब भी चीजें गड़बड़ा जाती हैं, थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ जाता है तो सब कुछ उथल पुथल सा हो जाता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा कार्यक्रम कहीं भी उथल पुथल हो या यहाँ से वहाँ हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं का ध्यान जो है वो भटकता हुआ नजर आए, बिल्कुल नहीं। तो आइए दोस्तों एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत।

0: दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ, ढेर सारी बातों के साथ। और सचमुच जब जीवन साथी की बात होती है दोस्तों, तो बहुत बड़ी बात होती है ये, क्योंकि जिंदगी भर का सफर एक साथी के साथ जो है हमें तय करना होता है। तो ये साथी किस तरह से हमारी जिंदगी में एंटर होते हैं, अननोन बनकर, कुछ नॉन बनकर, तो कईयों की जिंदगी में तो बहुत स्मूथली ये रिश्ता निभाया जाता है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन कहीं कहीं अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए हमारी, मतलब कि फैसला लेने में गलती हो जाए, गलत चॉइस अगर हमारे साथ जुड़ जाए, तो पूरी जिंदगी जो है ना फिर पछतावा रहता है, और उसी पछतावे के साथ फिर एडजस्ट करना पड़ता है, और वो फॉर्मेलिटी के लिए रिश्तों को निभाया जाता है। खैर, इस गीत के बाद दोस्तों 9:20 हो चुके हैं और बातों के साथ साथ कुछ खास जानकारियों का समय भी हमारे पास है, तो प्रादेशिक समाचारों का जो समय है 9:20, तो आइए सुनते हैं समाचार, उसके बाद फिर से वापस आएंगे अपनी इन खास बातों के साथ, मनोरंजन के साथ।
1: राज्य सरकार इस वर्ष दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में करीब 200 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में एक कार्यक्रम में ये जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय बढ़ाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा गाय का दूध 61 रुपए और भैंस का दूध 71 रुपए प्रति लीटर खरीदा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिले के डगवार में 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट इस वर्ष अक्टूबर तक तैयार हो जाएगा, जिससे किसानों व पशुपालकों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। शिमला में आज आयोजित होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक स्थगित कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित की गई है। बैठक की अगली तिथि जल्द घोषित की जाएगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना बेहद जरूरी है। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि नए चरण में केवल भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण ही नहीं, बल्कि विभिन्न सरकारी विभागों के बीच पूरी व्यवस्था को एकीकृत किया जाएगा। इससे किसानों को संस्थागत ऋण लेने में आसानी होगी और लोगों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
2: सभी भूमि के रिकॉर्ड डिजिटाइज किए जा रहे हैं और अब ऑनलाइन कोई भी उनको आसानी से प्राप्त कर सकता है। रजिस्ट्रार जो ऑफिस थे उनको पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहाँ नागरिकों को बैठने का स्थान होगा, लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, आसानी से पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा वो कहीं से भी अपने विकास को प्राप्त कर सकेंगे।
1: इसके लिए 100% केंद्रीय धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर करने वालों के लिए आज राहत की बड़ी खबर है। कीरतपुर मनाली फोरलेन के पंडोह टकोली और ओट खंड के बीच देउड़ और हणोगी की नवनिर्मित सुरंगें आज यातायात के लिए खोल दी जाएंगी। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
3: करीब 4,466 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस फोरलेन परियोजना में करीब 3.5 किलोमीटर लंबी ये दोनों सुरंगें बेहद महत्वपूर्ण हैं। इनसे शुरू होने से भूस्खलन और जाम के लिए बदनाम 5 से 6 किलोमीटर लंबे घुमावदार हिस्से को बाईपास किया गया है। मंडी से कुल्लू की दूरी 78 किलोमीटर से घटकर अब 60 किलोमीटर रह गई है और सफर का समय भी लगभग 2 घंटे से घटकर 1.5 घंटे का रह जाएगा। हणोगी सुरंग का वर्ष 2025 की मानसून आपदा में भारी नुकसान पहुंचा था। इसे रिकॉर्ड 60 दिनों में करीब 57 करोड़ रुपए की लागत से दोबारा तैयार किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी इन सुरंगों के खुलने पर प्रसन्नता जताते हुए बधाई दी है। इन सुरंगों के खुलने से कुल्लू मनाली आने वाले पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों और सेब उत्पादकों को बड़ी राहत मिलेगी। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
1: प्रदेश सरकार द्वारा अर्धसैनिक बलों की सेवारत व सेवानिवृत्त जवानों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए अर्ध सैनिक कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद सैनिक कल्याण विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सैनिक कल्याण व स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल बोर्ड के अध्यक्ष होंगे और बोर्ड के निदेशक को सदस्य सचिव बनाया गया है। अधिसूचना के अनुसार बोर्ड का कार्यकाल 3 साल का होगा। बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए कौशल विकास व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।

0: वाले
1: से प्रसारित किए जा रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर व आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत शिमला जिला के चौपाल विकास खंड की ठाणा पंचायत में प्रदेश का पहला महिला संचालित मिनरल वाटर प्लांट हिमजल शुरू किया गया है। इस संगठन ठाणा से जुड़ी महिलाओं द्वारा किया जाएगा। के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
2: ये पहल हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत की गई है। परियोजना के लिए महिला ग्राम संगठन थाना को HPSRLM के माध्यम से 13,80,000 रुपए की ऋण सहायता उपलब्ध करवाई गई है। इस राशि से मिनरल प्लांट की स्थापना एवं आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। प्लांट का संचालन, प्रबंधन, विपणन, पैकेजिंग तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियाँ महिला ग्राम संगठन से जुड़ी महिलाओं द्वारा संचालित की जाएगी। इस परियोजना से ग्रामीण महिलाओं को अपने ये पहल न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमिता और स्थानीय रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
1: बच्चों के संरक्षण, शिक्षा, कल्याण व समुचित विकास के लिए सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ चंबा जिला के पात्र बच्चों तक प्रभावी व समयबद्ध रूप से पहुँचाने के लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्र प्रायोजित मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों की पहचान की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के साथ साथ लाभान्वित बच्चों को योजनाओं के तहत मिलने वाली सहायता निरंतर प्रदान की जा रही है। वर्तमान में जिले में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 92 बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।
3: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित मिशन वात्सल्य आकांक्षी जिला चंबा के बच्चों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। उपायुक्त चंबा ने पात्र बच्चों को नियमानुसार एवं समयबद्ध रूप से आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त बजट की आवश्यकता के लिए महिला एवं बाल विकास निदेशालय के साथ आवश्यक पत्राचार करने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई भी बच्चा इस योजना के लाभ से वंचित न रहे। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट जून 2026 की अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उम्मीदवार 13 सितंबर तक UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इन तीन विषयों की दोबारा परीक्षा प्रश्न पत्रों में कई गलतियों की शिकायतों के बाद आयोजित की गई थी। अंग्रेजी और कॉमर्स की परीक्षा 9 सितंबर को जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा कल हुई। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है DHS से डॉक्टरों को बिना विकल्प DMA कैडर में शिफ्ट करने पर रोक, लंबित CA एरियर पर 6 सप्ताह में ले फैसला, शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है। 8 याचिकाएं निपटाते हुए हिमाचल हाईकोर्ट ने संबंधित विभागों को दिए निर्देश। पंजाब केसरी की एक खबर है, आज से खुल जाएंगी दो प्रमुख सुरंगें, मंडी कुल्लू सफर अब 60 मिनट में। दैनिक जागरण की एक सुर्खी है, 26 साल बाद शिमला जिला परिषद पर भाजपा का कब्जा, नए लुक में दिखेंगे हिमाचल के सरकारी CBSE स्कूल और टीचर, शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है। बच्चों को हरी यूनिफॉर्म, महिला टीचर बैंगनी, पुरुष शिक्षक नीली ड्रेस पहनेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, इस वर्ष दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में करीब 200 करोड़ रुपए प्रदान करेगी सरकार। शिमला में आज प्रस्तावित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित। केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण को लेकर जारी किए दिशा निर्देश, किसानों को मिलेगी राहत। कीरतपुर मनाली फोरलेन पर मंडी के देओल और हणोगी में नवनिर्मित सुरंगें आज से यातायात के लिए होंगी बहाल। और शिमला जिला के चौपाल की थाना पंचायत में शुरू हुआ प्रदेश का पहला महिला संचालित मिनरल वाटर प्लांट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

दोस्तों समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। ट्यून किया है इस समय आप सभी ने 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी दोस्तों कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी डेली रूटीन के साथ। बहुत ही खास पलों को और भी ज्यादा खास बनाया जा रहा है इस प्यारे से सफर के साथ। दोस्तों समाज की संरचनाओं ने बहुत कुछ बुना है, लेकिन लगता है कि सबसे खतरनाक है ये सौभाग्य और अभाग्य का खेल, जिस खेल में खा लेते हैं। जी दोस्तों खेल में ही हम जो है बहुत कुछ कह जाते हैं। बच्चों का बचपन, युवाओं की जवानी, मन का सुकून, दिल की दीवानगी और आंखों का पानी। सबका जीवन एक जैसा नहीं होता, ये खुद ही हम सभी लोग कहते हैं, और फिर भी सबको एक ही तराजू में बैठाना चाहते हैं। मानते हैं दोस्तों जिंदा रहने के लिए खुश रहने की जीत जो है वो अपनी, मगर अपने पैमाने में बैठाकर ये सब हारना चाहते हैं या हराना चाहते हैं। बहुत अजीब सी पहेली है दोस्तों ये जिंदगी, और इसे सुलझा पाना उतना ही मुश्किल है जितना कि इसे समझ पाना। और धार्मिकता और श्रद्धा भक्ति की हम बात करें दोस्तों, आए दिन जो समय समय के हिसाब से त्योहार हम सेलिब्रेट करते हैं, नए नए उत्सव हम सेलिब्रेट करते हैं, तो वो एक तरह से अपनेपन और उस रिश्ते की अहमियत को बढ़ाने के लिए हमारे लिए एक माध्यम होते हैं, जहां हम अब सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए चीज़ों को निभाते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दोस्तों, हम कहते हैं ना कि ये सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं और भगवान जो है शायद नहीं है इस दुनिया में, वो नहीं देखते हैं कुछ भी। तो दोस्तों आप सभी ने एक न्यूज़, क्योंकि फ़ोन तो आजकल हर कोई यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया तो हर कोई यूज़ कर रहे हैं, तो उज्जैन की न्यूज़ आप सभी ने सुनी होगी दोस्तों कि ये जो विकास की हम बात कर रहे हैं, जो हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें या कहीं की भी बात करें, तो विकास करने की होड़ में हम कहीं ना कहीं भागते जा रहे हैं। तो यही कि सिंगल लेन से 4 लेन में हम कन्वर्ट कर रहे हैं सड़कों को, तो उसी के चलते 4 लेन का काम चल रहा था, और उसमें जो है हनुमान जी की जो मंदिर है, तो मंदिर तो सारा उखाड़ दिया गया, उसे तोड़ दिया गया, लेकिन बहुत हैरानी की बात है दोस्तों कि हनुमान जी की जो वहाँ पे प्रतिमा मूर्ति थी है मतलब अभी भी, तो उसे इतना जोर लगाया गया बुलडोजर से, जेसीबी से, पता नहीं किस किस तरीके से, लेकिन उसे हिला तक नहीं पाए। तो देखिए ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने जो है एक श्रद्धा और भक्ति की अगर हम बात करें तो देखने को मिलता है। तो आज भी कह सकते हैं कि मन में श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान हर कहीं है। मानो तो पत्थर में भी, पत्थर की मूर्ति में भी भगवान है, और ना मानो तो वो सिर्फ और सिर्फ एक पत्थर है। तो ये हमारे बस मानसिक सोच और हमारे कहने सुनने की बातें हैं जी दोस्तों। तो आइए इन्हीं बातों के साथ कुछ मनोरंजन का तड़का भी होना चाहिए, बिल्कुल। तो आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर 91.2 MHz से।

तो दोस्तों ये मस्ती भरा माहौल इसी तरह से बना रहना चाहिए और जिंदगी में ये मस्ती बेहद जरूरी है, क्योंकि जब हम परेशान हो जाते हैं तो मूड को थोड़ा सा एनर्जेटिक करने के लिए, थोड़ा सा बचपन में लेके जाने के लिए ये चीजें बेहद जरूरी है। झूमने के लिए, नाचने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए दोस्तों, बस मन होना चाहिए, फिर छोटी छोटी चीज में भी हम खुशियां अक्सर ढूंढ ही लेते हैं। जी दोस्तों, हर कार्यक्रम में कुछ खास बातचीत रहती है जो कि हमारी जिंदगी से जुड़ी होती है, और जिंदगी में जुड़ी खास बातें अगर जुड़ जाएं तो जिंदगी भी खास बन जाती है, जिस तरह से बातें खास होती हैं। तो कार्यक्रम की आज क्या ऐसी खास बातचीत रहने वाली है दोस्तों, जो आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश है, क्योंकि जहां हम फैसिलिटीज की बात करते हैं दोस्तों, कि हर एक फैसिलिटी हमें अपनी जो है चीज़ों को आसान करने के लिए, जो हमारी रूटीन है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, उसे थोड़ा और आसान बनाने के लिए हर एक फैसिलिटी का यूज़ हम करते हैं, बिना सोचे समझे भी कई बार हम करते हैं, उसके बारे में बिना जाने, पूरी तरह से जान पहचान हमें नहीं होती, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी कोई चीज़ हो। तो हम बिना नॉलेज के जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत सी परेशानियां भी हमें फेस करनी पड़ती हैं। जी दोस्तों, तो किस बारे में बात हो रही है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उन्हीं में से एक बात दोस्तों, आज की ये हमारी बातचीत एक ऐसे विषय पर है जो शायद अभी आपके घर से, आपके गांव से, खेत के मेड़ पर या चाय की दुकान पर बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय ना बना हो इस बात का, लेकिन आने वाले समय में इसका असर हमारे घर परिवार, बच्चों की पढ़ाई, रोजगार और रोजमर्रा की जिंदगी तक दिखाई दे सकता है। दोस्तों, कोई भी नई चीज जब हमारी जिंदगी में आती है तो हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक तो होता है उसका अच्छा इफेक्ट हमारी जिंदगी में, लेकिन अगर जब हम उसका सिर्फ फायदे के बारे में देखते हैं तो अक्सर हम नुकसान के बारे में देखना भूल जाते हैं, जानना भूल जाते हैं। तो हर एक चीज़ के बारे में ना हमें डीपली जाना चाहिए। कोई भी फैसिलिटी अगर हम ले रहे हैं, कोई भी स्कीम्स या कोई भी किसी भी तरह से, तो उसके बारे में ज़रूर जाने। हम बच्चों को बोल देते हैं या किसी भी तरह से कि अभी ये जो नशे की आग फैलती जा रही है, तो शायद बच्चे इसका एक पहलू देख रहे हैं कि उससे क्या फ़ायदे मिलते हैं स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। एक एक कहने सुनने की बात है, लेकिन हाँ, जब हम पूरी तरह से उस चीज़ में नहीं जाएंगे, उसकी जानकारी नहीं लेंगे, तो हम एक ही पहलू के पीछे भागते रहेंगे और अपनी ज़िंदगी को परेशानियों में डालते जाएंगे। तो उसी तरह से हर चीज़ के पहलुओं को समझना, जानना बेहद ज़रूरी है। तो क्या खास रहने वाला है आज के कार्यक्रम में, ये जानने के लिए दोस्तों अभी तो बहुत समय है और बहुत कुछ जानना बाकी है, लेकिन उसके लिए क्या करना

होगा, कुछ भी तो नहीं दोस्तों, सिर्फ छोटा सा स्टेप, और वो भी क्या, जुड़े रहना है अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और खास करके रुचिका की इन खास बातों के साथ। तो आइए बातचीत को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं और फिर से लेकर चलते हैं आप सभी को कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

तो सुई के अनुदशमल ऑफ 2 MHz पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रोचिका के कुछ खास बातों के साथ। दोस्तों तो आज के कार्यक्रम की खास बातचीत की ओर जरूर रुक करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ खास जानकारियों की ओर रुक किया जाए तो क्या बात है जी दोस्तों। तो आइए लेकर चलते हैं आप सभी को एक बहुत ही खास जानकारी की ओर। हिमाचल के लाखों उपभोक्ताओं को राज्य बिजली बोर्ड ने एक नई व्यवस्था लागू कर दी है जी दोस्तों। इसके तहत अब बिजली कटौती से जुड़ी हर सूचना उपभोक्ताओं को SMS के जरिए सीधे मोबाइल पर मिलेगी। इसे उपभोक्ताओं को अब पहले से तय कट और अचानक बिजली आपूर्ति ठप होने की सूचना समय पर हासिल हो सकेगी जी दोस्तों। अक्सर होता है कई बार कि जो न्यूज होती है वो कुछ लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, जैसे हमारी भी तो खैर धर्मशाला की बात करें तो सभी के लिए अपडेट रहने की कोशिश जरूर रहती है कि आप सभी तक हर जानकारी पहुंचाई जाए, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये बहुत अच्छी एक पहल की जा रही है, तो वाकई में सही है। बिजली बहाल होने का संभावित समय भी उपभोक्ताओं को पहले से बता दिया जाएगा। नई व्यवस्था को लेकर बोर्ड मुख्यालय से सभी मुख्य अभियंताओं, उप मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं तथा अतिरिक्त अधीक्षण एवं वरिष्ठ अधिशाषी अभियंताओं को निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये बहुत ही खास जानकारी है दोस्तों और आप सभी तक पहुंचाई गई है रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से। तो अब आपको जो इस पहल के माध्यम से जो है पहले ही पता चल जाएगा, और जब बिजली का जो है समय मतलब कि खत्म होना होगा उससे पहले भी आपको बता दिया जाएगा, तो इससे क्या है काम जो है वो आसान हो जाएंगे और ज़्यादा मुश्किल का सामना जो है वो नहीं करना पड़ेगा। तो कई बार लोगों को जब जानकारी नहीं होती है बिजली के बाधित होने की तो हम लोग क्या होते हैं हाइपर हो जाते हैं, एकदम से पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं कि बताया नहीं, ये नहीं हुआ, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम था, ये था वो था, मतलब बहुत सारी बातें होती हैं। तो ऐसे में ये एक और पहल की गई है लोगों को और ज़्यादा थोड़ा सा से मतलब कि राहत देने के लिए, उन्हें हाइपर ना होने के लिए। तो आइए इसी जानकारी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और गीत। एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत।

बिल्कुल दोस्तों, बिना सोचे समझे किसी से पंगा तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो न जाने फिर से कौन सी मुसीबत में आप पड़ जाएं और न जाने क्या क्या सिचुएशंस जो है वो फेस करनी पड़ सकती हैं। तो कभी भी किसी के साथ गलत मत कीजिए, ईमानदारी और सच्चाई के राह की ओर जो है वो आगे बढ़ते जाइए, मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। लेकिन अगर गलत रास्ता अपनाते हैं, गलत जो है लोगों का साथ आप अपने साथ लेकर चलते हैं, तो फिर तो परेशानियां आपके पास आने से बिल्कुल नहीं रुकेंगी जी दोस्तों। खैर, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी इंजॉय कर रहे हैं दोस्तों, और बहुत हो गया इंतज़ार, अब किस बात की देर है, अब तो खास बात की ओर चलना बनता है जी दोस्तों, बिल्कुल बनता है। तो आइए, आप सभी का इंतज़ार अब ख़त्म होता है और कार्यक्रम की क्या आज की जो है खास बातचीत रहने वाली है उससे आपको रूबरू करवाते हैं। तो दोस्तों, आज के समय की हम बात करें, चाहे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे कोई भी हैं, जो AI का यूज़ हम कर रहे हैं, तो मैंने पहले ही कहा दोस्तों, जो भी फैसिलिटीज़ हमारे पास आती हैं, जो भी सुविधाएं हमें जो है लाइफस्टाइल को आसान बनाने के लिए आती हैं, तो उसका एक तो होता है ना पॉजिटिव इफ़ेक्ट, लेकिन कहीं ना कहीं एक गलत प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। तो हम किस और जाते हैं, किस और नहीं जाते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। तो आज दुनिया जो है AI की रफ्तार देखकर बिल्कुल हैरान है। मोबाइल में सवाल पूछिए, जवाब मिल जाता है। किसी भाषा का अनुवाद करना हो, AI मदद कर देता है। बच्चों की पढ़ाई में मदद चाहिए, AI मौजूद है। किसान मौसम, फसल और बाजार से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए डिजिटल साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं जी दोस्तों। लेकिन इस्तेमाल के चलते एक सवाल ये है, क्या AI हमारे लिए सिर्फ सुविधा है, या आने वाले समय में ये हमारे सामने कुछ बड़ी चुनौतियां भी खड़ी कर सकता है? क्योंकि फिलहाल तो हम अपने जो आसान होती हुई चीजें हैं सिर्फ उसकी तरफ देख रहे हैं। हमने अपने जो एक कहते हैं ना जिज्ञासा या जो अपना माइंडसेट है, उसे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती थी, वो बिल्कुल नहीं करनी पड़ती। थोड़ा सा भी कोई कन्फ्यूज़न है, फटाफट से हम AI में डालते हैं और वो पूरा फॉर्मेट, पूरा सॉल्यूशन जो है हमारे सामने रख देता है, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो। लेकिन ये जो हम यूज़ कर रहे हैं, क्या ये हमारे लिए एक सुविधा है, या फिर आने वाले समय में एक बहुत बड़ी चुनौती? दोस्तों, इसके बारे में मैंने आप सभी से पहले भी बात की थी कि AI का यूज़ जितना ज़्यादा बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं जितने लापरवाह हम हो रहे हैं, तो कहीं इसका असर जो है वो प्रकृति पे भी पड़ रहा है। तो यूज़ ज़रूर कीजिए, बुरी बात नहीं है, लेकिन जो प्रकृति को इसका नुकसान पहुँच रहा है, तो अगर थोड़ी सी देखभाल हम प्रकृति की करें तो हम फैसिलिटी का भी फ़ायदा ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को भी आसान बना सकते हैं। तो सिर्फ इस समय को सोचकर नहीं चलना है, आने वाले समय को भी बेहतर बनाना है, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक कहते हैं ना कि सही, अगर आप चाहते हैं कि चीज़ों को उन तक सुरक्षित पहुँचाया जाए, तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ा सा कर्तव्य हमारे भी हैं, तो उसने निभाया जाए। तो फिलहाल आइए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और गीत। एंजॉय कीजिए अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से

दोस्तों, बातचीत और गीतों का ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा क्योंकि अभी बहुत सारी बातें आप सभी तक पहुंचाना बाकी है। लेकिन फिलहाल आइए फिर से चलते हैं एक और खास जानकारी की ओर। जी दोस्तों, हिमाचल की बात करें ना तो यहाँ चाहे कोई त्योहार हो, कोई उत्सव हो, कोई परंपरा हो, उसे इतनी अच्छे तरीके से मनाया जाता है और प्रचलित परंपराओं को, प्रथाओं को जो है सेलिब्रेट किया जाता है खूब सारा। तो उन्हीं के चलते दोस्तों, छोटी काशी मंडी के पुरानी मंडी स्थित माता महाकाली मंदिर में आयोजित 62वें जागरण में इस बार भक्ति के साथ देव डायन युद्ध से जुड़ी लोकमान्यता भी चर्चा का केंद्र रही। जी दोस्तों, आप सभी जानते हैं इंद्र देवता और डायनों के बीच डंगरवास के दिन जो है वो युद्ध छिड़ता है, तो ये बहुत प्रचलित है और आप सभी जानते हैं इस चीज को। तो ये इस बार बहुत ही एक चर्चा में रहा है विषय। बुधवार को डायनवास यानी कि डगवास की रात्रि से देवताओं और डायनों के बीच युद्ध शुरू होने की मान्यता है और माता के जागरण के दौरान गुरवाणी के माध्यम से इस युद्ध की वर्तमान स्थिति श्रद्धालुओं के सामने रखी गई। जी दोस्तों, आप ये सब भी जानते हैं कि इस समय जो है जो गुर होते हैं वो खेल पात्र करके बताया जाता है उसके द्वारा कि युद्ध में क्या स्थिति रही और किसकी जीत हुई, किस तरह से इसको मनाया गया और कौन जीता है, क्या मतलब कि देवता जीते हैं या डायने जीती हैं। तो ये बहुत एक कहते हैं ना कि रहस्यमय बातें होती हैं और बहुत एक अट्रैक्टिव सी भी होती है, जानने की इच्छा होती है सब में। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए तो और ज़्यादा जिज्ञासा से भरी। तो ये बिल्कुल जानना चाहिए, इतिहास की बातें हैं और आज भी प्रचलित हैं परंपराओं को, उनको मनाया जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सब नहीं होता है, दिखावे की बातें, बिल्कुल नहीं दोस्तों। जहां भगवान की बात आ जाती है, श्रद्धा की बात आ जाती है, भक्ति की बात आ जाती है, तो देवी देवताओं का वास जो अगर नहीं होता तो सोचिए हम कहां होते और कहां नहीं होते। क्योंकि ये हिमाचल की ही बात करें तो धार्मिक स्थल है और यहां तो देवी देवताओं का वास बहुत ही मतलब कि माना जाता है, जाना जाता है और भक्ति भाव से भरा ये हमारा प्रदेश है दोस्तों। तो ये भक्ति और श्रद्धा इसी तरह से बनी रहनी चाहिए और इसी भक्ति के चलते डंगरवास का ये त्यौहार भी आप सभी ने मनाया है। तो इसके भी ये कथाएं आप जान सकते हैं, सुन सकते हैं। और धर्मशाला की बात करें तो मे बी इंद्रुनाग देवता में भी जो है ये खेल पात्र किया जाता है और शायद बताया जाता है कि किस तरह से किसकी जीत हुई है और किस तरह से ये युद्ध रहा है। तो जहां तक मुझे आइडिया है, बाकी तो खैर आप लोग सभी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते होंगे। और आइए दोस्तों, इसी जानकारी के साथ जो है वो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आके और फिर से लेकर चलते हैं आप सभी को कार्यक्रम के एक और गीत की ओर। तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अगला गीत आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर।

एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की ढेर सारी बातों के साथ। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं। और दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि एआई का जो यूज हम कर रहे हैं, तो क्या ये एक सिर्फ सुविधा है या फिर आने वाले समय में इससे चुनौतियां भी खड़ी हो सकती हैं। दोस्तों, हाल ही की बात करें तो एआई की सुरक्षा को लेकर कुछ शोधकर्ताओं और तकनीकी विशेषज्ञों ने गंभीर आशंकाएं जताई हैं। उनका कहना है कि अगर अत्यधिक शक्तिशाली एआई सिस्टम बिना पर्याप्त सुरक्षा और नियंत्रण के विकसित किए गए, तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आज के समय में हम मतलब खुद से एक इतना छोटा सा एफर्ट भी करने में सक्षम नहीं है। हम हर चीज के लिए डिपेंड हो चुके हैं, छोटी से छोटी बात के लिए। हालांकि हम मेहनत कर सकते हैं, हम उसके बारे में खुद से थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार सकते हैं, लेकिन नहीं, हम यही सोचते हैं कि जब हमें इतनी आसानी से चीजें मिल रही हैं तो हम क्यों ही अपने दिमाग का यूज करें, क्यों ही हम उसके बाहर जाएं। तो उसी के चलते आज बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई एआई पे डिपेंड हो चुका है। तो दोस्तों, जितना हम एआई पे सर्च करते हैं, तो एआई की एक तरफ तो ये चुनौतियां हैं, ये तो खैर आने वाले समय में है, लेकिन अभी की हम बात करें तो ये जो सिस्टम है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं एआई को चलाने के लिए, और उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। ये बात मैंने आपसे पहले भी साझा की थी दोस्तों। और कहीं ना कहीं जहाँ पानी का यूज़ किया जा रहा है इतनी मात्रा में, तो आने वाले समय में हो सकता है कि आम जिंदगी पे इसका असर जो है वो पड़ सकता है। क्योंकि प्रकृति को सेफ रखने की हम बात करें तो एक पेड़ तक लगाने की ज़रूरत हम महसूस नहीं करते हैं। नदियों नालों को साफ करने की बात करें तो वो भी हम नहीं करते हैं। पहले के समय में हम अगर हिमाचल की बात करें तो दोस्तों, कूलों का पानी जो था वो खेतों तक पहुंचाया जाता था, बहुत ईमानदारी के साथ लोग सफाई करते थे और उन्हें मतलब निरंतर चलने के लिए उनके जो है मदद करते थे एक तरह से। लेकिन अब थोड़ा सा भी समय हमारे लिए उसके लिए भी नहीं है। हम वो भी बंद हो गई हैं, नदी नाले कहीं ना कहीं बंद हो चुके हैं। पानी फिर जब बरसात का पानी आता है एकदम से, तो वो बढ़कर यहाँ वहाँ भटकता है, घरों में जाता है और फिर लोग परेशान हो जाते हैं। खैर, बात कर रहे हैं दोस्तों हम एआई की, तो अब यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है। इन आशंकाओं का मतलब ये नहीं कि कल सुबह एआई इंसानों के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, लेकिन इन चेतावनियों को पूरी तरह नज़रअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं। क्योंकि इतिहास हमें यही सिखाता है कि जिस तकनीक में ताकत होती है उसके इस्तेमाल में जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी होती है। तो जिम्मेदारियों से तो हम दूर भागते हैं, जिम्मेदारी की बात आए तो हम नजरें चुराते हैं और पीछे हट जाते हैं। तो अगर जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो हम इन सुविधाओं का सुरक्षित रूप से जो है यूज नहीं कर पाएंगे। आने वाले समय में बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हमें फेस करनी पड़ सकती हैं।

दोस्तों बातचीत और मनोरंजन के इस सिलसिले को आगे की ओर बढ़ाते हैं और अब आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं एक खास जानकारी की ओर। जी दोस्तों, हिंदी दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश में भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से 3 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में 1 से 14 सितंबर तक राजभाषा हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है और इसके तहत विभिन्न जिलों में साहित्यिक गोष्ठियों, प्रतियोगिताओं और हिंदी के प्रचार प्रसार से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राजभाषा हिंदी दिवस का राज्य स्तरीय समारोह 14 सितंबर को आयोजित होगा। राजभाषा पखवाड़े के दौरान जिला भाषा अधिकारियों की ओर से साहित्यिक गोष्ठियां, नव पीढ़ी को हिंदी से जोड़ने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रमों की कड़ी में 12 सितंबर को सुबह 11 बजे बचत भवन रिकांगपियो जिला किन्नौर में राज्य स्तरीय हिंदी कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रदेश भर से करीब 30 से 35 कवि भाग लेंगे। कवि सम्मेलन के माध्यम से हिंदी साहित्य और कविता के विभिन्न विधाओं को मंच प्रदान किया जाएगा और इसके बाद 13 सितंबर को राज्य स्तरीय भाषण निबंध लेखन और प्रश्नोत्तरी लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। राजभाषा हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर जनभाषा और तकनीकी भाषा के रूप में हिंदी भाषा की व्यवहारिक स्थिति विषय पर चर्चा होगी। जी दोस्तों, हिंदी भाषा की हम बात करें तो हम अक्सर जब देखा देखी में चलते हैं या फिर वो कहते हैं ना कि एक दूसरे को देखकर अपनी थोड़ी सी इमेज या पर्सनालिटी को हाई करने के लिए अपनी ही भाषा को नज़रअंदाज कर देते हैं। कई बार उससे हम बहुत ऐसे शर्म महसूस करते हैं, तो वो चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे हमारी अपनी जो मतलब कि लोकल लैंग्वेज हो, पहाड़ी हो, गद्याली हो, कोई भी हो, अपने अपने यहाँ की सभी की अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, आप सभी जानते हैं। हिमाचल की बात करें तो कुछ ही डिस्टेंस की दूरी के बाद जो है वो लैंग्वेज में थोड़ा सा फ़र्क आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस जो भागदौड़ है ये एक दूसरे को देखकर, देखा देखी कहें या न जाने क्या ही कहें, तो हम बच्चों को इससे दूर रखते हैं। चाहे वो लोकल लैंग्वेज है या फिर अपनी राजभाषा हिंदी है, तो उससे हम दूर रखते हैं, शर्म महसूस करते हैं, क्योंकि हम प्रेफरेंस देते हैं खास करके इंग्लिश लैंग्वेज को। क्योंकि अच्छी बात है, इंग्लिश लैंग्वेज सीखना बुरी बात नहीं है दोस्तों, हमें डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस आना हमारे लिए बेहतर होता है। जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो वो एक दूसरे को जोड़ते हैं, देश विदेश के साथ हमारे जो लिंकेजेस क्रिएट होते हैं, तो वहाँ भाषाओं के माध्यम से ही हम अपनी जो है विचारों को रख पाते हैं, आदान प्रदान कर पाते हैं। लेकिन इसके चलते हम अपनी लैंग्वेज को नज़रअंदाज करें, उसकी डिसरिस्पेक्ट करें, ये कहाँ तक सही है, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो हमें अपनी भाषा पे शर्म नहीं बल्कि हमें गर्व महसूस होना चाहिए और बच्चों को ज़रूर भाषाओं से जोड़े रखिए, उन्हें दूर मत रखिए, क्योंकि अपनी लोक संस्कृति, अपनी संस्कृति से दूर जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने अस्तित्व को ही भूल जाएंगे, अपने आप को ही भूल जाएंगे। तो फिलहाल आइए दोस्तों, ये दिन जो होते हैं ये इसीलिए खास मनाए जाते हैं ताकि हर एक इंसान को उसे रूबरू करवाया जाए, अवेयर करवाया जाए, सतर्कता की ओर जो है वो आगे की ओर बढ़ सके। तो फिलहाल हमें भी कार्यक्रम में आगे की ओर बढ़ना है और एंजॉय करना है कार्यक्रम का अगला गीत। तो आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.5 MHz पर इस समय अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी एंजॉय कर रहे हैं और आज के

कोई सवाल है उसका जवाब बच्चों को चाहिए तो वो फटाफट से एआई से पूछकर जो है उसको वो कर रहे हैं, लेकिन क्या पता वो होमवर्क पूरा ही एआई से ही बनाना शुरू कर दें। खैर पता चल जाता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस, लेकिन फिर भी दोस्तों एआई अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हो सकता है कि हमारे पहाड़ों के लिए भी ये अवसर लेकर आए। लेकिन असली सवाल तो ये है कि संतुलन कहाँ है। आज बच्चे मोबाइल पर पढ़ते हैं, कल को हो सकता है वो पूरा ही काम जो है मोबाइल के जरिए या एआई के जरिए शुरू हो जाए। आज हम छोटा सा अगर रिज्यूम बनाना है तो थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालते हैं, लेकिन जब से एआई आया है तो तब से शायद हर फॉर्मेट के लिए, हर रिज्यूमे के लिए हम एआई से हेल्प लेते हैं और एआई फटाफट से जो है हमें बनाकर तैयार कर देता है। लेकिन चिंता का विषय कहाँ है, क्योंकि ये तो एक सुविधा है, हमारे लिए ही बनाई गई है और हम इस सुविधा का जो है वो प्रयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों चिंता का विषय क्या है, क्योंकि जानकारी और बुद्धिमता एक चीज नहीं है। एआई आपको हजारों जवाब दे सकता है, लेकिन कौन सा जवाब सही है, कौन सा गलत है और उसे अपनी परिस्थिति में कैसे इस्तेमाल करना है, ये फैसला आखिर इंसान को ही करना पड़ेगा। हिमाचली परिवार और अगर हम एआई की बात करें, थोड़ा सा इसे कंपेयर करें, तो दोस्तों हमारे पहाड़ी परिवारों में एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज रही है, पीढ़ियों के बीच संवाद, दादी नानी से कहानियां सुनना, दादा से गांव का इतिहास जानना, माता पिता से खेती बाड़ी के तरीके सीखना, बुजुर्गों से मौसम और स्थानीय परिस्थितियों की समझ लेना। अब सोचिए अगर बच्चा हर सवाल का जवाब सिर्फ मोबाइल या एआई से लेने लगे तो धीरे धीरे वो अपने घर के अनुभवों से दूर हो सकता है। हो सकता है उसे दुनिया के हजारों शहरों की जानकारी हो लेकिन अपने गांव के पुराने रास्ते का इतिहास ना पता हो, उसे दुनिया की किसी भी फसल की जानकारी हो लेकिन अपने खेत की मिट्टी को पहचानना ना आए, उसे हजारों व्यंजन बनाने की विधि पता हो लेकिन अपने दादी के हाथ की पारंपरिक रेसिपी बनाना ना आता हो। इसलिए हमें याद रखना होगा, तकनीक नई पीढ़ी को आगे ले जाए लेकिन अपनी जड़ों से दूर ना करे, ये सबसे खास बात है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी सी बातें हैं, अभी और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि आप सभी के साथ साझा करनी है, लेकिन फिलहाल आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। ट्यून किया है इस समय आप सभी ने 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम के साथ आप सभी अपनी डेली रूटीन को एंजॉय कर रहे हैं। और दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बेहद खास बात जो है वो आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ, जो कि AI का प्रचलन जिस तरह से बढ़ता जा रहा है। आज के युवा हो, चाहे छोटे से बच्चे हो, चाहे बड़े हो, हर कोई AI पे निर्भर होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी सोचने की क्षमता जो है उस पे भी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि जब हम हर चीज के लिए डिपेंड हो जाएंगे तो हम अपने दिमाग पे थोड़ा सा भी जोर जो है वो नहीं डालेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि ये जो AI है, क्या ये सुविधा है या आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली है। तो बात यह है कि अगर हम इसे जिम्मेदारी से निभाते हैं या इसका यूज करते हैं तो हो सकता है कि ये एक सुविधा ही रहे, लेकिन अगर हम उन जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करते हैं, संतुलन को बिगाड़ते हैं, तो आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर हमारे सामने आ सकती है। जी दोस्तों, इसी बात के चलते युवाओं की हम बात करें तो हिमाचल का युवा आज पहले से कहीं ज्यादा डिजिटल दुनिया से जुड़ा है। शिक्षा हो, प्रतियोगी परीक्षा हो, नौकरी हो, स्टार्टअप हो या पर्यटन, हर जगह तकनीक की भूमिका बढ़ रही है। AI से पढ़ाई की जा सकती है, AI से नई भाषा सीखी जा सकती है, बिजनेस आइडिया पर काम किया जा सकता है, कंप्यूटर कोडिंग सीखी जा सकती है, किसी विषय को सरल भाषा में समझा जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, AI से काम करवाइए पर अपनी जगह काम मत करने दीजिए। जी दोस्तों, अगर AI आपके लिए उत्तर लिखता है तो उसे समझिए, अगर AI कोई जानकारी देता है तो उसकी सत्यता जांचिए, अगर AI कोई करियर सुझाव देता है तो अपने शिक्षक, माता पिता और विशेषज्ञ से भी बात कीजिए, क्योंकि मशीन के पास डेटा जरूर हो सकता है लेकिन आपके जीवन का अनुभव सिर्फ और सिर्फ आपके पास हो सकता है। जी दोस्तों, तो जब भी हम AI से कुछ भी सर्च करते हैं, कुछ भी जब हम देखते हैं वहां से सॉल्यूशन, तो जस्ट हमें वहां से कोशिश करनी चाहिए कि जो हमें समझ नहीं आ रहा, जो कंफ्यूजन चल रहे हैं, तो एक छोटा सा आइडिया हम वहां से लें, बाकी हम अपने जो एक कहते हैं ना कि सोचने की क्षमता, उसे बंद ना करें, उसे थोड़ा सा बढ़ाएं और उसकी मदद से ही उस आखिरी पड़ाव तक पहुंचें, तो शायद हमारे लिए भी सही रहेगा और ये जो AI का संतुलन है ये भी बना रहेगा। तो दोस्तों, इसी खास बातचीत के साथ आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अगला गीत आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट से।

इतना सही गीत आप सभी ने एंजॉय किया। और आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि एआई जो है वो किस तरह से हमारी मदद कर सकता है, हम कैसे उससे मदद ले सकते हैं। तो हमेशा एआई जो है सही जवाब दे दोस्तों, ये जरूरी नहीं है। हम बिल्कुल ट्रस्ट और एक तरह से डिपेंड जो है वो हमें नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या हमें इससे डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों डरने से ज्यादा जो है हमें समझने की जरूरत है। एआई का विरोध नहीं कर रहे हैं और ना ही तो हमें जो है इस अंधी दौड़ जो है ये एक दूसरे को देख के जो है एक दूसरे के पीछे हम भाग रहे हैं, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें सुरक्षित, जिम्मेदार, मानव केंद्रित एआई जो है उस पर थोड़ा सा सोच विचार करना चाहिए। ऐसी तकनीक जो इंसान की क्षमता बढ़ाए, उसे बेरोजगार या असहाय बनाने की दिशा में ना धकेले, ऐसी तकनीक जो बच्चों को सीखने में मदद करे लेकिन उनकी अपनी कल्पना और सोच को खत्म ना करे। तो जहां एआई की हम बात करें दोस्तों, तो उसके चलते कहीं ना कहीं जो है वो हमारी सोच समझने की जो क्षमता है वो खत्म होती जा रही है। तो ये मोबाइल फोन जो है हमारे हाथों में जब तक है तब तक हमारा दिमाग एक तरह से काम करना बंद कर देता है। हम हर चीज के लिए डिपेंडेंसी जो है वो बहुत एक गलत प्रभाव जो है हमारी जिंदगी में इसका पड़ सकता है। तो बहुत ही खास ये बातचीत आज की आप सभी के साथ साझा की है दोस्तों कि किस तरह से हम इसका यूज करें अपनी जिंदगी में और किस तरह से ना करें। तो फिलहाल अब समय हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज की ये खास बातचीत आप सभी ने जरूर एंजॉय की होगी और जरूर इस बात पे गौर करेंगे, थोड़ा सा इस पे और ज्यादा सर्च करेंगे, क्योंकि जब हमारे सामने बातें आ जाती हैं तो जिज्ञासा जो है वो जाग जाती है कि इसके बारे में थोड़ा और सोचा जाए, समझा जाए, जाना जाए। तो फिलहाल अपनी रेडियो दोस्त रुचिका को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की और आप इस पे सोच विचार कीजिए और इंजॉय करते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपनेपन की।

0: जूही, क्या है? क्या है ये?
1: आपने तो कहा था जब तक डस्टबिन ना मिले कचरा अपने पॉकेट में रखना, पॉकेट फुल हो गए। छोटी आदतों से ही होता है बड़ा बदलाव।
2: एक नई आदत अपनाते, जब तक डस्टबिन ना मिले
1: इंडिया के हर पॉकेट को ही डस्टबिन बनाते।

0: रवि जी, मैं से तो सुभाष चटनिस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यहीं हॉस्टल में पढ़ता है?
1: जी सर।
0: वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है।
2: ड्रग्स?
1: अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात कराइए प्लीज।
0: अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा।
1: अरे नहीं सर, कोई तो उपाय होगा।
0: जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर अंकल तो स्मार्ट निकले।
3: अबे चल,
4: वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया। मेरा गेम ओवर।
3: चले, असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत करें।
5: रुको, सोचो और एक्शन लो।

उसे ढोल नगाड़ों और भक्ति के जयकारों के साथ तैयार हो जाइए गणपति बप्पा का भव्य

पार्वती के प्रिय पुत्र, रिद्धि सिद्धि के दाता, विघ्नहर्ता गणपति बप्पा आ रहे हैं अपने भक्तों के द्वार आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने, हर विघ्न बाधा को दूर भगाने और आपकी हर मंगल कामना पूर्ण करने। तो आप सभी को आ रहे इस साल के गणेश चतुर्थी के इस पावन त्योहार की ढेर

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: सुनो, क्या मैं बदतमीज हूँ?
3: Oh, no.
4: नहीं।
2: क्या मैं बहुत बड़बड़ करता हूँ?
4: नहीं।
2: क्या मुझे बोलने की अक्ल नहीं है?
4: नहीं।
2: क्या मुझ में दिमाग की कमी है?
4: नहीं। तो
2: क्या मैं अगली दिखता हूँ?
4: अरे नहीं बाबा।
2: तो फिर मम्मी ऐसे क्यों बोल रही है कि तू अपनी बीवी जैसा बनता जा रहा है?

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ, गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

0: दीदी, क्या है? क्या है ये?
1: आपने तो कहा था जब तक डस्टबिन ना मिले कचरा अपने पॉकेट में रखना, पॉकेट फुल हो गए। छोटी आदतों से ही होता है बड़ा बदलाव।
2: एक नई आदत अपनाते, जब तक डस्टबिन ना मिले
1: इंडिया के हर पॉकेट को ही डस्टबिन बनाते।

0: रवि जी, मैं से जो सुभाष चटनीस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यहीं हॉस्टल में पढ़ता है?
1: जी सर।
0: वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है।
2: ड्रग्स?
1: अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात कराइए प्लीज।
0: अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा।
1: अरे नहीं सर, कोई तो उपाय होगा।
0: जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर अंकल तो स्मार्ट निकले।
3: अबे चल आजा।
4: वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया। मेरा गेम ओवर।
5: चले, असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत करें।
6: रुको, सोचो और एक्शन लो।

शिव और पार्वती के प्रिय पुत्र रिद्धि सिद्धि के दाता विघ्नहर्ता गणपति बप्पा आ रहे हैं अपने भक्तों के द्वारा आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने, हर विघ्न बाधा को दूर भगाने और आपकी हर मंगल कामना पूर्ण करने। तो आप सभी को आ रहे इस साल के गणेश चतुर्थी के इस पावन त्योहार की

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: सुनो, क्या मैं बदतमीज हूँ?
3: Oh, no.
4: नहीं।
2: क्या मैं बहुत बड़बड़ करता हूँ?
4: नहीं।
2: क्या मुझे बोलने की अक्ल नहीं है?
4: नहीं।
2: क्या मुझ में दिमाग की कमी है?
4: नहीं। तो
2: क्या मैं अगली दिखता हूँ?
4: अरे नहीं बाबा।
2: तो फिर मम्मी ऐसे क्यों बोल रही है कि तू अपनी बीवी जैसा बनता जा रहा है?

0: दोस्तों लीजिए फिर आगे वही दिन वही बार जिसका हम सभी को था बेसब्री से इंतजार।
1: आप सभी को स्वच्छिका और सुजल का सादर नमस्कार।
0: क्या है कि स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जवानी कार्यक्रम देता है हमको शुद्ध विचार। हर तरफ हर कोना हर गांव में हो रहा है स्वच्छता का प्रचार।
1: दोहराना है हमें ये संकल्प और ये व्यवहार कि स्वच्छता ही है हम सबका अधिकार।
0: रखना है स्वच्छ हर घर का शौचालय इस बार। धोएंगे साबुन से हाथ खाने के पहले और सोच के बाद।
1: करेंगे सफाई से प्यार करेंगे सबसे स्वच्छता की गुहार।
0: केवल मनोरंजन नहीं उद्देश्य है हमारा।
1: बैठ जाए हर मस्तिष्क में ये संकल्प कि स्वच्छता ही है एकमात्र विकल्प।
0: स्वस्थ तन और स्वस्थ मन में ही बास करता है शुभ विचार।
1: प्रण करें आज ही कि स्वच्छ सुजल करना है हमें हर गांव।
0: दूर हो जाएगी बीमारी अगर स्वच्छता की होगी वातावरण में बहार।
1: दूषिका भी भाग जाएगी अगर होगी आपके आसपास ऐसी बयार।
0: यही है स्वच्छ सुजल गांव अभियान की पुकार। साथियों इन सब के सहारे ही होगी हमारी नैया पार।
1: आज के इस कार्यक्रम में हम आपको स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की पूरी जानकारी देंगे। विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों की कहानियां सुनेंगे और साथ ही आपको ये बताएंगे कि कैसे इस योजना का उद्देश्य फेज वन में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और शौचालय की सुविधा प्रदान करके ODF भारत बनाना था और फेज टू में हर गांव को ODF प्लस मॉडल बनाना है। इस मिशन के तहत शौचालय निर्माण और ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक को स्थापित कर स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने तथा लोगों में व्यवहार परिवर्तन लाने पर जोर दिया जाता है।
0: स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के पहले चरण में सरकार ने हर गांव के हर घर में शौचालय बनाने का संकल्प लिया था और स्वच्छिका तुमको याद है ना, देश के सभी गांव ने स्वयं को ODF घोषित किया था। अब ये न कह देना कि ODF गांव क्या होता है।
1: अरे ऐसा कैसे कह दूंगी, मुझे मालूम है। ODF का मतलब खुले में शौच मुक्त गांव, ओपन डेफिकेशन फ्री। ये एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग उन क्षेत्रों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जहां लोग अब खुले में शौच नहीं करते बल्कि शौचालय का उपयोग करते हैं। ये हम स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सुनिश्चित करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण पहल है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों की स्वच्छता और वहाँ की महिलाओं की निजता और गरिमा सुनिश्चित करती है और सार्वजनिक स्वास्थ्य में भी सुधार लाती है। सही बताया ना?
0: बिल्कुल, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण में हमारे गांव को ODF प्लस मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं। एक ODF प्लस मॉडल गांव वो होता है जो खुले में शौच से मुक्त हो चुका है, ठोस एवं तरल कचरे के समुचित प्रबंधन कर रहा है तथा जहां स्वच्छता का स्तर उच्च हो और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा एवं जल का जमाव ना हो।
1: और इसमें ये सुनिश्चित करना है कि गांव के सभी घरों के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर और आंगनवाड़ी केंद्र में शौचालय की सुविधा हो और सभी सार्वजनिक स्थानों और घरों में ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रभावी प्रबंधन हो।
0: लेकिन सरकार के साथ साथ इसके लिए समुदाय की भागीदारी भी बहुत जरूरी है। हमारी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है रेडियो के माध्यम से और आप लोगों को ये देखना जरूरी है कि इस मुहिम में कोई भी परिवार छूटे ना।
1: अच्छा, लेकिन मुझे ये पता है कि अब तक लगभग 5 लाख से ज्यादा गांव स्वयं को ODF प्लस मॉडल घोषित कर चुके हैं। इसके साथ 5.50 लाख से अधिक गांव में गंदला जल प्रबंधन और 5.32 लाख से अधिक गांव ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कर चुके हैं।
0: देश में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए सरकार के प्रयास जारी हैं। हर गांव को साफ बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना और हर घर में स्वच्छ पानी पहुंचने के लिए जल जीवन मिशन योजना शुरू की गई है और हमारी आपकी सहभागिता इस महा अभियान में बनाकर रखना भी बहुत जरूरी है। तो सुनते रहिए आपका अपना कम्युनिटी रेडियो और उसमें सुनते रहिए ये कार्यक्रम
1: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी, जहां हर घर तक पहुंचेगी हमारी आवाज, हमारी बात। लेकिन फिलहाल इन सारी बातों को विस्तार से बताने के लिए हमारे बीच विशेषज्ञ उपस्थित हो चुकी हैं। चलिए पहले सुनते हैं उनकी बात।

नमस्कार साथियों, मैं ऐश्वर्या सिंह, संयुक्त सचिव एवं मिशन डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से बोल रही हूं। आज आप सभी से स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी कार्यक्रम के जरिए जुड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की, स्वच्छ सुजल गांव की, और हम इन दोनों विषयों में कैसे एक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से जब स्वच्छता और खुले में शौच का विषय उठाया था तो यह अपने आप में अभूतपूर्व था। उनके मार्गदर्शन में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई और हम सब ने मिलकर अपने देश के हर गांव को खुले में शौच से मुक्त यानी ODF बनाने का जिम्मा उठाया। आने वाले वर्षों में यह मिशन और स्वच्छता का विषय एक जन आंदोलन बना और हमें इसमें आप सभी का पूर्ण सहयोग मिला। इस दौरान देश में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ और महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर 2019 में हमने खुद को ODF घोषित किया। इस अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि और इसकी नींव

0: ही लोगों में आया व्यावहारिक परिवर्तन या बिहेवियरल चेंज। घरों, पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों, युवाओं, बच्चों सभी में स्वच्छता के लिए जागरूकता बढ़ी और सभी ने इसको अपनी जीवन शैली का एक अंग बनाया। लेकिन हम केवल ODF पर नहीं रुके। 2020 से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण यानी फेज 2 पर काम शुरू हुआ। इसमें लक्ष्य था ODF से आगे ODF प्लस की ओर बढ़ना, अपने गांवों को ODF प्लस मॉडल गांव बनाना। ODF प्लस मॉडल गांव का अर्थ है कि गांव न केवल खुले में शौच से मुक्त हो बल्कि वहां का कचरा, गंदा पानी और प्लास्टिक अपशिष्ट या प्लास्टिक वेस्ट का भी सही तरीके से निपटान किया जा रहा हो। मतलब इसके तहत सरकार ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन यानी सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर भी जोर दे रही है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस दूसरे चरण में 31 मार्च 2026 तक हमारे 5 लाख से भी ज्यादा गांव ODF प्लस मॉडल घोषित किए जा चुके हैं और यह काम आप सभी के राज्यों में अभी भी जोर शोर से जारी है। ऐसे ही स्वच्छ सुजल गांव एक ऐसा गांव होता है जहां साफ पेयजल की व्यवस्था हो और हर परिवार के पास बेहतर स्वच्छता की भी सुविधा हो, यानी वह एक ODF प्लस मॉडल गांव भी घोषित किया जा चुका हो। साथियों, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण केवल एक सरकारी योजना नहीं, यह एक जन आंदोलन है जिसमें सरकार के साथ साथ आप सभी की जन भागीदारी बहुत आवश्यक है। इस अभियान के अंतर्गत बन रही सुविधाओं, शौचालयों, कचरा प्रबंधन के केंद्र, प्लास्टिक वेस्ट यूनिट इत्यादि के रख रखाव और इनको सुचारू रूप से चलाने में राज्यों, जिलों, गांवों की हम सबकी अहम भूमिका है। इस भूमिका को भी आप सभी को पूरे मन से निभाना है। और हाँ, आपसे अनुरोध है कि अपने गांव, ब्लॉक, जिले के बच्चों को, युवाओं को भी स्वच्छता के विषय के प्रति जागरूक बनाएं, उनको इस अभियान के अंतर्गत बनी व्यवस्थाएं दिखाएं, जिससे भविष्य में वे भी आगे बढ़कर स्वच्छता का दीप प्रज्वलित रखें। तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें, हम राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना से हर काम करेंगे। हम स्वच्छ भारत विकसित भारत के लक्ष्य में अपना भरपूर सहयोग करेंगे। न हम कचरा फैलाएंगे, न दूसरों को फैलाने देंगे। हम अपने गांव को ODF प्लस मॉडल गांव बनाएंगे और जो गांव ODF प्लस मॉडल बन चुके हैं उनकी व्यवस्थाओं को सुचारू रखने में सहयोग देंगे। इसी संदेश के साथ मैं ऐश्वर्या सिंह आपसे विदा लेती हूँ। स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के इस जन आंदोलन से। धन्यवाद। जय हिंद।
1: हमारी विशेषज्ञ ऐश्वर्या सिंह, संयुक्त सचिव एवं मिशन डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने कितने अच्छे से ये सारी बातें आप लोगों तक पहुंचाई। याद रखना, आपको और या आपके क्षेत्र में लागू हो, इसके लिए आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है।
2: एक मजे की बात बताऊं सुजन, देश भर के 100 सामुदायिक रेडियो के माध्यम से इस कार्यक्रम का पहला एपिसोड ही सुनने के बाद मैं स्वच्छिका और तुम सुजन साथ में दूषिका भी बहुत फेमस हो गए हैं।
1: अच्छा, कैसे?
2: अलग अलग गांव में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमारे चरित्र को प्रस्तुत किया जा रहा है।
1: अच्छा, कहाँ कहाँ पे?
2: चलो तुम्हें रामपुर गांव की कहानी सुनाती हूँ। वहाँ पर नुक्कड़ नाटक के रूप में क्या प्रस्तुत हो रहा है वो सुनवाती हूँ। वहाँ पर एक नाटक हो रहा है जिसका नाम है दूषिका की हार, स्वच्छ भारत मिशन की जीत।
3: कहते हैं जब बुराई बढ़ती है तो अच्छाई भी ताकत से खड़ी होती है। ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां स्वच्छता को गंदगी ने खुली चुनौती दी, जहां दूषिका ने फैलाया अंधेरा और स्वच्छिका ने जलाया स्वच्छता का दीपक, और सुजल कुमार बना उस रोशनी का स्वच्छता दत्त। जानेंगे कैसे काम आई बुजुर्ग की नसीहत। आइए सुनते हैं दूषिका की हार, स्वच्छ भारत मिशन की जीत।

0: आ गई मैं दूषिका, गांव की नालियों और कूड़े के ढेर से निकलकर, कभी निष्क्रिय शौचालयों में, कभी गंदे घरों में मेरा साम्राज्य बढ़ता ही जा रहा है। जहां शौचालय बनते तो हैं मगर लापरवाही करने से निष्क्रिय हो जाते हैं, वहीं तो बसती हूं ना मैं। जो कहते हैं कल करेंगे साफ, उनको जल्द से जल्द मैं कर देती हूँ बीमार। गंदा और निष्क्रिय शौचालय मेरा आशियाना, फैला हुआ गंदा पानी और टूटा नल मेरा ठिकाना। मेरा काम सबको बीमार बनाना।
1: घर में शौचालय तो है पर नल की टूटी खराब है। कितनी बार रमेश के पिताजी को कहा बनवा दे लेकिन सुनते ही नहीं। ऐसे शौचालय ना होने पर तो क्या हमें फिर से खेतों में जाएंगे? नहीं नहीं, हमारा गांव तो ODF है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
0: ये है मेरी एक और जीत।
2: हमारे कुछ शौचालय निष्क्रिय हैं और वे लोग उनको ठीक नहीं करवा रहे। इस वजह से शायद पिछले महीने 4 बच्चे बीमार पड़े थे। सरपंच जी कुछ कीजिए।
3: गांव वाले गांव में गंदगी भी फैला रहे हैं और गांव में लगाए गए कूड़ेदान का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।
1: घर में जगह होने के बाद भी घरों के गंदे पानी से गाँव में जल भराव कर रहे हैं।
0: बस ऐसे ही रहो, मुझे तुम सबका लापरवाह रवैया बहुत पसंद है। तुम खुद शौचालय साफ नहीं रखते, उसके रखरखाव का ध्यान नहीं करते और गांव में भी कूड़ा इधर उधर फेंकते हो, कूड़ादान भी प्रयोग नहीं करते।
4: एक दिन गांव का एक युवा आत्मविश्वास से भरपूर, आंखों में नए भारत के निर्माण का सपना लिए तुजल कुमार अपने पड़ोस के गांव जाता है।
5: राम राम भाइयों, राम राम। ये गांव में चारों ओर सन्नाटा क्यों है? सब इतने दुखी मन से क्यों बैठे हुए हैं और इतनी गंदगी है यहाँ पर, क्या बात है भाइयों?
6: लगता है जैसे इसको तो कुछ पता ही नहीं। हाँ नहीं तो,
7: सच कह रही हो बहन, बन तो ऐसे रहा है जैसे इसको तो कुछ पता ही नहीं।
5: अब समझ गया चाची, सब समझ गया हूँ। इस गांव में ये दुख और सन्नाटे का कारण क्या है? अस्वच्छता है इस गांव में दुख और सन्नाटे का कारण।
0: मैं हूँ इन सब का कारण। बोलो क्या करोगे तुम? बोलो बोलो। हाँ, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। कुछ दिनों में तो मैं तुम्हें भी अपना शिकार बना लूंगी, समझे?
5: अच्छा, तो तुम हो दूषिका और ये सब तुम्हारा किया धरा है। अब मैं सब समझ गया। देखो मैं कुछ दिनों में कैसे तुम्हारा सफाया करता हूँ।
0: मेरा सफाया क्यों करोगे? मैं तो उन गांव वालों को निशाना बनाती हूँ जो गंदगी फैलाते हैं, जो अपने शौचालयों का रखरखाव नहीं कर रहे हैं, गीले सूखे कचरे के बीच अंतर नहीं जानते, जो ये भी नहीं जानते कि जैविक कचरा यानी घर की रसोई से निकलने वाले कचरे को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। ऐसे सभी लोगों पर मैं राज करती हूँ। उनकी यही लापरवाही तो मेरी जीत है, लेकिन जनता को स्वच्छता के बारे में समझाने का काम तो तुम्हारा है सुजल।
5: दूषिका तुम गलत हो, ये काम अभी भी हो रहा है और हमारी गांव की जनता को समझ है। वो स्वच्छता को कायम रखने के लिए शौचालय के रख रखाव, गांव की स्वच्छता के लिए गीले सूखे कचरे के अलग अलग डस्टबिन का उपयोग कर रहे हैं। इसके लिए सरकार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत जागरूकता अभियान भी समय समय पर करती रहती है, समझी तुषिका तुम?
0: हाँ, समय के साथ जनता जागरूक होती जा रही है, लेकिन गंदा पानी तथा मलीय कचरा प्रबंधन को व्यापक रूप से अपनाने में अभी काफी समय लगेगा।
8: दूषिका, गंदला जल प्रबंधन और मलीय कचरा प्रबंधन भी सभी गांवों में विभिन्न माध्यम जैसे सोख का गड्ढा, घर और सामुदायिक स्तर पर वेस्ट सिविलाइजेशन पोर्न डिवेट और फेजेस लेस ट्रीटमेंट प्लांट जैसे संरचनाओं से की जा रही है, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। देखना आने वाले दिनों में गांव की जनता कैसे तुम्हारा नामो निशान मिटा देगी।
4: सुजल गांव में स्वच्छता पर नुक्कड़ नाटक करता है, बच्चों को खेल खेल में सिखाता है, बड़ों से मिलकर समझाता है।
5: शौचालय सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, ये हमारी माताओं बहनों बेटियों की गरिमा है। ये हमें बीमारी से अस्वच्छता से बचाते हैं। ये है बीमारी से लड़ने का हथियार। अपने घरों के शौचालयों का रख रखाव और उनकी सफाई करना, मरम्मत करना घर वालों की जिम्मेदारी है। गांव को स्वच्छ रखने के लिए सही कचरा प्रबंधन और गंदला जल का निपटान भी हमारी ही सामूहिक जिम्मेदारी है। खुद भी स्वस्थ रहो और दूसरों को भी स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छता के प्रति जागरूक करो।
4: धीरे धीरे गांव के कुछ लोग प्रेरित होते हैं और शौचालय का नियमित सफाई शुरू करते हैं और गांव के लोग एकजुट होकर सामुदायिक शौचालयों का भी रखरखाव शुरू करते हैं। इसी के साथ सुजल उनको सूखा कचरा प्रबंधक और गंदला जल प्रबंधन का अच्छा प्रभाव भी दिखाता है, जैसा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में सिखाया गया था। लोग इस दिशा में काम करने लगे, दूषित का बेचैन होती है और गांव की गली में छिप कर देखती है।
0: ये क्या हो रहा है, लोगों ने नालियां साफ कर दी हैं क्या? ये शौचालय का नल भी ठीक हो गया? दुर्गंध, अरे वो कहाँ गई? मच्छर कहाँ गए? गंदला जल फैला नहीं? अरे अरे, ये गांव में ये सब क्या हो रहा है?
4: अब गांव में आती है उजली सी रोशनी के साथ स्वच्छिका।
8: गांव वासियों, तुम्हारी जागरूकता ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, जहाँ शौचालय का निरंतर उपयोग और सही तरीके से रखरखाव होता है, जहाँ जैविक सूखे और प्लास्टिक कचरे का सही प्रबंधन होता है, वहीं रहती हूँ मैं, स्वच्छिका।
4: अब गांव में हर घर हर गली में स्वच्छता का जन आंदोलन फिर से खड़ा हो।

0: अरे नहीं, स्वच्छता की ये चमक मेरी गंदगी को निगल रही है, मेरी बीमारियों का साया खत्म होता जा रहा है। सुजल की बातें लोगों की आदतें बदल रही हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ? अब मेरा ठिकाना कहाँ होगा? शौचालय का नियमित रूप से रखरखाव हो रहा है, नाली साफ कर दी गई, घर पर ही कूड़े कचरे का निपटान हो रहा है। घर का गंदला जल घर के किचन गार्डन में सोखता खड्डे में प्रयोग हो रहा है।
1: स्वच्छिका, सुजल कुमार और गांव वाले बिल्कुल रैली निकाल रहे हैं, सब मिलकर नारा लगा रहे हैं। सुजल की बातों को गांव वाले दोहराते हैं।
2: खुले में शौच को ना कहो, बीमारी को दूर भगाओ,
3: शौचालय को साफ रखो, स्वच्छ गांव बनाओ, शौचालय को साफ रखो, स्वच्छ गांव बनाओ।
1: दूषिका थक कर गांव की सीमा पर बैठकर रो रही।
0: मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सब सच में बदल सकते हो। तुम सब ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अभियान में जन भागीदारी के साथ साथ लोगों की सोच को भी बदला। अब तो मुझे जाना ही होगा।
1: गांव की महिलाएं स्वच्छता को फूलों से सजा रही हैं, बच्चे नाच रहे हैं।
4: तुम सबकी मेहनत ने दूषिका को हराया, लेकिन याद रखो, अगर सफाई की आदत छूटी तो वो लौट सकती है, इसलिए सफाई को आदत बनाओ, मजबूरी नहीं।
0: अरे गांव वालों, शौचालयों में रोज रोज सफाई की क्या जरूरत है? गंदा तो होना ही है, एक दिन छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है? गांव में कूड़ा कचरा फैलने दो और जल जमाव होने दो।
5: फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है दूषिका। गंदे शौचालय और गंदगी से ही बीमारियां बढ़ती हैं। अगर हम रोज सफाई करें तो तुम दम तोड़ दोगी।
6: ये दूषिका फिर से आके हमारे गांव में बीमारी फैलाना चाहती है। देखो कैसे भूतनी की तरह हंस रही है। गांव वालों, अब से सफाई को अपनाओ।
0: औरतें ही तो करती हैं ये साफ सफाई, पुरुष क्यों हाथ लगाएं? अब नहीं बोलोगी?
4: सफाई किसी एक का काम नहीं, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। अगर सब मिलकर साफ करें तो किसी पर बोझ नहीं पड़ेगा। और सुनो सब लोग, शौचालय के प्रयोग के साथ जरूरी है हाथ धोना। शौच के बाद हाथ ना धोना बीमारी को न्योता देना है। हाथ साबुन से अच्छे से धोना उतना ही जरूरी है जितना खाना खाना।
7: हम सब समझ गए हैं दूषिका, अब तुमसे नहीं डरेंगे। शौचालय को साफ रखेंगे, रोज उपयोग करेंगे, हाथ धोएंगे और गांव में स्वच्छता रखेंगे और हमारा गांव ओडीएफ प्लस मॉडल बनाएंगे, तुम्हें दूर भगाएंगे।
0: ओह, ये तुम सब क्या कर रहे हो? लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो?
4: नहीं दूषिका, हम उनको सिर्फ जागरूक कर रहे हैं। सूखा और गीला कचरा सही तरीके से निपटान करें, गंदला जल के लिए सोखता गड्ढा और सही तरीके से नालियों का निर्माण, साथ ही रखरखाव किया जाए, प्लास्टिक की थैली का उपयोग ना करें, मलिय कचरा प्रबंधन के लिए गांव के आसपास एफएसटीपी बनाएं या पास के शहरी एफएसटीपी या एसटीपी से जुड़ें।
1: गांव रामपुर अब नहीं रहा पहले जैसा, हर घर में शौचालय है, लोग कूड़ा कचरा बाहर नहीं फेंक रहे हैं, गांव में जल जमाव नहीं हो रहा है, बच्चे बीमार नहीं होते, महिलाएं सुरक्षित हैं और दूषिका हार चुकी है। ये है असली स्वच्छ सुजल गांव की तस्वीर।
8: स्वच्छ भारत का सपना है, हर गली में स्वच्छता है, शौचालय की जिम्मेवारी, हर दिल की अब तैयारी, सुजल स्वच्छ गांव, सुजल स्वच्छ भारत, सबका साथ, सबका विकास, सबका

0: मजा आ गया ना हमारे कैरेक्टर स्वच्छिका सुजल कुमार को लेकर। रामपुर गांव में स्वच्छ भारत मिशन में हुई कमी को लेकर इस तरह का नाटक खेला जा रहा है। इस रेडियो कार्यक्रम के अलावा और लोग इस स्वच्छ भारत मिशन का जन आंदोलन के जरिए बता भी रहे हैं कि ये मिशन भारत की प्रगति में योगदान दे रहा है। आइए इस संदर्भ में एक स्वच्छाग्रही से की गई बातचीत सुन लेते हैं।
1: स्वच्छाग्रही ये कौन होते हैं?
0: स्वच्छाग्रही वे व्यक्ति होते हैं जो स्वच्छता के प्रति गांव में जागरूकता फैलाने और लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में शिक्षित करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लोग स्वच्छता को बढ़ावा देने और समुदाय में स्वच्छता की आदतें विकसित करने के लिए काम करते हैं। ऐसे ही एक स्वच्छाग्रही अब हमारे साथ है।
2: रेडियो गुंजन धर्मशाला में आपका स्वागत है और ये विशेष एक कार्यक्रम है, इसके लिए हम आपसे बात करना चाहते हैं। नमस्कार अजीत जी।
3: नमस्कार जी। नमस्कार
2: अजीत जी, पहले तो ये बताएं कि आपका गांव कौन सा है?
3: मेरा गांव सुधेड़, ग्राम पंचायत सुधेड़।
2: अच्छा, ग्राम पंचायत
3: के साथ लगता ही गांव है
2: जी। आप प्रधान हैं वहां के ना?
3: जी, मैं यहां का पंचायत प्रधान हूं।
2: जी अजीत जी, हम आजकल देख रहे हैं फेसबुक पर भी आप बहुत अच्छा मतलब कार्य जो है वो कर रहे हैं। फेसबुक पर तो नहीं कर रहे हैं आप, अपने ग्राउंड पर कर रहे हैं, अपने जीरो लेवल से आप स्टार्ट कर रहे हैं, अपने गांव के लिए कर रहे हैं। कृपया ये बताएं कि आप एक स्वच्छाग्रही के रूप में स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु कौन कौन सी प्रमुख गतिविधियां संचालित करते हैं?
3: देखिए जी, मेरी पंचायत में हमने एक अभियान चलाया हुआ है अपनी पंचायत को कचरा मुक्त करने का। इससे सबसे पहले तो लोगों को इस बारे में एजुकेट करना है
2: जी,
3: नॉट टू यूज द प्लास्टिक। हम प्लास्टिक का जितना कम यूज करेंगे वो हमारे लिए बेहतर रहेगा। इसमें खास तौर पर सबसे जो मेरा फोकस है वो बच्चों के ऊपर है, क्योंकि अगर आप बच्चों को शुरू से ही ट्रेन करेंगे इस बारे में
2: जी,
3: मुझे लगता है वो ये लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट होता है उनके ऊपर, और जो बच्चे हैं वो जल्दी सीखते हैं। तो अभी जो मैंने यहाँ अपने पंचायत में कार्यक्रम शुरू किया हुआ है सफाई अभियान का, इसमें मेरी कोशिश रहती है कि हर वार्ड में से बच्चों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। तो अभी हमारे ये पांच चरण हो गए हैं, चार चरण हो गए हैं। पिछले एतवार को हमारा वार्ड नंबर 4 का अभियान था सफाई का, जिसमें कि ज्यादातर बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जो कि 13 और 12 ईयर्स के बच्चे थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो सबसे अहम तो यह है कि लोगों को एजुकेट करना है कि प्लास्टिक कम यूज करें। पहले से आपने देखा होगा कि जैसे पहले कोई भी फंक्शन होता था गांव में या शहर कहीं भी शहरों में, तो लोगों ने जो जब आप कोई धाम वगैरह का इंतजाम करते हैं, जैसे हमारे कांगड़ा में होता है कांगड़ी धाम बनती है, तो उसमें पत्तल का इस्तेमाल होता था जो कि लोगों ने धीरे धीरे बंद कर दिया। हरे पत्ते से एक पत्तल बनती है, लोगों ने समय के साथ बदलाव के साथ उनको उनका इस्तेमाल बंद कर दिया और लोग पेपर प्लेट्स के ऊपर वो आ गए लोग, है ना, प्लास्टिक का यूज करना शुरू कर दिया लोगों ने। तो अब मैं हर जगह लोगों को ये इस बारे में उनको ये आगाह कर रहा हूँ कि हमें जो हमारी पुरानी पद्धति है उसको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि पत्तल का यूज क्या है वो एकदम बायोडिग्रेडेबल है, और पत्तल को खाना खाने के बाद जब आप कहीं या डंप करेंगे तो उसका वो गल सड़ जाती है, उसकी खाद बन जाती है।
2: जी हाँ बिल्कुल।
3: हाँ जी, प्लेट्स हैं जो थर्मोकोल वाली प्लेट्स हैं वो उनका सड़ना गड़ना बहुत टाइम लेता है।
2: हाँ जी, हाँ जी सही कह रहे हैं आप।
3: बढ़ावा देता है वो, है ना जी।
2: अगला मेरा प्रश्न रहेगा आपसे कि आपके अनुभव में गांव के जो लोग हैं वो स्वच्छता और शौचालय उपयोग के प्रति कितने जागरूक हैं? इस संदर्भ में आपको समुदाय में किस प्रकार का सहयोग प्राप्त होता है? मतलब लोग जागरूक भी होने चाहिए और आप कैसे सहयोग करते हैं लोग?
3: जी, ग्रामीण परिवेश के लोग भले ही तब अधिक पढ़े लिखे ना हो, लेकिन उनमें समझ बहुत ज्यादा होती है लोगों में, है ना, गांव के लोगों में अपनी जड़ों से जुड़े हुए लोग जो है वो उनमें सिविक सेंस बहुत ज्यादा है उनमें।
2: मतलब गांव के लोग आपको सहयोग देते हैं, है ना?
3: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो किस तरह का सहयोग देते हैं वो आपको, जैसे आप बुलाते हैं तो वो आ जाते हैं?
3: देखिए, आप जब लोगों को आप बुलाएंगे ना, जैसे मैंने कहा कि लोगों में सिविक सेंस बहुत है, इसमें गांव के लोग ग्रामीण परिवेश के लोग हैं लेकिन समझदार बहुत, भले ही कम पढ़े लिखे होंगे लेकिन समझदार बहुत है। तो आपकी एक आवाज के ऊपर सारे इकट्ठे हो जाते हैं वो। मैंने जब जब लोगों को जहां जहां लोगों को बुलाया, मैंने लोग जिन जिन बुलाया मैंने सभी लोग आए, और स्वच्छता को लेकर जो भी हमने उनसे बात करी, जो उन्हें बताना चाहा, उन्होंने बिल्कुल उसको पूरे ध्यान से सुना और उसके ऊपर अमल भी करते हैं लोग।
2: ठीक है,
3: अगर आप किसी बात पे उनको कहें कि आपने ये नहीं करना है तो उसको बहुत ध्यान से देखते हैं और उसमें उस पर अमल भी करते हैं लोग, उनको पूरा सहयोग मिलता है।
2: अजीत जी, क्या आपके गांव के सभी घरों में शौचालय उपलब्ध हैं?
3: हाँ, शौचालय की बात जैसे आपने की तो उसमें
2: अगर हाँ तो अगर जैसे आप हाँ कह रहे हैं तो क्या उनका नियमित और समुचित उपयोग?
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल नियमित उसका उपयोग होता है और मुझे लगता है कि वो जो खुला शौच का जो प्रचलन होता था पहले अब नहीं रहा गाँव में।
2: अच्छा,
3: लोग इस बात को लेके बहुत सजग है कि हमें जो है वो खुले में शौच नहीं करनी है, लोग उसका सही इस्तेमाल करते हैं शौचालय का और प्रॉपरली इसका वो होता है यूज होता है।
2: ठीक है जी। गांव में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन जैसे सॉलिड और लिक्विड वेस्ट होते हैं, उनका मैनेजमेंट की व्यवस्था, वर्तमान व्यवस्था आपके गांव में क्या है?
3: अभी देखिए हम इसके शुरुआती दौर में हैं, इससे पहले तो कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अभी मैंने एक हमारे पंचायती राज विभाग की तरफ से भी हमें एक निर्देश आए हैं कि गाँव को अपना जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो है वो कार्यक्रम शुरू करना पड़ेगा। और अब देखिए गांव में मोस्टली जो है मतलब व्यवसायिक प्रस्ताव जगह हम बहुत काम रहती है,
2: हाँ, चुनौतियों पे आ जाते हैं ना हम कि इनके मतलब जो इसके क्रियान्वयन में इम्प्लीमेंटेशन में जो चुनौतियां हैं फिर वो क्या आएंगी गांव में?
3: देखिए चुनौतियां तो शुरू में आती है, कोई भी आप नया काम शुरू करेंगे तो उसमें चुनौतियां आपको आएंगी, लेकिन आपको उन चुनौतियों को पार पाना होता है। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने अपनी पंचायत में ये इसका जो हमारी जो ग्रामीण विभाग है हमारा पंचायती राज विभाग है उसकी तरफ से जो निर्देश आए हैं उसके तहत मैंने अपने गांव में ये हर वार्ड में लोगों को इस बारे में एक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लोगों को बताया है कि हम लोग ये अभियान शुरू कर रहे हैं कि पंचायत से जो हमारा ठोस कचरा है उसका निष्पादन कैसे करना है। हम लोगों ने इसका एक पूरे ब्लॉक लेवल पे इसका एक खाका तैयार हुआ है, इसमें हर पंचायत से जो है वो लोगों को अपना कचरे का स्वयं उसका निष्पादन कर करके एक निश्चित स्थान पे उसको लाके डोर टू डोर कलेक्शन होगी उसकी और किसी वाहन के माध्यम से उसका आगे निष्पादन किया जाएगा। तो ये जो है ये काम ये पूरे ब्लॉक लेवल पे हो रहा है, इसका एक टेंडर हुआ है किसी को ना जो कि बाद में इसका जो जहाँ इसको आगे उसका निष्पादन करने के लिए उनको एक टेंडर हुआ है इसका, तो ये काम शुरू हो गया है हमारे पोस्ट मैनेजमेंट का भी।
2: तो अंत में आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे आपके गाँव के निवासियों को?
3: मैं अपने गांव वासियों को यही कहना चाहूंगा कि आपका जो जितना भी सहयोग आप कर सकते हैं अपने गांव को स्वच्छ रखने के लिए, अपने गांव को अच्छे एक निर्मल पंचायत बनाने के लिए आप वो अपना पूरा सहयोग दें और एक पंचायत अपना प्रधान होने के नाते मेरी जो पूरी कोशिश रहेगी कि हमारी पंचायत जो है एक निर्मल पंचायत स्वच्छ पंचायत बन के उभरे।
2: धन्यवाद जी।
3: थैंक यू वेरी मच।
1: स्वच्छ गृह सचमुच समुदाय में स्वच्छता की स्थिति में सुधार लाने में बहुत मदद करते हैं। एक स्वच्छ गृह बनकर आप अपने समुदाय में स्वच्छता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं।
0: मुझे ऐसा लगता है सुजल कि स्वच्छ भारत मिशन भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया गया है और आगे भी सारे गांवों को ODF प्लस बनाकर इस जन आंदोलन भारत को आगे ले जाएगा।
1: सही कह रही हो स्वच्छिका, मैं जब छोटा था ना गांव के स्कूल में जाता था तो वहां पर हमारे गुरुजी हमको स्वच्छता की बहुत सारी छोटी छोटी बातें सिखाते थे और बाल मन में पड़े हुए प्रभाव के बाद आज मैं सक्रिय होकर इस जन आंदोलन में सहयोग दे रहा हूँ।
0: तुम गांव के स्कूल में ही बड़े हो?
1: हाँ, मेरी सारी शुरुआत शिक्षा गांव में ही हुई है और इसलिए मैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लक्ष्य एक स्वच्छ गृही की तरह काम कर रहा हूँ। स्वच्छता को हम सबका स्वभाव और संस्कार बनाने में, बनाए रखने में और लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ।
0: एक बात और, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की ये योजना हर स्तर राज्य जिला और ग्रामीण पर स्वच्छता समितियों का गठन कर स्वच्छता का कार्य सुनिश्चित किया जाता है तथा ग्राम स्तर की जल एवं स्वच्छता समिति स्वच्छता संबंधी काम जैसे शौचालय निर्माण व्यवहार परिवर्तन अभियान और ODF प्लस मॉडल सत्यापन की तैयारी जैसे कई दायित्वों का निर्वहन करती है।
1: बस बस अब मैं सब समझ गया। तुमको बताऊं वो किरण दीदी जो अभी आई थी ना हमारे नुक्कड़ नाटक में, वो भी ग्राम स्तर पर जल एवं स्वच्छता समिति की सदस्य है।
0: मैं सब समझ गई।

0: अब हम चलते हैं अपने उस सेगमेंट की ओर जहां पर श्रोताओं साथियों के नाम होते हैं, प्रश्न हमारे उनके जवाब होते हैं। तो पिछले एपिसोड में यानी एपिसोड नंबर 1 में हमने स्वच्छ गांव के लिए कोई बढ़िया सा स्लोगन हमने भेजने को तो कहा था।
1: तो क्या कुछ अच्छे स्लोगन आए हैं?
0: बिल्कुल आए हैं स्वच्छिका, और उनमें से हमने 3 अच्छे स्लोगन छांट भी लिए हैं। सुनते हैं उन श्रोताओं के नाम और उनके भेजे गए ये स्लोगन।

काफी है, बस एक छोटा सा कदम ही काफी है, पानी बचाएं, अपने ग्रह को बचाएं। तो ये था दोस्तों हमारे छांटे गए नामों में से पहले स्थान पर रहने वाला स्लोगन, जिसे भेजा था शुभम जी ने। तो आइए दोस्तों अपने दूसरे स्लोगन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं दूसरे स्लोगन की ओर। पानी नहीं तो पियोगे क्या, पानी नहीं तो पियोगे क्या, बिना पानी जियोगे क्या। ये था दूसरे स्थान पर रहने वाला प्यारा सा स्लोगन, जिसे लिखा था साक्षी जी ने। आइए दोस्तों बढ़ते हैं तीसरे स्लोगन की ओर। आज तुम जल बचाओ कल वो तुम्हें बचाएगा, आज तुम जल बचाओ कल वो तुम्हें बचाएगा। बहुत ही प्यारा सा स्लोगन रिया जी ने भेजा है लिखकर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इन प्यारे प्यारे स्लोगनों को हम तक पहुंचाने के लिए।

0: जूही,
1: क्या है?
0: क्या है ये?
1: आपने तो कहा था जब तक डस्टबिन ना मिले कचरा अपने पॉकेट में रखना, पॉकेट फुल हो गए। छोटी आदतों से ही होता है बड़ा बदलाव।
2: एक नई आदत अपनाते, जब तक डस्टबिन ना मिले
1: इंडिया के हर पॉकेट को ही डस्टबिन बनाते।

0: और गंदला जल का निपटान भी हमारी ही सामूहिक जिम्मेदारी है। खुद भी स्वस्थ रहो और दूसरों को भी स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छता के प्रति जागरूक करो।
1: धीरे धीरे गांव के कुछ लोग प्रेरित होते हैं और शौचालय का नियमित सफाई शुरू करते हैं और गांव के लोग एकजुट होकर सामुदायिक शौचालयों का भी रखरखाव शुरू करते हैं। इसी के साथ सुजल उनको सूखा कचरा प्रबंधन और गंदला जल प्रबंधन का अच्छा प्रभाव भी दिखाता है, जैसा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में सिखाया गया था। लोग इस दिशा में काम करने लगे, दूषित का बेचैन होती है और गांव की गली में छिप कर देखती है।
2: ये क्या हो रहा है? लोगों ने नालियां साफ कर दी हैं क्या? ये शौचालय का नल भी ठीक हो गया? दुर्गंध, अरे वो कहाँ गई? मच्छर कहाँ गए? गंदला जल फैला नहीं? अरे अरे, ये गांव में ये सब क्या हो रहा है?
1: अब गांव में आती है उजली सी रोशनी के साथ स्वच्छिका।
3: गांव वासियों, तुम्हारी जागरूकता ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, जहाँ शौचालय का निरंतर उपयोग और सही तरीके से रखरखाव होता है, जहाँ जैविक सूखे और प्लास्टिक कचरे का सही प्रबंधन होता है, वहीं रहती हूँ मैं स्वच्छिका।
1: अब गांव में हर घर हर गली में स्वच्छता का जन आंदोलन फिर से खड़ा हो।

0: अरे नहीं, स्वच्छता की ये चमक मेरी गंदगी को निगल रही है, मेरी बीमारियों का साया खत्म होता जा रहा है। सुजल की बातें, लोगों की आदतें बदल रही हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ? अब मेरा ठिकाना कहाँ होगा? शौचालय का नियमित रूप से रखरखाव हो रहा है, नाली साफ कर दी गई, घर पर ही कूड़े कचरे का निपटान हो रहा है। घर का गंदला जल घर के किचन गार्डन में सोखता खड्डे में प्रयोग हो रहा है।
1: स्वच्छिका, सुजल कुमार और गांव वाले मिलकर रैली निकाल रहे हैं। सब मिलकर नारा लगा रहे हैं। सुजल की बातों को गांव वाले दोहराते हैं।
2: खुले में शौच को ना कहो, बीमारी को दूर भगाओ।
3: शौचालय को साफ रखो, स्वच्छ गांव बनाओ। शौचालय को साफ रखो, स्वच्छ गांव बनाओ।
1: दूषिका थक कर गांव की सीमा पर बैठकर रो रही।
0: मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सब सच में बदल सकते हो। तुम सब ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अभियान में जन भागीदारी के साथ साथ लोगों की सोच को भी बदला। अब तो मुझे जाना ही होगा।
1: गांव की महिलाएं स्वच्छता को फूलों से सजा रही हैं, बच्चे नाच रहे हैं।
4: तुम सबकी मेहनत ने दूषिका को हराया, लेकिन याद रखो, अगर सफाई की आदत छूटी तो वो लौट सकती है। इसलिए सफाई को आदत बनाओ, मजबूरी नहीं।
0: अरे गांव वालों, शौचालयों में रोज रोज सफाई की क्या जरूरत है? गंदा तो होना ही है, एक दिन छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है? गांव में कूड़ा कचरा फैलने दो और जल जमाव होने दो।
5: फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है दूषिका। गंदे शौचालय और गंदगी से ही बीमारियां बढ़ती हैं। अगर हम रोज सफाई करें तो तुम दम तोड़ दोगी।
6: ये दूषिका फिर से आके हमारे गांव में बीमारी फैलाना चाहती है। देखो कैसे भूतनी की तरह हंस रही है। गांव वालों, अब से सफाई को अपनाओ।
0: औरतें ही तो करती हैं ये साफ सफाई, पुरुष क्यों हाथ लगाएं? अब नहीं बोलोगी?
4: सफाई किसी एक का काम नहीं, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। अगर सब मिलकर साफ करें तो किसी पर बोझ नहीं पड़ेगा। और सुनो सब लोग, शौचालय के प्रयोग के साथ जरूरी है हाथ धोना। शौच के बाद हाथ ना धोना बीमारी को न्योता देना है। हाथ साबुन से अच्छे से धोना उतना ही जरूरी है जितना खाना खाना।
7: हम सब समझ गए हैं दूषिका, अब तुमसे नहीं डरेंगे। शौचालय को साफ रखेंगे, रोज उपयोग करेंगे, हाथ धोएंगे और गांव में स्वच्छता रखेंगे और हमारा गांव ODF प्लस मॉडल बनाएंगे, तुम्हें दूर भगाएंगे।
0: ओह, ये तुम सब क्या कर रहे हो? लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो?
4: नहीं दूषिका, हम उनको सिर्फ जागरूक कर रहे हैं। सूखा और गीला कचरा सही तरीके से निपटान करें, गंदला जल के लिए सोखता गड्ढा और सही तरीके से नालियों का निर्माण, साथ ही रखरखाव किया जाए। प्लास्टिक की थैली का उपयोग ना करें। मलिन कचरा प्रबंधन के लिए गांव के आसपास FSTP बनाएं या पास के शहरी FSTP या STP से जुड़ें।
1: गांव रामपुर अब नहीं रहा पहले जैसा। हर घर में शौचालय है, लोग कूड़ा कचरा बाहर नहीं फेंक रहे हैं, गांव में जल जमाव नहीं हो रहा है, बच्चे बीमार नहीं होते, महिलाएं सुरक्षित हैं और दूषिका हार चुकी है। ये है असली स्वच्छ सुजल गांव की तस्वीर।
8: स्वच्छ भारत का सपना है, हर गली में स्वच्छता है, शौचालय की जिम्मेवारी, हर दिल की अब तैयारी। सुजल स्वच्छ गांव, सुजल स्वच्छ भारत, सबका साथ, सबका विकास।

0: शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्किन के साथ भी बातचीत करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा के उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो कल से शुरू हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया। इस बीच नाइजीरिया के विदेश मंत्री बियांका ओडुमेगवो ओजोकु और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेथकिन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सीतारामन ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों और व्यापार तथा निवेश संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि आज हर देश की आर्थिक रणनीति में आत्मनिर्भरता और संकट से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही मजबूत सहयोग और साझेदारी के जरिए सतत विकास को बढ़ावा भी जरूरी है। नई दिल्ली में आज सुबह ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने ये बात कही।
1: For BRICS particularly, higher economic activity.
2: विशेष रूप से ब्रिक्स के लिए उच्च आर्थिक गतिविधि और अधिक आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है अधिक आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य व्यवधानों को झेलने की हमारी क्षमता को मजबूत करना है, साथ ही आपस में जुड़े रहना और प्रतिस्पर्धी बने रहना भी है। इसके लिए वास्तविक बाजार प्रथाओं, विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स, पूर्वानुमानित व्यावसायिक माहौल, विविध व्यावसायिक संबंधों तथा पारदर्शी व्यापार और निवेश की आवश्यकता
1: and transparent trade and investment.
0: इस अवसर पर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपनी आर्थिक शक्ति को लोगों के लिए रोजगार, संपदा और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करने की अपील की।
3: ब्रिक्स टुडे रिप्रेजेंट्स ऑलमोस्ट 1/4।
4: ब्रिक्स संगठन आज वैश्विक व्यापार के लगभग 1/4 हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और भारत इसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत में निर्मित अभियांत्रिकी में प्रयोग होने वाले साजो सामान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भारत का निर्यात सर्वाधिक है। भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में भी जाना जाता है। हम ब्रिक्स को इन और अन्य उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में देखते हैं, जिन्हें भारत एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में दुनिया तक ले जाना चाहता है।
0: प्रवर्तन निदेशालय धोखाधड़ी या अनियमित लोन के कथित मामलों की जांच के सिलसिले में कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद में तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ओडिशा के ARSS ग्रुप के आयोजक, निदेशक, परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों से संबंधित स्थानों पर कार्रवाई कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का खतरा लगातार बदल रहा है, लेकिन भारत का संकल्प इसके सभी रूपों के खिलाफ अडिग है। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमले की 25वीं वर्षगांठ पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 384 अंक गिरकर 74,519 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: क्या है?
1: क्या ये?
0: आपने तो कहा था जब तक डस्टबिन ना मिले कचरा अपने पॉकेट में रखना, पॉकेट फुल हो गए। छोटी आदतों से ही होता है बड़ा बदलाव।
2: एक नई आदत अपनाते, जब तक डस्टबिन ना मिले
0: इंडिया के हर पॉकेट को ही डस्टबिन बनाते।

0: रवि जी, मैं से तो सुभाष चटनिस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यहीं हॉस्टल में पढ़ता है?
1: जी सर।
0: वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है।
2: ड्रग्स?
1: अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात कराइए प्लीज।
0: अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा।
1: अरे नहीं सर, कोई तो उपाय होगा।
0: जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर अंकल तो स्मार्ट निकले।
3: अबे चल आजा।
4: वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया। मेरा गेम ओवर।
5: चले, असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत करें।
6: रुको, सोचो और एक्शन लो।

प्रिय पुत्र रिद्धि सिद्धि के दाता विघ्नहर्ता गणपति बप्पा आ रहे हैं अपने भक्तों के द्वार आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने, हर विघ्न बाधा को दूर भगाने और आपकी हर मंगल कामना पूर्ण करने। तो आप सभी को आ रहे इस साल के गणेश चतुर्थी के इस पावन त्योहार की ढेर

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: सुनो, क्या मैं बदतमीज हूँ?
3: Oh, no.
4: नहीं।
2: क्या मैं बहुत बड़बड़ करता हूँ?
4: नहीं।
2: क्या मुझे बोलने की अक्ल नहीं है?
4: नहीं।
2: क्या मुझ में दिमाग की कमी है?
4: नहीं। तो
2: क्या मैं अगली दिखता हूँ?
4: अरे नहीं बाबा।
2: तो फिर मम्मी ऐसे क्यों बोल रही है कि तू अपनी बीवी जैसा बनता जा रहा है?

1481.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम इंजॉय करना है आज पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम। जी हां श्रोताओ, आओ सुनदे ने कार्यक्रम दा सब तो पहला पंजाबी गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी बने होए हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम।

दोस्तों मैं थोड़ी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो पंजाबी की तादा कार्यक्रम रेडियो गुंजन धर्मशाला ते 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।

श्रोता 91.2 MHz ते तुसी बने होए हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम।

दोस्तों मैं थोड़ी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो पंजाबी की तादा कार्यक्रम रेडियो गुंजन धर्मशाला ते 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

श्रोताओ, मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी हुण लैंदी आ तुहाडे तों इजाजत। पंजाबी गीतां दे इस कार्यक्रम ते फिर मिलांगे। सुनदे रहो रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने बंदी।

0: अभी क्या है? क्या है ये?
1: आपने तो कहा था जब तक डस्टबिन ना मिले कचरा अपने पॉकेट में रखना, पॉकेट फुल हो गए। छोटी आदतों से ही होता है बड़ा बदलाव।
2: एक नई आदत अपनाते, जब तक डस्टबिन ना मिले
1: इंडिया के हर पॉकेट को ही डस्टबिन बनाते।

0: रवि जी, मैं से जो सुभाष चटनीस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यहीं हॉस्टल में पढ़ता है?
1: जी सर।
0: वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है।
1: ड्रग्स? अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात करिए प्लीज।
0: अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा।
1: अरे नहीं सर, कोई तो उपाय होगा।
0: जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर अंकल तो स्मार्ट निकले।
2: अरे चल आजा।
3: वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया, मेरा गेम ओवर।
4: चले, असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत करें।
5: रुको, सोचो और एक्शन लो।

पार्वती के प्रिय पुत्र, रिद्धि सिद्धि के दाता, विघ्नहर्ता शिव और पार्वती के प्रिय पुत्र, रिद्धि सिद्धि के दाता, विघ्नहर्ता गणपति बप्पा आ रहे हैं अपने भक्तों के द्वार आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने, हर विघ्न बाधा को दूर भगाने और आपकी हर मंगल कामना

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: सुनो, क्या मैं बदतमीज हूँ?
3: Oh, no.
4: नहीं।
2: क्या मैं बहुत बड़बड़ करता हूँ?
4: नहीं।
2: क्या मुझे बोलने की अक्ल नहीं है?
4: नहीं।
2: क्या मुझ में दिमाग की कमी है?
4: नहीं। तो
2: क्या मैं अगली दिखता हूँ?
4: अरे नहीं बाबा।
2: तो फिर मम्मी ऐसे क्यों बोल रही है कि तू अपनी बीवी जैसा बनता जा रहा है?

अनी देश मिलब तो मेगा हर्ट्स पर ये दुहा सार यंदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने में शशी हाजिर होई यो कार्यक्रम लेकरी माटी दी महक तशो तो माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च तुहा सारे दई स्वागत है। इसी स्वागत कने तुहा सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर कने जुड़ी सकदे कने गलबात छिड़े से जरूर करी सकदे। इस कार्यक्रम का जिहड़ा सफर है से तुहां तक रहिंदा है 2 ते 3 बजे तक। तो जरूर 2 ते 3 बजे तक तुहां इस कार्यक्रम के सफर कन्ने जुड़िया जुड़ने वास्ते जिहड़ा हुंदा नंबर है से तुहां तक पहुँचाइंदे न। नंबर है 7018117091। ये नंबर तुहां तक पहुँचाइते है कने बाकी जिहड़ा काम है से तुहंदे है। तो इसी कने तुहां मौसम दा जिहड़ा आनंद है सभी लै दोने न कने अपनी अपने अपने शहर दे अपने अपने गाँव दा जिहड़ा मौसम है उसकी जानकारी भी जरूर तुहां तक जिहड़े से पहुँचाई सकते कि कदिया मौसम है बरखाड़ा मौसम है या बरखा जिहड़े से लगी हो है। क्योंकि मौसम तो कुथी ना कुथी यहाँ जो बड़ा कुछ सिखाता है कने मौसम के अनुसार चलना भी जरूरी है या अपना जिहड़ा ख्याल है से रखना भी जरूरी है कने यहाँ भी तुहंदा जिहड़ा ख्याल है से जरूर रखना है। तो जरूर तुहंदा ख्याल रखदे न कने इस कार्यक्रम का जिहड़ा आगाज है से करदे इस प्यारे दे गीत कने तुहां सारे भी इंजॉय करा कने नहीं सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपनी पंडी।

श्रोताओं तो सारे सुनिया है गीत की शुरुआत, तो फिर यहाँ वापिस आई हूँ ना अपनी गलबात उपर। कने जरूर कार्यक्रम की जड़ा शुरुआत है आगाज है से यहाँ इस गीत कने करी ते कने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ कने जुड़ी सकते। तो श्रोताओं गलबात अहाँ आज जड़ा कार्यक्रम च करनी है सभी तुहों तक पहुँचा दे न, क्योंकि गलबात भी तुहों तक पहुँचानी है कने जड़ा तुहों दियाँ प्यारिया प्यारिया फरमाइशा न सभी जरूर तुहां तक पहुँचानिया न। तो श्रोताओं बच्चों जो अहां जिड़ा हमेशा हर दिन कोई ना कोई जिड़ा जिंदगी है जिंदगी च हर दिन अहां कुछ ना कुछ नया जिड़ा है से सीखते न, कने नए दिन की शुरुआत अहां किस तरीके ने करते न, कने अपने बच्चों जो जिड़ा है से रिश्तों की अहमियत किस तरीके ने सिखाते न, क्योंकि हर रिश्ते की जड़ा अहमियत है से बड़ी ज़्यादा है, चाहे से परिवार की गल करिए चाहे से बाकी रिश्ते न तिना की गल करिए, हर रिश्ते की अहां दी जिंदगी च बड़ी ज़्यादा अहमियत है। तशु तो बच्चों जो ये चीज़ सिखाना जड़ा है से बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स जड़े से अपने बच्चे जो अच्छे जड़ा संस्कार है अच्छा जड़ा व्यवहार है सभी तिना तक पहुँचाते न, कने इसी कने अच्छी जड़ा शिक्षा है सभी तिना तक पहुँचाते न। तो जरूर अहाँ इदे उपर कार्यक्रम च गल बात करनी है कने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर च अहाँ कने जुड़ी सकते। जुड़ने वास्ते जिहड़ा नंबर है से फ्री ते तुहां तक पहुँचाइंदे न, क्योंकि नंबर तुहां तक पहुँच जाऊँगा ताई तो तुहां इस नंबर पर कॉल करी सकदे या टेक्स्ट मैसेज करी सकदे या व्हाट्सएप मैसेज जिहड़ा से करी सकदे। नंबर तुहां तक पहुँचा देन तुहां जरूर नंबर नोट करा देने न, तो नोट करना जिहड़ा से शुरू होइया। नंबर है 7018117091। नंबर तुहां तक पहुँचाई तै कने अहां भी फिर ते थोड़ा जिहा कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न, कने तुहां जो फिर ते एक प्यारे दे गीत और ले करी चलते न। फरमाइशां दा जिहड़ा दौर है सभी जरूर तुहां तक पहुँचाना है, तो चलते न सुनते न इसा फरमाइशा जो तुहां सारे भी गीतों का जिहड़ा इंजॉय है सभी लै देने न, कने मौसम का जिहड़ा इंजॉय है सभी लै देने न, कने इसी कने अपना जिहड़ा ख्याल है से जरूर रखा देने न, तहां भी तुहां दा जिहड़ा ख्याल है से रखते न, कने गीत तुहां तक पहुँचाते न।

કશું તો ગલબાત હા કરા તીને કે બચ્ચે જેડા ને તીના જો રિશ્તિયાં દી જેડા અહેમિયત હૈ સે કિસ તરીકે ને આ સિખાઈ સકદે તશું તો ઉદાહરણ દી આ ગલ કરીએ તો ઉદાહરણ બની કરી ભી આ જેડા સે આપસી જેડા વ્યવહાર હૈ સે કિસ તરીકે ને રખ દે ને ઘરે દા જેડા માહોલ હૈ સે કિસ તરીકે દે बच्चे दे जिड़ा माता पिता न भाई बहनन या दोस्तन से किस तरीके ने गल कर देन या किस तरीके ने अगला जिड़ा व्यक्ति है उस जो सम्मान दिन देन। कई बार छोटा बच्चा है कने माता पिता न या तीस दे दोस्तन या आपस च कोई गल करा दा है तो जिड़ा आपस च कई बार होंदा ना कि हाँ कुछ भी जड़े से नकारात्मक विचार जड़े से बोलना शुरू करी दें बच्चे सामने तो बच्चा भी उसी चीज़ जो सीखना जड़े से शुरू करी दे तो थोड़ा दिया पहले हाँ जो खुद पर जड़े से सम्मान करना अगर हाँ बड़े न तो बड़े जो किस तरीके ने सम्मान दे देन या छोटे न तो छोटे हैं जो किस तरीके ने सम्मान दे देन या किस तरीके ने यहाँ का जड़ा बोल चाल है क्योंकि जड़ा हाँ बोल चाल रखते न सही बच्चे जड़ा न सीखते न। कई बार तो हाँ ये चीज़ जड़े से अपने घर च भी दिखते होने न या बाहर भी दिखते होने न तो अगर हाँ अपना घरे का जड़ा माहौल है से सकारात्मक वेच रखते न या सकारात्मक सोच जड़ा अपने अंदर रखते न तो कुछ ही ना कुछ ही बच्चा भी सही जड़ा से सीखता है कने रिश्तों की जड़ा अहमियत है कि रिश्तों जो किस तरीके ने जड़ा बड़े न तिना जो सम्मान करना है या छोटी छोटी जड़ा चीज़ा न से बच्चों जो सिखानिया न गुस्से पर काबू किस तरीके ने करना है। आज के दौर की अहाँ गल करिए चाहे बच्चे न चाहे युवा है कुछ ही ना कुछ ही गुस्से पर अहाँ जड़े से काबू नहीं करी पाते न अहाँ हमेशा अपना ही जिड़ा सोच विचार अपने ही सोच विचार दिखते न या अपना ही जिड़ा ये बोली सकते कि अगर अहाँ दे माता पिता अहाँ जो कुछ बोला दे न तो अहाँ झटपट जिड़ा गुस्सा करना जिड़े से शुरू हो जाते तो गुस्सा कयो करा दे माता पिता तो हंदे बारे च अच्छा सोचा दे ताई तो हाँ जो बोला दे तो थोड़ा दिया सोच विचार करके दिखा कि पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चे वास्ते अच्छा ही सोचते न अच्छा सोची करी ही तिना जो अच्छे जिड़ा विचार हैं तिना तक पहुँचाते न अच्छा जिड़ा ज्ञान है तिना तक पहुँचाते न तो थोड़ा दिया अपने जिड़ा माता पिता न तिना दा भी मान सम्मान जरूर करना है कने जिड़ा बुजुर्ग हैं तिना दा भी मान सम्मान जिड़े से करना जरूरी है। इसी कने तुह सारी भी कार्यक्रम दे सफर च जुड़ी सकते तो जरूर समय जड़ा से तुह तक पहुँचाई देन समय 2:22 कार्यक्रम चोइया न ता जल्दी जल्दी समय मत बर्बाद करा क्योंकि समय जड़ा से कुसी वास्ते जड़ा से नहीं रुकता है तो तुह वास्ते भी नहीं रुकना मेरे वास्ते भी नहीं रुकना तो समय के अनुसार तुह इस कार्यक्रम के सफर च जुड़ा कन्या भी तुह जो ले करी चलते न अगली फरमाइश की ओर। अगर अहाँ मोबाइल फोन की ओर नज़र दौड़ाते न तो हाँ सारे जो ही पता है कि यह कार्यक्रम फरमाइशी कार्यक्रम है कने अहाँ तक व्हाट्सएप के माध्यम ने या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम ने जिहड़ा फरमाइशा न से जरूर पहुँच दियाँ न कने एक जिहड़ा श्रोता न से अहाँ कने जुड़ चुके न कर दिन तिना कने गल बात। हेलो हेलो हेलो हेलो शुद्ध कॉल जड़े से जरूर डिसकनेक्टेड हो हाँ अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते ने कने हाँ भी जरूर इंतजार करा देने कने तो हाँ भी इंतजार करा देने कि कालू दिया तो हाँ इस कार्यक्रम दे सफर च जुड़ते न जुड़ने वास्ते जिहड़ा नंबर है से तुहां तक पहुँचाना है क्योंकि नंबर तुहां तक पहुँचाऊंगा ताई तो तुहां इस नंबर पर जिहड़ा मैसेज है या कॉल है या अपनी जिहड़ा फरमाइश है से जरूर भेजी सकते तो नंबर है 701
आठ एक एक सात जीरो नौ एक नंबर तुह तक पहुँचाई तय कने गीत मैं जरा गल करा दी थी से फरमाइश अह तक पहुँची होवे वट्सएप के माध्यम ने तिना का नाव है पवना जी कने से रहने वाले न कांगड़े ते तो जरूर तुहजो लेख रिजल्द न कांगड़े की ओर कने सुन दे न इसा प्यारी दिया फरमाइशा जो तुह सारे भी इंजॉय करा।

हाँ बोला दी न रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कने इसी कने हाँ फिर ते कार्यक्रम च वापिस आइयो न तो हाँ तक जेड़े से पहुंचियो न गलबात करना फिर ते तो हाँ सारे दाई इस कार्यक्रम च स्वागत है। इसी स्वागत कने तो हाँ सारे भी कार्यक्रम का जेड़ा सफर है जरूर इंजॉय करा दे उन्हें इंजॉय भी करा कने अपने जेड़ा काम मन सभी करा। वैसे तो आजकना जेड़ा मौसम है सियाह जो ये बोला था कि थोड़ी देर रेस्ट करी लिया क्योंकि बरखा का मौसम जेड़ा से कुछ ना कुछ अहां दे जेड़ा काम मन तिना जो रोकींदा है। पर कई बार होंदा ना कि अहां खेतीबाड़ी दे काम करदे न तां मौसम दी ओर नज़र जेड़े से बिल्कुल नहीं दौड़ाते न हाँ सोचते न कि मौसम जेड़े से इन्ने ही है बदल जेड़ा न से इन्ने ही छाए न कने बदल तो है नहीं अपने जेड़ा काम मन तिना जो भी करी लेंदे न। पर कई बार मौसम ही अहां जो अपने जेड़ा जाल च

रहिंदा है क्योंकि बारिश जिहड़ा है से शुरू हो जांदी है कने कुथी ना कुथी अहां इस बारिश च भीगी जांदे न कने फिर ही बीमार हो जांदे न। तो कोई भी ये नहीं सोचता है कि अहां बीमार होन, क्योंकि बीमार हो जांदे न तो फिर ही जिहड़ा सर्दी जुकाम है या बुखार है से लगभग 3 या 4 दिन जिहड़ा है से लेकर ही जांदा है, इससे ज़्यादा भी लेकर ही जांदा है। तो इससे अच्छा मौसम की ओर अगर अहां नज़र दौड़ाते हैं, मौसम की ओर नज़र दौड़ाई करी चलते हैं तो ज़रूर अहां अपना जिहड़ा ख्याल है से रखी पाते हैं। तो अपना जिहड़ा ख्याल अहां अगर मौसम की ओर नज़र दौड़ाई करी चलते हैं तो ताई जिहड़ा है से रखी पाते हैं, कने अपने जिहड़ा बच्चे न तिनां दा भी ख्याल जिहड़ा है से रखी पाते हैं। तो इसी कन्नै तुसां सारे भी कार्यक्रम दे सफर च अहां कन्नै जुड़ी सकदे, कन्नै अहां कन्नै गल्लबात जिहड़ा है से जरूर करी सकदे। तां मौसम दी ओर अगर अहां नज़र दौड़ाइए तो मौसम जिहड़ा है से अहां जो ये बोला दा है कि 21 डिग्री जिहड़ा सेल्सियस जिहड़ा तापमान है से है, कन्नै इसी कन्नै बरखा भी जिहड़ा है से लगी हुई है, कन्नै तुसां बरखा का भी आनंद लैदे होने न, कने अपने जिहड़ा काम तो रुकी होना पर जिहड़ा घरे दे काम मन तिना जो भी जरूर करा दे होने न। कने अहां भी एक काम करना है कि अगली जिहड़ा फरमाइश है से तुसां तक पहुँचानी है तो जरूर इस प्यारी दी फरमाइश जो इंजॉय करा, कने नहीं सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो शो तो गलबात हाँ करा देन बच्चों जो रिश्तिया की जड़ा अहमियत है से किस प्रकार हाँ सिखाई सकते या दसी सकते परिवार च समय बिताना कितना ज़्यादा जरूरी है। उदाहरण के तौर पर गल करिए परिवार कन्ने समय बिताना भी जरूरी है। पुराने समय दियां यादा अगर हाँ ताज़ा कर देन तो कुत्थी ना कुत्थी जेड़ा उस समय का जेड़ा दौर था ज़्यादातर हाँ अपना जेड़ा समय है से फैमिली कन्ने बितांदे थे कन्ने कुछ गल्लां जेड़ा न तिना जो सीखते भी थे। बच्चे जेड़ा न अपने माता पिता ते सीखते थे दादा दादी ते भी ज़रूर सीखते थे इसी कन्ने जेड़ा नाना नानी हैं तिना ते भी जरूर कोई ना कोई सीख जेड़ा है सियाहां जो जरूर मिलती थी। बिना स्क्रीन जेड़ा है सियाहां जो समय जेड़ा है से अपनी फैमिली जो देना है पर इस थोड़ा दिया जेड़ा बड़े न तिना जो भी मोबाइल फोन ते दूरी बढ़ाना पौनी क्योंकि जलू माता पिता अगर बच्चे हमने मोबाइल फोन चला देन तो कुत्थी ना कुत्थी बच्चा भी सही चीज़ जड़ा से सीखता है। तो थोड़ा दिया तो हाँ भी मोबाइल फोन जो रेस्ट दिया कने अपनी फैमिली जो जड़ा समय है से जरूर दिया। दिन च जड़े से अह जो अगर अह खाना खा देन तभी अह साथ जड़े से मिली जुली करी जड़े से खाना खाई सकते कने जड़ा मोबाइल फोन है या टीवी है उस जो रेस्ट जड़ा है से जरूर दे सकते। बच्चों जो अगर कोई चीज़ समझ नहीं होती है या कोई भी जिंदगी दे प्रति कोई भी सवाल है से अपने माता पिता ते या अपने पेरेंट्स ते जरूर शेयर जड़ा है से करी सकते कने तिना कने गलबात जड़ा है से जरूर करी सकते। अगले जेड़ा श्रोता न सियाहां कन्ने जुड़ चुके न कर दें तिना कन्ने गल बात। हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी। नमस्ते जी
0: जी स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न
1: जी तुहां सुना जी ठीक
0: जी। अहाँ भी ठीक ठाक हैं जी। तो हम कुछ ते बोला दे कने तो हम दा ना क्या है जी।
1: मेरा ना पूनम देवी कने सबके बागे ते बोला दी जी।
0: जी कुछ ते बोला दे
1: सबके बागे ते जी।
0: जी अच्छा सबके बागे ते बोला दे।
1: हाँ जी
0: जी क्या हाल चाल हैं जी सबके बागे आ रहे हैं दे।
1: ठीक है जी उन बरखा थोड़ी हो गई ना फसल का काम चल पिया जी।
0: जी अच्छा फसल का काम जेड़ा है से तो हम दा चली पिया।
1: हाँ जी
0: जी ता उस साइड बरखा हुई कि नहीं हुई।
1: हुई है बरखा बीच बीच चार पांच दिन हुई है उन काटी ना बरखा।
0: जी ता आज कना जेड़ा मौसम है से कदे है जी।
1: आजकल तो बड़ी गर्मी है पूछा मत बता हुई है।
0: जी ते तू तो बरखा लगी हुई थी।
1: हाँ जी अजीब तो नहीं लगी है मौसम तो बना था पर हुई नहीं बरखा तो पाई है।
0: अच्छा बरखा जेड़ा ऐसे नहीं हुई।
1: हाँ जी
0: जी ता आज हाँ जेड़ा गल बात करा देन सभी तो हाँ सुना दे कि नहीं सुना दे।
1: सुना दे जी करना करे ना काम करा दे कहना सुना दे जी। हाँ रेडियो लगाया
0: जी। अच्छा रेडियो जेड़ा से लगाया कने अपने काम भी करा दे।
1: हाँ जी
0: जी ता तो हाँ क्या विचार अपने रखते हैं कि बच्चों जो रिश्तियां दी जेड़ा अहमियत है या महत्व है से हाँ किस प्रकार दसी सकते।
1: हाँ जी दीदी वो क्या चलाते बोला रहे थे कि 1500 रुपया आना।
0: हेलो
1: पाना बहुत तो ले ले
0: जी। तो हमारी आवाज़ क्लियर नहीं होती बिल्कुल भी नहीं।
1: हाँ जी कौन दिखा सुना होगा जी आवाज
0: शतों कोल जड़े से जरूर डिसकनेक्टेड हुई हो क्योंकि जिड़ा नेटवर्क इशू है से जरूर चले है थोड़ा दिया था। हम भी अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न कने तो जो अगली फरमाइश की ओर लेकर चलते न ये फरमाइश इंदू जी तक कहाँ पहुँचा देन कने तो हाँ सारे भी इस प्यारी दिया फरमाइश जो इंजॉय करा।

कानवी दशमलव दो मेगा हर्ट्ज पर ए है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे ही सुनिया ये गीत फिर ते हाँ वापिस अपनी गलबात ऊपर पुजी और कने तो हाँ सारे जो पता है कि इस कार्यक्रम का जेड़ा समय तो हाँ तक रहा है दो ते तीन बजे तक तो जरूर हाँ समय के अनुसार फिर ते अगे बढ़ते न कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तो हाँ तक पहुँचाते न तो हाँ सारे भी इंजॉय करा।

तो तुम सारे इस भजन जो जरूर इंजॉय करा देन। खानियां बंदिया दो रोटियां तो जरूर खानियां तो दो ही रोटियां ने कने हर दिन मेहनत करा देन। मेहनत करी करी जड़े से अपने सपनिया जो भी साकार करा देन। अपना जेड़ा समय ऐसे जरूर दे देन पर कुथी ना कुथी हाँ अपनी जिंदगी का जड़ा सफर है उस जो नज़रअंदाज करना जड़े से शुरू करी देन। कई बार हाँ ये सोचते हैं कि पैसा ही यहाँ वास्ते सब कुछ है पर श्रोताओं थोड़ा दिया सोच विचार करी करी दिखा कि पैसा जड़ा से ठीक है पैसा भी ज़रूरी है पर जड़ा रिश्ते न रिश्तियाँ की जड़ा अहमियत है। मैं गलबात की है कि बच्चों जो हाँ किस प्रकार सिखाई सकते कि रिश्तियाँ की जड़ा अहमियत है सियाहां जीवन च कितनी ज़्यादा है चाहे से माता पिता का बच्चे कन्ने रिश्ता है या चाहे भाई बहन का रिश्ता है चाहे कोई भी है हर रिश्ते की अपनी अपनी अहमियत है तो उस चीज़ जो समझना जरूरी है। यहाँ अपने जड़ा रिश्ते न तिना जो मोबाइल फोन तक सीमित रखा दे यहाँ ज़्यादातर अपना जड़ा मोबाइल फोन यूज़ करा दे कने कुथी ना कुथी यहाँ खुद जो भी मोबाइल फोन तक ही सीमित रखा दे। तो इसी कन्ने तो हाँ सारे जो पता है कि इस कार्यक्रम का जिहड़ा सफर है से तुह तक रहा है 2 से 3 बजे तक तो हमने सफर हाँ जो बोला था कि हूँ तुह इस कार्यक्रम से जिहड़ा अनुमति है से जरूर ले लिया तो जरूर हाँ इस कार्यक्रम से अनुमति भी लेनी है कने तुह सारे इन्हें सुनना है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने अपनी रेडियो 2 शशि जुदिया अनुमति कने हमेशा खुश रहा कने अपना जेड़ा ख्याल है से जरूर रखा। इसी कने ख्याल भी रखना है कने रेडियो गुंजन धर्मशाला जेड़े से कुथी न कुथी गुनगुनाते रहना है क्योंकि जलू अहां गीत संगीत कने जुड़ी आते न तो अहां दा जेड़ा जिंदगी दा सफर है से और भी क्या लगता है प्यारा लगता है। तो इसी सफर जो इन्ना ही प्यारा बनाई करी रखा कने अपने दा जेड़ा प्यार है उस जो भी हमेशा कायम रखा कने अपनी रेडियो 2 शशि जुदिया अनुमति।

0: अभी क्या है? क्या है ये?
1: आपने तो कहा था जब तक डस्टबिन ना मिले कचरा अपने पॉकेट में रखना, पॉकेट फुल हो गए। छोटी आदतों से ही होता है बड़ा बदलाव।
2: एक नई आदत अपनाते हैं, जब तक डस्टबिन ना मिले
1: इंडिया के हर पॉकेट को ही डस्टबिन बनाते हैं।

0: रवि जी, मैं से तो सुभाष चटनिस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यहीं हॉस्टल में पढ़ता है?
1: जी सर।
0: वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है।
2: ड्रग्स?
1: अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात कराइए प्लीज।
0: अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा।
1: अरे नहीं सर, कोई तो उपाय होगा।
0: जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर अंकल तो स्मार्ट निकले।
3: अबे चल आजा।
4: वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया। मेरा गेम ओवर।
3: चले, असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत करें।
5: रुको, सोचो और एक्शन लो।

के दूर। उसे ढोल नगाड़ों और भक्ति के जयकारों के साथ तैयार हो जाइए गणपति।

के प्रिय पुत्र रिद्धि सिद्धि के दाता विघ्नहर्ता गणपति बप्पा आ रहे हैं अपने भक्तों के द्वार आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने, हर विघ्न बाधा को दूर भगाने और आपकी हर मंगल कामना पूर्ण करने। तो आप सभी को आ रहे इस साल के गणेश चतुर्थी के इस पावन त्योहार की ढेर

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: सुनो, क्या मैं बदतमीज हूँ?
3: Oh, no.
4: नहीं।
2: क्या मैं बहुत बड़बड़ करता हूँ?
4: नहीं।
2: क्या मुझे बोलने की अक्ल नहीं है?
4: नहीं।
2: क्या मुझ में दिमाग की कमी है?
4: नहीं। तो
2: क्या मैं अगली दिखता हूँ?
4: अरे नहीं बाबा।
2: तो फिर मम्मी ऐसे क्यों बोल रही है कि तू अपनी बीबी जैसा बनता जा रहा है?

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

0: आए।
1: गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओ, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

0: अभी क्या है?
1: क्या है ये?
2: आपने तो कहा था जब तक डस्टबिन ना मिले कचरा अपने पॉकेट में रखना, पॉकेट फुल हो गए। छोटी आदतों से ही होता है बड़ा बदलाव।
3: एक नई आदत अपनाते, जब तक डस्टबिन ना मिले
2: इंडिया के हर पॉकेट को ही डस्टबिन बनाते।

0: रवि जी, मैं से तो सुभाष चटनीस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यहीं हॉस्टल में पढ़ता है?
1: जी सर।
0: वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है।
2: ड्रग्स?
1: अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात कराइए प्लीज।
0: अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा।
1: अरे नहीं सर, कोई तो उपाय होगा।
0: जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर अंकल तो स्मार्ट निकले।
3: अबे चल आ जा।
4: वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया। मेरा गेम ओवर।
3: चले, असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत करें।
5: रुको, सोचो और एक्शन लो।

पार्वती के प्रिय पुत्र रिद्धि सिद्धि के दाता विघ्नहर्ता गणपति बप्पा आ रहे हैं अपने भक्तों के द्वार आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने, हर विघ्न बाधा को दूर भगाने और आपकी हर मंगल कामना पूर्ण करने। तो आप सभी को आ रहे इस साल के गणेश चतुर्थी के इस पावन त्योहार की

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: सुनो, क्या मैं बदतमीज हूँ?
3: Oh, no.
4: नहीं।
2: क्या मैं बहुत बड़बड़ करता हूँ?
4: नहीं।
2: क्या मुझे बोलने की अक्ल नहीं है?
4: नहीं।
2: क्या मुझ में दिमाग की कमी है?
4: नहीं। तो
2: क्या मैं अगली दिखता हूँ?
4: अरे नहीं बाबा।
2: तो फिर मम्मी ऐसे क्यों बोल रही है कि तू अपनी बीवी जैसा बनता जा रहा है?

0: नमस्कार छोटो एफएम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून गुर्रा चूर बजगन इंतजार खत्म हुआ बुना बहुत सारे इंदे श्रोतागण रा बहुत सारे श्रोतागण सो इंतजार करते हैं श्रोताओं और बखूबी करते हैं इनके कहने चूर बजन और कहने किया सो एक कार्यक्रम किया सो ब्रॉडकास्ट हुआ इंदा कार्यक्रम किया सो चला है ना तो बहुत बहुत सभी श्रोता रहा हूँ सचिन कपूर तहे दिल था हूँ स्वागत करनू हार्दिक अभिनंदन करनू हाँ श्रोता हूँ सभी होने वाले रहा सभी श्रोता गण रहा तो श्रोता हूँ सभी पहले तो तू पता है धर्मशाला रहा मौसम किया सो जाने लेंदे लेकिन आज तो ठीक ठाक है बरखा किया गंदे गंदे किया सो अंबर लगो दसना कि भाई साहब बरसाला लिया है ना दो त्राई धूप आ गई थी दो त्राई दिन मौसम के सो पीछे साफ रे तो है सो चुंदे थे कि अभी मौके को बरसाला बर होनी है ना लेकिन हज नज़ारे के ना सो दसी थे कि काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार बरखा किया सो धर्मशाला में भोई हाश होता हूँ और इस समय रे गल करूँ तो 19 डिग्री सेल्सियस रे आसपास के सो मौसम दसू कर दें नमी विस्तार किया सो 85% रे आसपास किया सो दसू कर दें इन श्रोताओं और मतलब काफ़ी आनंद भरी बरखा किया सो आज बल्ले सकता है कि धर्मशाला महसूस जो किया सो हिरने जो मोड़े हा है ना तो तुम सब श्रोता जी कॉल कर सकते हैं अपना पसंदीदा गीत होने वास्ते इन्हें बहुत सारे श्रोतक सो कनेक्ट हुए थे और बहुत सारे श्रोता रह गया सो कहानी रे भी गई थी श्रोताओं यानी कि 8 मिस कॉल आता थी बावजूद भी थी ऐसी तो ज़रूर है गल के श्रोताओं गले आ कि पहले आगाज किए सो कर लेंदे हिन और आगाज तो बाद फिर अन्य जानकारी के अनुसार तो सो गया है ज़रूर शेयर कर ले साझा कर ले बहरहाल कार्यक्रम मन चल दिन हगूँ और आगाज कर लेंदे हैं श्रोताओं कार्यक्रम रहे इस गीत सो गया और आगाज तो बाद गया सो फिर अन्य जानकारी तो हो गया है शेयर कर ले इन बहुत इंदे श्रोतागण के अनुसार हो गई कनेक्ट बुझ गया हिन उस दिन कौन बोलूँ देन और कड़ी थो बोलू कर देन नमस्ते जी
1: हाँ जी सतुल जी ठीक ठाक है ना
0: हाँ जी नमस्ते जी नमस्ते ठीक ठाक जी
1: नमस्ते हाँ जी अभी लगे दोपहर बार खाबी दोपहर भी नाग छतरी दया हुआ
0: बिल्कुल बिल्कुल जी कौन बोलूँ देन और कड़ी थो बोलूँ देन
1: आराम तीनों बोलूँ दस सरकार
0: अच्छा अच्छा जी बिल्कुल धूप भी आ छांव भी आ
1: ये तो भगवान की कृपा सर
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: हां जी हां जी
0: और तो इधर सकरे लगुरिन
1: बाद या ऊपर बंगा थाली रीडी पुती ना कदे नड़ गया जला
0: हां जी हां जी
1: अल्लाह का नहीं ना रीडी पर रखना बढ़िया हवा हम दिया पंख है जरूरत ना मुंदे
0: अच्छा क्या बात है
1: ओए मत करना कोई कुछ ना
0: क्या बात है क्या बात है
1: ओदा टाइम गुजारना है 6-7 बजे करा है परिवार सब देख रहे हुंदा है
0: क्या बात है तो है खरे गरम के नसो कर रहे ना ना
1: हां जी हां जी आए सारे
0: क्योंकि रा स्वच्छ वातावरण अपनाना स्वच्छ वातावरण किया अति अंदर अगर तो है हाल लेओ कर देन तो ये वाकई में कि मतलब खरे गरम कर रहे ता है
1: जी जी थल्ले जाता है ना चल गए नहर चल गए थल थल कर गुंदे है बेचारे
0: बिल्कुल बिल्कुल जनाब कुन जी जनाब कुंदन गीत होना पसंद कर ले
1: नापता का बनू आजकल सो के नापते वाला गीत क्या
0: कुंदन जी
1: नापता नापता की क्या उनके नापते रा गीत सुन
0: अच्छा अच्छा नापते रा गीत होना दसो
1: नापते रा दूर खाना आजकल का गोबर कुआरे चल गया
0: नाता तो पुंदे तो है
1: ना ना मैं तो कमी है अपने बच्चे रे दा है आउट ऑफ फूफा होता है
0: अच्छा अच्छा कहने कर रहे बच्चे रे बे
1: नहीं सर मेरा पोत्र मुझे ना गू
0: अच्छा अच्छा
1: सेंट मैरी है पर मेरा पोत्र
0: क्या बात है क्या बात है सेंट मैरी है सेंट मैरी में किने पढ़ाई लिखाई किने सेंट मैरी में
1: बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त
0: जबरदस्त है
1: इंटेलिजेंट है मेरा पोत्र
0: अच्छा
1: करीब कदा दुनिया मैडम रे भी
0: अच्छा
1: बहुत जबरदस्त मिंजो दुनिया बात कर दा तो दिया में सोंदा मिंजो सुन जांदा मतलब आज कल
0: अच्छा क्या बात है
1: हां कैसे बोलना इंग्लिश में कैसे बोलना दादा ऐसे नहीं करना मेरी मैं तो बोलती है घर का काम खुद करो
0: अच्छा
1: इतना समझाना मिला बेटा, ठीक है यार, ठीक है, तू बहुत इंटेलिजेंट है।
0: तो घरे भी माँ बुढ़े भी पढ़ाते मुने ना?
1: मम्मी मम्मी तेरी पढ़ाती है, बिल्कुल
0: मम्मी पढ़ाते। हाँ अरे बच्चे बच्चा के सो स्कूल ले जो टीचर को जो कि टीचर भी सच्चे बंदे ना कि टीचर है भी 25-30-40 बच्चे के सो अक्सो के बंदे ने, लेकिन जो घरे गाइडलाइन बंदे ना सो बड़े ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बंदे है ना। या घरे पो या जिन्हें ले ट्यूट करू कर देन बच्चे, जिन्हें ले ट्यूशन पढ़ू कर देन बच्चे, त्यारा दायित्व बनता है। त्यारे सो की पेरेंटरा भी बहुत दायित्व बनता है कि सो रिविजन के सो आग मौके घरे जरूर करान।
1: बहुत ज्यादा सर है, मुझे लगता है कि मेरा बच्चा थोड़ा सा है पोतरू बहुत इंटेलिजेंट बन गुंदा पढ़ाई थो।
0: अच्छा
1: इंडिया जमाने कह दिए सर आया था फटन पेंट वाला की गंदी स्कूल आयो
0: जी,
1: बूट ना पाने कुछ ना पाने, असू जिया भी तिया भी
0: जी जी
1: झाड़ी दस मारी लेंदी मास्टर।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: अच्छा मैडम थी दाड़ी हूँ डिस्कशन लगा सर।
0: अच्छा।

0: अंग्रेजी लिख दे तो गांधी मतलब पंजा गति रे पंज डंडे बना मार दी सो पंजा गति रे पंज डंडे
1: पंजा गति रे पंज डंडे
0: पंज डंडे इंग्लिश में डिक्टेशन करांदे डिक्टेशन
1: हां हां डिक्टेशन लेकिन आजकल पंज डंडे मारना भी बच्चा है
0: आधा क्या मारने है तो यार ये ग्रोथ नहीं ये बच्चे रिता
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल ग्रोथ भी नहीं है क्षमता भी नहीं और पेरेंट ना स्टार्टिंग में बड़ा दस हिसाब रहा इन्वायरमेंट दे रख दें फिर बाद में सोच दें कि बच्चे के सो एकदम सुधरेगा अंत ते या हर किसी लेके सो टफ बुंदा ना हर किसी वे जीवन में के सो टफ बुंदा या तो बच्चे हो स्टार्टिंग था इन्वायरमेंट के सो दस हिसाब रहा रुक रो बो दस हिसाब रहा बोआ ता बच्चे के या सो ढलेगन दस हिसाब हो गया अगर स्टार्टिंग हो बच्चे थोड़ा करे प्यार थोड़ा करे डर थोड़ा करे मार ये सब चीज़ें के सो बैलेंस करी करी चलना पैंती ना
0: हाँ जी हाँ जी सारे पहले तो हमने माँ दिन दिए चले वो फोन ना
1: जी अच्छा माँ फोन दिन दी थी
0: आधा चढ़ाई चले बिल्कुल
1: क्या बात है बहुत अच्छा है क्योंकि फोन ना तो इसलिए तो है कि कितने केसेस के ने सो इंदे ही अपने ही धर्मशाला में जाना कितने केसेस अबे सो 14 साल रहा 13 साल रहा बच्चा सो आज दिन तक ना बोलो करता
0: मेरे जरा मेरे इतना सुंदर बच्चों घर के पूछा हुआ तो है
1: हाँ सोचा तिन्या माँ बुढ़े बेचारे 13-14 साल के बच्चा पाली करे क्या खट्टू है ना
0: जी जी जी जी
1: कुछ बंदे ने लेख लिख रहे लेख भी बंदे बुने समझोग भी बंदे बुने ने लेकिन ये फोन और आऊँ ये बड़ी क्लियरली बोलना चाहनू बड़ा स्ट्रिक्टली बोलना चाहनू कि बच्चा की ऐसो मोर है हाथ बुंदा है ना फादर साहब के अनसो तो चलो कमाण गन दी कई मोह भी वर्किंग बुंदी ने ऐसे नहीं कई मोह भी क्या ने सो बगैर फादर है भी बच्चे जो के ऐसो पाल दिन और तिन्या जो तस लाइन में पन दिन सो गाइडलाइन दिन दिन है ना सो इन्वायरमेंट दिन दिन लेकिन बच्चा की ऐसो मोह है हथ मतलब तो सोचा कि अजकनी डेट में भी अगर फादर बड़ा केयरिंग है तो भी मतलब 80% गया सो बच्चा मोह है हथ बुंदा माँ क्या करे नजर रखा क्या करे माँ पढ़ा क्या करे लिखा
0: बिल्कुल
1: ये बहुत इम्पोर्टेंट बंदा है
0: अबे आओ तो सिक्के वाली के करना तो कार्टून है ना सारे का टीवी लाइन का ना टीवी मुझे लोग बड़ा पुराना
1: हाँ बिल्कुल टीवी तो लाई सकते टीवी रखो ये ऐसा होने
0: ना बुंदर जता नहीं है ना क्या जता नहीं कुछ भी होने निकाल से ने ना आ जाए
1: नीन नीन हाँ
0: वो कार्टून ही है ना जैसे
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल और कार्टून तो है आधा एक घंटा बच्चे को दस भी दिल लेते सेरा भी माइंड फ्रेश हो जाएगा
0: बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल
1: अब ये नहीं है ना कि 24 घंटे सो स्कूलों आता तो सी ट्यूशन पे जीता ट्यूशनों आता घर पढ़ाना बखाली था खिलाओ फिर पे जीता ते भी ना ते भी बच्चा की सो फ्रस्ट्रेट हो
0: चुका ना कुछ ना बोलना
1: जी बिल्कुल और इतनी देर गल करिए बच्चे पर तो आज ऐसा हुए गल ए टॉपिक भी इन दाई है कि बच्चे में एंजाइटी जो नज़रअंदाज के सो ना करना यानी कि बच्चे भी जो एंजाइटी बुंदे है बच्चा की ऐसा चिंता करना भी लगे पैंता जनाब है ना जरूरी नहीं कि मोटे हो चिंता बोआ या बड्डे हो चिंता बोआ बच्चे भी की ऐसा चिंता बुना लगे पैंते हैं तो इस थेरे बारे में
0: इंदा भी फर्क बनता ना कुछ ना कुछ समझाना इंदा फर्क है ना बच्चे आज हम गाइड करने का दुख रहता थे वो भूना आए मैडम बंद तो नहीं तेरी कि नीजो वाला दादा मेरे को मैडम बोलना अपने काम खुद करो
1: हाँ अपना काम खुद करो
0: खुद करो अपनी थाली उठाओ अपना गिलास उठाओ अपने कपड़े खुद खोलो मैंने बच्चा वेरी गुड आपने बहुत सीखा मैंने बोला
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: इतना बच्चा मुझे दस ज्यादा ठीक है सर ये चलो दादा अब हिंदी कोशिश साथ दादी दादी जी
1: बिल्कुल
0: यार दादू दादी जी कोशिश है ना
1: बड़ा बड़ा जरूरी है जी बच्चे जो करना मोटिवेट करना है ना जी चलिए जी तो है दसी ता नोआ ए गीतरे बोलने सजना हो मुँह तेरे ताए सजना हो नोआ मुड़ो नोआ नाता जो तो है दस सुनने की तू सो जरूर ढूंढ ले
0: नोआ नाता जोड़ना पाने सारा बे बड़ा लोग का जोड़ना पाने नहीं नहीं तो जोड़ी ली हुए ना
1: हाँ जी हाँ जी क्या बात है
0: नमस्कार सर
1: ठीक है जनाब जी नमस्ते धन्यवाद
0: ओके धन्यवाद सर
1: जी श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। और आइए जनाब आगाज कर लेंदे ना पहले कार्यक्रम रहा, फिर आगाज तो बात किया सो जरूर यारी फरमाइश सब मेरी फरमाइश है सो है जरूर पूरी कर ले। पहले आगाज कर लेंदे हिन कार्यक्रम रे शो तो इस गीता सो की तो सब श्रोता जरूर बनी सकते हैं सो की 7 0 8 8 8 7 0 9 8 पर नंबर एक मौके फिर 7 0 8 8 8 7 0 9 8 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत किया सो होने सकते हैं अपने क्षेत्र की जानकारी अब वो की साझा कर सकते हैं। बहरहाल लेख रही चलते तो सभी जो आगाज कर दिन कार्यक्रम रहा इस गीत सो की

0: শুধু এফএম ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্টজ পর রেডিও গুঞ্জন ধর্মশালা তো হ্যাঁ সবই টিউন করো আর কার্যক্রম ইস ওয়াক্ত ইন দি আপনি গপ্প গানে সো চল রহিন তেন্দা গলে শ্রোতা সোগি কানেক্টেড হিন পুজ দেন কোন বলুন দেন আর কারি থম বলুন দেন নমস্তে জি
1: নমস্তে জি
0: হ্যাঁ জি নমস্কার জি নমস্কার
1: নমস্কার
0: জি কোন বলুন দেন আর কারি থম বলুন দেন
1: মা দীক্ষা বলল দি
0: अच्छा दीक्षा जी करियों बल्लुंदेन
1: पालमपुर थे
0: क्या बात है क्या बात है पालमपुर एग्जैक्टली करियों दीक्षा जी
1: मेन पालमपुर थे
0: अच्छा मेन पालमपुर थो
1: हाँ जी
0: चलिए ठीक है जी दीक्षा जी कुन दिन गीत थोड़ना पसंद कर लिया और ये दस की तू सु गदियाली भाषा की करी छुगर दे समझ
1: मुझे गदियाली भाषा नहीं मुझे तो सिर्फ पाड़ी होंगी यानी
0: समझ ही छुगर दे ना लेकिन ताई तो है रिप्लाई करो कर दिन मेरी गल रे अच्छा ता कौन दिन गीत होना पसंद कर ले पहले ता ये दस दिया
1: अड़िया टू
0: अड़िया टू अच्छा ता कड़ियों तुम दे आस पड़ोस
1: सुजाता भारद्वाज
0: ना ना ये तो बिल्कुल पता मुझे सुजाता रहा गीत है लेकिन तुम दे आस पास आस पड़ोस में के ना सो बिल्कुल गद्दी कम्युनिटी रे मनु के सुरन दे बुने है ना
1: नहीं काम नहीं है नहीं मतलब
0: अच्छा तब फिर ही कड़ियों सीखी तो है गद्दी इतनी बड़ी है तो मतलब
1: कॉलेज
0: अच्छा कॉलेज तो क्या बात है चलिए और पालमपुर का मौसम कदे है इस वक्त ये दसा
1: अच्छा है धूप लग रही
0: अच्छा धूप लग रही अच्छा तुम तो कॉलेज कंप्लीट हो चुरा
1: हाँ जी हाँ जी
0: क्या बात है चलिए ठीक है जी जरूर तुम दी पसंद माड़िया टू है उन्हें ले दूसू है ना जी
1: हाँ जी ठीक है थैंक यू
0: ठीक है जी धन्यवाद रेडियो गुंजन सो के जुड़ने वास्ते
1: हाँ जी हाँ जी ठीक है
0: जी श्रोतों एफ एम बैंड क्या श्रोतों एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सब ये ट्यून कर रहा है कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा के न सो तो सब हुनु कर देना आर जे सचिन कपूर सोगे रेडियो सेट में रेडियो गुंजन धर्मशाला मन श्रोतों बल देना तस शख्स जो कोई लुढ़ाई न सकता तस शख्स जो कोई गिराई न सकता जिन्हें चलना ही किया सो ठोकरा थू सिखरा बुआ अमूमन जिंदगी में श्रोताओं क्या बनता कि उतार चढ़ाव जरूर इन दिन श्रोतों है ना और इन उतार चढ़ाव में किया सो अपने रा पता लगता श्रोताओं कि अपना कौन और बगाना कौन समय रे अक गल बड़ी खास बुंदे है श्रोताओं कि समय रे अक गल किया सो बड़ी खास बुंदे है श्रोताओं कि समय किया सो नित्य ना रहा नित्य दया ना रहा हा बदलिंदा जरूर हा ये गल बड़ी खास है समय रे कि अज तुस हो गए अगर बुरा समय चल रहा और तुंदा बुरा समय है श्रोता हूँ तो इस नित्य ने न रहना इस बदलना जरूर हा ता अपने आप जो डाउन ना फील कराना कजो कि समय किया सो बदलिंदा जरूर हा और अगर खरा समय है श्रोता हूँ तो खरे समय रे भी खरी गल रखा तो है या बुरी गल रखा कि सो समय भी बदलना जरूर हा समय बुराई ना भी जरूरी बुंदा हा श्रोताओं का जो कि जहने बुरा समय बुंदा तां पता लगता कि अपना कौन और बेगाना कौन हा सो समय रे गल बड़े खास हा श्रोताओं बहरहाल कार्यक्रम जो हगो बढ़ंदे हिन और अब लेकर चलते दूसू होता हा वादी री किनारी जहा वादियों थो सो कॉल आए थे जियारी कॉल आए थे लेकर चलते श्रोताओं तुस सब भी जो इस गीत तारी के नारी

0: श्रोतो ये वेड़ी गुंजन धर्मशाला और आऊँ आरजे सचिन कपूरा तुझ सोगे बिल्कुल लाइव इस समय जुड़ी चुक रहा 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम जो आगू बढ़ दें श्रोतो इंदी अपनी गप्पा तो हूँ कर दें कार्यक्रम जो आगू बढ़ दें और इन दगले श्रोता सोगे कनेक्टेड हैं पुछ दें कौन बलून दें और कड़ी थो बलून दें नमस्ते जी।
1: नमस्ते सचिन जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते। कौन बलून दें और कड़ी थो बलून दें जी।
1: जूड़ी बलून दें सीमा।
0: जूड़ी थो सीमा जी बलून दें
1: जी।
0: सीमा जी ठीक ठाक ने राजीव बाजी
1: बढ़िया भैया तो बोला
0: बढ़िया जी तुंदा सभी रा प्यार हा आशीर्वाद आऊं भी ठीक हा स्वस्थ हा खुश हा तंदुरुस्त हा। सीमा जी कदे को आज कना दिन तुंदा
1: बढ़िया बढ़िया।
0: अच्छा का है कुछ नुआ भुआ आज कने दिन में की सोई रूटीन थी अमूमन जो जिंदगी सोई गुजर दे। सीमा जी क्या फरमाइश गुंदने गीत हुना पसंद कर ले लेकिन।

0: सीमा जी, कदी कदी बंदा की जिंदगी सोहनी तो जरूर है, लेकिन जिंदगी में कुछ उतार चढ़ाव के अनसोई ने चली देने के थोड़े करी जिंदगी कदी कदी कटपटे लगना लगते हैं।
1: बिल्कुल उतार चढ़ाव ये जिंदगी है ता हां जी
0: यही जीना पैनी है,
1: क्या करना, सुख दुख दोनों या कि दूगरे पहलू ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल कि दूगरे साथी ने और इंजे ही है सोगे सोगे पैरेलल ले चलना।
1: हां जी यही जिंदगी है ना पागल का
0: यही जिंदगी है वाकई में। चलिए सीमा जी कितने टाइम थो इस कार्यक्रम जो हुनु कर दें तो है
1: काफी टाइम हो चुका है, 4-5 साल बीत गए भैया सुनते हैं।
0: 4-5 साल बीत गए ना तो खरा लगदा खरा करदा
1: बहुत बढ़िया। तो बोलते हैं इंदी गद्दी कम्युनिटी सच्ची पहले है गद्दी सब ये सोचते ये कि हां ये गद्दी ने
0: जी जी
1: अब तो एक प्लेटफॉर्म अंदर गद्दी सब नहीं हूं हंग हुई ना
0: जी बिल्कुल
1: ते हिंदी भाषा जो मत मनो पसंद कर देन
0: बिल्कुल एग्जैक्टली सभी राय
1: हिंदी ऐसी भाषा क्या है सबनी भाषा बल्ले सकदे लेकिन हिंदी भाषा है कि मनो बल्ले न सकदे कोई किस करी सीख दे। हां जी
0: कोई किस के सीख दे एग्जैक्टली एग्जैक्टली ये बड़ा अच्छा प्लस पॉइंट तो है दोस्तों। हां
1: जी
0: ता कदे कार्यक्रम अच्छा लगदा बढ़िया लगदा दोस्तों जानकारी मिलदी अपनी कदे आली भाषा में सो गई लगदी
1: बिल्कुल। हां जी नो नो कड़ी कड़ी रंदे मनो तेरी हो इंदे श्रोता ने जेड़ा असि लगता है कोई श्रीनगर है पर ना कोई राजस्थान है कोई कड़ियर है
0: जी
1: ब्रह्मोरा है सब री सब कनेक्ट होंदे ता पता लगंदा कि हां इंदे श्रोता कड़ी कड़ी कितनी कितनी दूर तक रे हुंदे
0: ना ना
1: बड़ा अच्छा लगता है जी
0: जी। चलिए अगला सवाल फिर तुंदे फरमाइश सीमा जी पूरी करनी है, क्या है बड़ा खास लगता है इस कार्यक्रम में तुसु इंदी अपनी गप्पा मंच कुछ अच्छा चीज कुछ कुछ भी अच्छी लगती बुआ
1: ए कि पहले जी हां गद्दी जो मतलब बिल्कुल नहीं ये डिग्रेड कर दे ये मतलब गद्दी कम्युनिटी जो
0: जी
1: क्या आए गद्दी ते ने बड़ा बकरी चारने वाला
0: जी
1: तो आजकल इति अंदर गद्दी के इंदी पहचान इंदा पहनावा इंदा बोलचाल इंदा गाना कितना सुपर है बिचो दे बड़ा अच्छा लगता है हरेक इसी अंदर कदी भी ब्याह शादी कोई भी फंक्शन हो ता इंदे गाने जेड़ा मनु सब सब पसंद
0: कर देन एग्जैक्टली
1: हां जी
0: जी
1: तासी बड़ा गर्व महसूस हुंदा क्या है गद्दी
0: गद्दी
1: हां जी।
0: चलिए ठीक है सीमा जी तुसु दे बहुत सवाल जवाब करे हूं इजाजत चंद और तुंदी फरमाइश जरूर पूरी कर ला।
1: ठीक है ठीक है धन्यवाद।
0: ठीक है जी नमस्ते धन्यवाद। चलिए श्रोतों कार्यक्रम जो हगो पढ़ दें और कार्यक्रम से श्रोता री फरमाइश अगेन सो जरूर पूरी कर दें, लेकिन सीमा जी ये दसोगे किस प्रकार होगे कि सो इस कार्यक्रम री खास विशेषता ये रहेंदे कि कड़ी कड़ी थों के सो इस कार्यक्रम रे थ्रू असू पता लगता कि कड़ी कड़ी रेडियो जो होने गंदे राजस्थान पुछगो जम्मू कश्मीर पुछगो पालमपुर धर्मशाला भरमौर है ना तो ये सब तुम्हारा आशीर्वाद है श्रोतों। और कार्यक्रम में है कुछ कुछ क्लिप्स कैन सो है बिल्कुल इंस्टा और फेसबुक में भी पाना की सोसू शुरू करी इन्हीं ने तो बनी रहे तो सब इस नाची सोगी हारचे सचिन कपूर सोगी कार्यक्रम जो हगुन लेकर चलते हैं इंदे अगले श्रोता भी कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी। हेलो
2: हेलो
0: हाँ जी नमस्कार जी
2: नमस्ते
0: हां जी बढ़िया जी बढ़िया तो इधर से तो ठीक ठाक ना।
2: हां जी
0: अच्छी कौन बल्लून देन और कड़ी थों बल्लून देन
2: आउ दे पास दे
0: आउ स्टेडा थों बल्लू कर देन।
2: हां जी
0: कड़ी बल्लून देन सुधेड़ थों
2: सुधेड़ थों
0: क्या नाम दसो तो है अपना
2: मेरा नाम
0: सुधेड़ मां मुझे लगता है सिग्नल रे दिक्कत है छुगर दिया तुम देखे ना रहे ना सिग्नल रे दिक्कत है मुझे आवाज ना होने कर दे तुम दे सुधेड़ था तो है दसो तो है अपना ना के दसो सो ना होने कर दा
2: सुधेड़ था
0: चलिए क्या फरमाइश है तुम दीची
2: तासु देवी
0: फरमाइश की है तुम दे
2: हां
0: जी ए कौन दिन गीत थोड़ना तुसु
2: ਗੀਤਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਚੌਰ ਵਾਜਦੇ ਤਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਰੇੜੀਆ
0: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ
2: ਗੱਪਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ
0: ਹਾਂਜੀ
2: तो 2-3 साल किया गप्पा हो दे पर फोन ना कर देना हो।
0: अच्छा
2: गप्पा हो दे रहे गाने हो दे रहे।
0: अच्छा ता क्या खरा लगता कार्यक्रम मंच?
2: कार्यक्रम बढ़िया लग रहा था हमने।
0: अच्छा खरी लगती गप्पा?
2: हाँ जी
0: खरी लगती मेलो गप्पा।
2: गप्पा खर लगती ना मुझे ता हम दिवन दियो।
0: अच्छा चलिए ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद हा और सब कुशल मंगल है तुंदा।
2: वही ट्राई वगता करो मैं फोन।
0: हाँ जी
2: पहले करो आग वगता फिर यारे फिर करो कर दिवन। हेलो
0: हाँ जी
2: ठीक
0: ठीक है जी। तुंदे किनारी थोड़ी करी सिग्नल रही की सो दिक्कत ही चुगड़ दे ना।
2: मुझे ब्रह्माणी माता रा गाना सुना दी
0: है। ब्रह्माणी माता रा गीत तो सुहा है जरूर
2: हूँ। हाँ जी
0: ठीक है जी नमस्ते।
2: ठीक है बाय।
0: ठीक है जी चलिए शतु यारी फरमाइश भरमानी माता रा भजन होना तो ज़रूर होने ले। फिलहाल चल दिन और पालमपुर तो हम फरमाइश छोरे थे सुजाता वे इस गीतरी तो ज़रूर होने दिन तो सभी जो शतु।

0: श्रोताओं और भी कुछ एक खास जानकारी के अंसो तो सू हो गया सू बिल्कुल शेयर करनी ने साझा करनी ने फरमाइशरा दौर के सो भी बिल्कुल पूरा करना है। लेकिन इन जो श्रोता सू गे कनेक्ट होना चाहूँ दिन तीनों भी कनेक्ट के सो जरूर करना है ना। इन अगले श्रोता के अंसो असू गे बाखूबी कनेक्टेड हैं श्रोताओं। अग जानकारी और अक्सो हाँ बच्चे नशे में अगर डूब रहे हैं तो तिन्यों छुपाने भी या लुकाने की जरूरत नहीं है। फ़ोन चुकन और अक्सो बारह में मिलान ओवरडोज या अचानक तबीयत बिगड़ने पर इस नंबर के जरिए मंगी सकते हैं तो है श्रोतों तत्काल मदद। नशे के खिलाफ परिवार री भी के असो अहम भूमिका श्रोतों। नशे के खिलाफ लड़ाई में परिवार री भूमिका किया सो सब तो अहम है सब तो जरूरी है। किसी भी बच्चे की हालत नशे के कारण बिगड़ते हैं या आसपास नशीले पदार्थ री बिक्री री जानकारी मिलते हैं तो 112 रे माध्यम तो पुलिस तक सूचना पहुँचाए जरूर पहुँचान। समय पर मिली सूचना थों के आश्रतों सो पुलिस और अन्य आपदा सेवा जो कार्रवाई में मदद के सो उपलब्ध करवानी हा। अशोक तिवारी DGP हिमाचल प्रदेश ए आदेश के अनुसार जारी करें। बहरहाल इन अगले श्रोता सो की अगले श्रोता सो की कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते। ठीक ठाक ना? बढ़िया जी बढ़िया। आशीर्वाद है तुंदा कुन बलन दे ना और कर बिल्कुल बिल्कुल अच्छा आज ही कुन दिन गीत होना तो सु शिखरामा
1: पहाड़ी को जलाए
0: महादेवा ओ महादेवा। चलिए ठीक ठीक है जी जरूर इस गीता होने ले तो सो अच्छा जी अच्छा चलिए जी ऐसा बड़े सौभाग्यशाली पूरी कम्युनिटी री और थाऊ धन्यवाद करनो तुंदा जी इस बोली जो इतना प्यार देने वास्ते
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद जी।

0: बल्लूंदन और करी थम बल्लूंदन।
1: बगैर
0: हाँ जी, क्या नाम जी तुंदा? बगैड़े थो करण।
1: करण
0: हाँ जी करण जी, ठीक ठाक
1: जी ठीक
0: करण जी। कुंदन गीत होना पसंद कर ले? अच्छा
1: परंपरा ठीक
0: ठीक है जी, धन्यवाद।
1: है।
0: चलिए श्रोताओं, फिलहाल फरमाइश और दौर के सो पूरा करते हैं।

चलिए छो तो माँ भरमाणी चीरा भजन के सोए हूँ लेवा जो कि माँ भरमाणी री बजत हो हुई सभी दणे देवते री बजत हुई कि ऐशो तो हूँ सो इंदी जिंदगी सोनी है ना ताई तो फिर जिंदगी सोनी हुनने रा इस गीता हुनने रा ताई तो आनंद ही ना जहने है भगवान मंज समर्पित बोले और भगवान मंज आस्था की सो रख लै और भगवान री की सो पूजा पाठ पूजा अर्चना की ऐसो कर ले और कसी रा बुरा ना कर ले शतो अपने कर्मा जो खरा रख ले ताई सब कुछ ता ठीक चलना सुखदा चलना और सुखी चलना हाँ बल देने कि यार फलाने हुई करी को बुझ गो फलाने हुई करी को बुझ गो शोतो मैं शायद महसूस भी करो और ये थोड़ा करी तजुर्बा भी हा और सत्य गल भी हा शोतो कि ये सब करनी रे फल बुंदे न सब इंद अह कै बुराई करते हिन अह कै कसकी वे बारे बुरा भला बनते हिन कसकी उगाली मुआली फटकाली दिंदे हिन शतों सो मैं अक्सर दूसरों बंदा कि इंद ना कंधे मंज किया सो दोई बेकुरे न कबूतर सो लिखो कर देन इंदा चिट्ठा क्या है कड़ी कै गलत करू कर देन और कड़ी कै ठीक करू कर दे हिन सो आका का गल रहा हिसाब के सो रखो कर दें ताऊ ता हमेशा सभी वही बलना चाहता है शोतों आऊँ ये ना बलना कि बहुत बड़ा ज्ञानी है या बहुत बड़ा 30 मार्क खान है या बहुत इंटेलिजेंट आऊँ कुछ भी नहीं आऊँ नथिंग आऊँ आऊँ कुछ भी नहीं आऊँ कख भी ना आऊँ लख बराबर था हा भी ना सिर्फ दुई गल्ला हूँ हमेशा बलता कि माँ बाप री सेवा की सो जरूर करा शोतों और कसी रा बुरा की सो मत करा और अपने कर्मा जो किया सो खरा जरूर बना बहुत इंपॉर्टेंट न तुंदा करम खरे बुले शो तो हूँ तुंदे ये जिंदगी भी हसीन निकलने हाँ और इने वाला जन्म किया सो भी हसीन बुना हा शो तो फिलहाल जिंदगी सोनी ताई बली बनी सकती है और ताई है बली सकते हैं जहने करम इंदे सोने बुले करम खरे बुले।

श्रोतों कार्यक्रम में हिंदी अपनी गप्पा था हूँ सचिन कपूर अब ले लेनो इजाजत कजो के गंदे गंदे भोले ना अच्छी रहना के सो असू जरूर लेना हा संजय बेगा भी लंदे इन लेकिन अब जो भी है जरूर लेना हा और त्यारे आशीर्वाद थों कि असो सब कुछ सही भुआ सब भी खराब हुआ श्रोतों और सब अपनी जिंदगी में कहना सो खुश रहन तंदुरुस्त रहन बस इतनी करी आस्था लेकर ही यह कार्यक्रम मन जींद इन श्रोतों और फिर ही चली गिनते हिन फिलहाल गाने रहा वक्त था चली पिंदे हिन हंसते रहे मुस्कुरंदे रहे और रेडी गुंजन जो ये हुन दे रहा नमस्ते धर्मशाला।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन 91.2 FM। प्रस्तुत हैं आज के प्रमुख समाचार। सबसे पहले सुर्खियां। एयरलाइंस के सभी पायलटों के लिए अब ड्रग टेस्ट जरूरी, DGCA ने दिए सख्त निर्देश। बिजली कटने से पहले मोबाइल पर आएगा SMS, हिमाचल में नई व्यवस्था लागू। हिमाचल में अब ऑनलाइन भी बन सकेगी परिवार नकल, ई KYC जरूरी। भारत आएंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का ऐलान। वर्ष 2035 तक भारत का अपना स्पेस स्टेशन और 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अक्टूबर से दिसंबर के बीच 3 चक्रवातों का खतरा, भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी। नशे में डूबे बच्चे को छिपाए नहीं, 112 पर फोन करें, तत्काल मिलेगी मदद। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में बदलेगी वर्दी, छात्र हरी और शिक्षक अलग रंग की ड्रेस में नजर आएंगे। अब समाचार विस्तार से। गणेश उत्सव पर गणेश प्रतिमा विसर्जन 14 सितंबर को जिला कांगड़ा के विभिन्न स्थानों में किया जाएगा। इस मौके पर श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत जिला प्रशासन द्वारा सभी उपमंडलाधिकारियों और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अतिरिक्त उपायुक्त विनय कुमार ने सभी विसर्जन स्थलों पर सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की पर्याप्त व्यवस्था, यातायात का सुचारू संचालन बनाए रखने, विसर्जन स्थल की बैरिकेडिंग, आपातकालीन स्थिति से निपटने हेतु सुरक्षा बल, स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय तथा पर्यावरण व जल स्रोतों की स्वच्छता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मिनी सचिवालय शाहपुर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय NLU शिमला के मौजूदा बुनियादी ढांचे के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण में सहयोग करेगी। प्रदेश सरकार विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे को और सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा उन्होंने विश्वविद्यालय को अपने संसाधन स्वयं सृजित करने पर भी बल दिया। बागवानी विभाग द्वारा मधुमक्खी पालकों के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता शाहपुर के विधायक एवं उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने। शिविर में स्मॉल हाइव बीटल से मधुमक्खियों को होने वाले नुकसान और इसकी रोकथाम के उपायों की जानकारी दी गई। केवल सिंह पठानिया ने SDM शाहपुर को संबंधित पंचायतों के प्रभारियों के माध्यम से नुकसान का आकलन करवाकर जल्द विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि मामला मुख्यमंत्री एवं बागवानी मंत्री के समक्ष उठाकर प्रभावित मधुमक्खी पालकों को सहायता दिलाई जा सके। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने एयरलाइन कंपनियों को निर्देश दिया है कि सभी पायलटों का कम से कम साल में एक बार ड्रग टेस्ट कराया जाए। ये फैसला हाल ही में एयर इंडिया की एक एयरबस A320 से जुड़ी घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी चिंताओं के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार विमान के उड़ान के दौरान हाइड्रोलिक सिस्टम में अचानक खराबी आई, इसके बाद ऑटो पायलट अलग हुआ और विमान में कुछ समय के लिए तेज झटके महसूस हुए। DGCA ने इससे पहले भी भारतीय एयरलाइंस को पायलटों की ड्रग टेस्टिंग के निर्देश दिए थे। अब जुलाई 2027 तक सभी पायलटों का एक बार सैंपल कलेक्ट कर टेस्ट किया जाए। विद्युत बोर्ड ने यह नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत बिजली कटौती से जुड़ी जानकारी उपभोक्ताओं तक SMS के जरिए पहुंचाई जाएगी। नई व्यवस्था के अनुसार यदि किसी फीडर या विद्युत व्यवस्था में खराबी आती है तो संबंधित SDO और JE को तत्काल सूचना मिलेगी। इसके बाद खराबी की स्थिति में कुछ ही मिनटों के भीतर उपभोक्ताओं को भी जानकारी दी जाएगी। इससे लोगों को अचानक बिजली जाने की परेशानी के लिए पहले से तैयार रहने में मदद मिलेगी। विद्युत बोर्ड की ओर से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उपभोक्ताओं तक सही और समय पर सूचना पहुंचाई जाए। हिमाचल प्रदेश में नागरिकों के लिए एक और सुविधा शुरू की जा रही है। अब परिवार नकल प्राप्त करने के लिए पंचायत कार्यालय जाने के साथ साथ ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकेगा। पंचायती राज विभाग ने ई परिवार रजिस्टर पोर्टल पर नई सुविधाओं और प्रक्रिया को लेकर जिला पंचायत अधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों और ग्राम पंचायत सचिवों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। नागरिक ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव के पास आवेदन कर सकते हैं या ई डिस्ट्रिक्ट हिमसेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परिवार नकल लेने के लिए आवेदक को संबंधित ग्राम पंचायत में आवेदन करना होगा। इसके बाद पंचायत सचिव ई परिवार रजिस्टर पोर्टल पर लॉगिन करके संबंधित परिवार की परिवार ID के आधार पर नकल जारी करने की प्रक्रिया पूरी करे। इसके बाद ऑनलाइन भुगतान के लिए पेज खुलेगा। परिवार नकल के लिए 13.80 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। भुगतान UPI, QR स्कैन सहित अन्य ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकेगा। खास बात यह है कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवेदक का आधार आधारित eKYC किया जाएगा। यदि eKYC पूरी नहीं है तो पोर्टल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार पहले उसे पूरा करना होगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आने का ऐलान किया है। रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शामिल होंगे। ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ष 2020 में गलवान सीमा पर हुए तनाव के बाद ये चीन के राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा और 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय पहुंचेगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अंतरिक्ष कानून पर आधारित सुरक्षित और सतत अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक आंकड़ों का उपयोग मानवता के लिए साझा लक्ष्यों की पूर्ति में किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम केवल देश तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए उपयोगी है। प्रधानमंत्री के अनुसार भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और मौसम निगरानी प्रणालियों से मिले आंकड़ों के आधार पर देश के तटीय इलाकों में आने वाले 3 महीने संवेदनशील रहने की संभावना जताई गई है। अक्टूबर से दिसंबर के दौरान बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में 3 संभावित चक्रवाती गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से कुछ चक्रवात सामान्य से अधिक ताकतवर हो सकते हैं। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और समुद्र में ऊंची लहरों की स्थिति पैदा हो सकती है। आंकड़ों के अनुसार चक्रवातों की तीव्रता पिछले वर्षों की तुलना में अधिक हो सकती है। केंद्र सरकार ने भी इसरो की चेतावनी के बाद निगरानी शुरू कर दी है। मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग को स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। नशे के खिलाफ जागरूकता और आपातकालीन मदद को लेकर पुलिस ने महत्वपूर्ण संदेश दिया है। यदि कोई बच्चा नशे की चपेट में आ जाए या अचानक उसकी तबीयत गिर जाए तो परिवार को घटना छिपाने के बजाय तुरंत मदद लेनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में आपातकालीन सहायता के लिए 112 नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है। ओवरडोज या अचानक तबीयत बिगड़ने की स्थिति में 112 पर फोन कर तत्काल सहायता मांगी जा सकती है। पुलिस के अनुसार नशे के खिलाफ लड़ाई में परिवार की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। बच्चों के व्यवहार में अचानक बदलाव, नशे की सामग्री या गतिविधियों से जुड़े संकेत नजर आए तो परिवार को सतर्क होना चाहिए। नशे से जुड़ी किसी भी आपात स्थिति में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए समस्या को छिपाने के बजाय तुरंत चिकित्सा और पुलिस सहायता लेना जरूरी है। सरकार ने विद्यार्थियों के लिए नई वर्दी निर्धारित की है। नई व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों की वर्दी हरी रंग की थीम पर आधारित होगी। महिला शिक्षकों के लिए हल्के नीले रंग की साड़ी और पुरुष शिक्षकों के लिए ब्लू रंग की ड्रेस निर्धारित की गई। सरकार का उद्देश्य स्कूलों में एक समान पहचान और अनुशासन को बढ़ावा देना है। बताया गया है कि नई यूनिफॉर्म और रंग योजना केवल सौंदर्य से जुड़ी नहीं है बल्कि स्कूलों में एक अलग और मजबूत पहचान स्थापित करने की दिशा में भी कदम है। शिक्षा विभाग की बैठक में स्कूल भवनों की रंग योजना और स्कूलों की एक अलग पहचान स्थापित करने सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की गई। एक बार फिर मुख्य सुर्खियां। सभी एयरलाइंस के पायलटों के लिए ड्रग टेस्टिंग जरूरी होगी। हिमाचल में बिजली कटौती से पहले मोबाइल पर SMS की सुविधा मिलेगी। परिवार नकल के लिए अब ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने भारत आएंगे। 2035 तक भारत का अपना स्पेस स्टेशन और 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय पहुंचाने का लक्ष्य। अक्टूबर से दिसंबर के बीच चक्रवाती गतिविधियों की चेतावनी और नशे या ओवरडोज की आपात स्थिति में 112 पर मदद देने की अपील। इसी के साथ आज का समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है।
1: 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओ आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 MHz पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: जूही, क्या है? क्या है ये?
1: आपने तो कहा था जब तक डस्टबिन ना मिले कचरा अपने पॉकेट में रखना, पॉकेट फुल हो गए। छोटी आदतों से ही होता है बड़ा बदलाव।
2: एक नई आदत अपनाते, जब तक डस्टबिन ना मिले
1: इंडिया के हर पॉकेट को ही डस्टबिन बनाते।

0: रवि जी, मैं से जो सुभाष चटनीस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यहीं हॉस्टल में पढ़ता है?
1: जी सर।
0: वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है।
2: ड्रग्स?
1: अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात कराइए प्लीज।
0: अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा।
1: अरे नहीं सर, कोई तो उपाय होगा।
0: जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर अंकल तो स्मार्ट निकले।
3: अबे चल आ जा।
4: वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया, मेरा गेम ओवर।
3: चले,
5: असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत करें।
6: रुको, सोचो और एक्शन लो।

शिव और पार्वती के प्रिय पुत्र रिद्धि सिद्धि के दाता विघ्नहर्ता गणपति बप्पा आ रहे हैं अपने भक्तों के द्वार आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने, हर विघ्न बाधा को दूर भगाने और आपकी हर मंगल कामना पूर्ण करने। तो आप सभी को आ रहे इस साल के गणेश चतुर्थी के इस पावन त्योहार की ढेर

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: सुनो, क्या मैं बदतमीज हूँ?
3: Oh, no.
4: नहीं।
2: क्या मैं बहुत बड़बड़ करता हूँ?
4: नहीं।
2: क्या मुझे बोलने की अक्ल नहीं है?
4: नहीं।
2: क्या मुझ में दिमाग की कमी है?
4: नहीं। तो
2: क्या मैं अगली दिखता हूँ?
4: अरे नहीं बाबा।
2: तो फिर मम्मी ऐसे क्यों बोल रही है कि तू अपनी बीबी जैसा बनता जा रहा है?

श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी हाजिर हो गई हूँ आपका पसंदीदा और प्यारा सा कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला लेकर। जी हाँ श्रोताओं, अब से लेकर 8 बजे तक रहेंगे आपके साथ, करेंगे आपके साथ बातचीत, जानकारियां साझा और प्यारे प्यारे से गीत सुनवाएंगे आपको कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में गीत संगीत का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले जानते हैं इस समय क्या है धर्मशाला का तापमान। 17 डिग्री सेल्सियस तापमान है श्रोताओं और वातावरण में नमी है 91%। और इस समय की बात करें तो शाम, जिसे कहते हैं ना ये शाम मस्तानी सुहानी, वो इस समय शाम जो है वो है और हल्की फुल्की धूप जो है वो इस समय देखने को मिल रही है। शाम का समय है वैसे, और इस शाम को और भी ज़्यादा मज़ेदार, खूबसूरत और सुहाना बनाने के लिए श्रोताओं हम आ गए हैं रेडियो गुंजन के स्टूडियो में और अपने प्यारे प्यारे श्रोताओं के साथ हम मिलेंगे रेडियो के माध्यम से, साथ ही साथ आपके साथ बातचीत भी करेंगे और आपको प्यारे प्यारे से गीत भी सुनवाएंगे श्रोताओं। तो आइए बातचीत का जो सिलसिला है उसे रोकते हैं और गीत संगीत का सिलसिला शुरू करते हैं, सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम में कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ श्रोताओं, यूं ही बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपनेपन की।

श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय है आपके साथ आज का विचार साझा करने का, तो आइए चलते हैं आज के विचार की ओर और सुनते हैं क्या कहता है हमारा आज का विचार।

श्रोताओ, आज का विचार कर्म का महत्व। तो आज के विचार में समझते हैं कर्म के महत्व को। श्रोताओ, अगर हमारे कर्म हमें हंसा रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि हमें हमारे अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। और अगर हमारे कर्म हमें रुलाना शुरू कर दें तो हमें समझ लेना चाहिए कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। श्रोताओ, एक बार फिर से दोहरा रहे हैं आज का विचार कि हमारे कर्म जो हैं, अगर हमें हंसा रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि हमारे पहले के किए हुए अच्छे कर्मों का फल हमें मिल रहा है। और अगर हमारे कर्म हमें रुला रहे हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमें अच्छे कर्म करने हैं। अब अच्छे कर्म करने का समय जो है वो जीवन में आ गया है। श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला मेरे साथ। और श्रोताओं, विचार आज का हो गया और साथ ही साथ एक और बात आपके साथ साझा करने का मन कर रहा है। आपने भी देखा होगा, कल भी मैं आपसे रूबरू हुई थी और कल सुबह के कार्यक्रम में जो गीत मैंने सुनाने का प्रयास किया था, चुलबुले से नटखट से 80 के दशक के थे। लेकिन कई बार होता है, हम जिंदगी की व्यस्तताओं में जो चल रहा होता है समाज में, उससे थोड़े से अनभिज्ञ होते हैं। तो मुझे नहीं पता था कि 80 के गीत सुनवा रही हूँ मैं। और पिछले 3-4 दिनों से या एक हफ्ते से जो 80 का दशक है वो बड़ा ज़ोर शोर से इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे जो है वो छाया हुआ है। और AI के थ्रू लोग, हर कोई, चाहे वो युवा हैं, बच्चे हैं या बड़ी उम्र के हैं, वो 80 के दशक में AI से अपने फ़ोटो जो है वो क्रिएट करके फेसबुक पे डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं। अच्छा भी लग रहा है देखने का, और वो दौर बहुत अच्छा था। और ये बात इसलिए साझा कर रही हूँ श्रोताओं, क्योंकि मैंने कहीं पर पढ़ा था कि 80 के दशक को हम चित्रों में और चलचित्रों में जो है वो बड़ा चमका के जो है वो दिखा रहे हैं। लेकिन 80 के दशक की एक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत बात थी कि उस दौर में लोगों में अपनापन था, प्रेम था, भाईचारा था, आपस में मिलजुल करके रहने की जो है भावना है वो थी, ईमानदारी थी और सबसे बड़ी बात लॉयल्टी थी। जी हाँ, और अगर वो सारी चीज़ें भी इस दौर में फिर से वापस आ जाएं तो भाई 80 का दौर जो है उसे कोई नहीं रोक पाएगा। हर कोई कहेगा कि हमें इसी दौर में रहने दो, हमारे फ़ोटोज़ भी रहने दो, हमारे जो व्यवहार है, हमारे जो कर्म है वो भी 80 के दशक वाले ही कर दो। तो कितनी अच्छी बात थी ये कि 80 के दशक में लोग हंसते थे, खेलते थे, मिलजुल करके जीते थे। और लॉयल्टी, सबसे मुझे जो इसका एक चीज़ अच्छी लगी कि लॉयल्टी लोगों में बहुत थी, जो आजकल थोड़ी, या यूं कहें कि थोड़ी ज़्यादा ही कम हो गई है। लोग लॉयल जो है वो रहना कम पसंद करने लगे हैं, जो कि हमारी ज़िंदगी की बहुत ही एक खूबसूरत, हम कह सकते हैं, व्यक्तित्व की, चरित्र की एक विशेषता है जो कि हम सब में होनी चाहिए। और होगी तो बहुत अच्छी बात है श्रोताओं, और नहीं होगी तो हमें लॉयल्टी अपने जीवन में लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए थोड़ी सी। श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं मेरे साथ गुड इवनिंग धर्मशाला। और कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और मेरे साथ इस समय आप इस कार्यक्रम का आनंद उठा रहे हैं 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से। श्रोताओ, कार्यक्रम में बातचीत भी कर रहे हैं और जानकारियां भी साझा करेंगे आपके साथ। साथ ही साथ कार्यक्रम में जानकारी देने ही वाली थी मैं कि मुझे बड़ा प्यारा सा गीत एक दिख गया। और श्रोताओ, ये गीत है हम आपके दिल में रहते हैं। इस फिल्म का ये गीत है, कुमार शानू और साथियों की आवाज़ में ये गीत है। और इस गीत की खासियत कहूँ या इस गीत को सुनने का जो आनंद है वो वैसे तो थोड़ा सा शाम के समय या यूँ कहें कि हल्की हल्की जब शाम की लालिमा ख़त्म होकर के कालिमा शुरू हो जाती है, यानी हल्का सा अंधेरा होने लगता है या रात कह लें, उस समय जब आप इस गीत को हल्की सी आंखें बंद करके या अपनी आंखों को मूंद करके सुनते हैं तो इस गीत को सुनने का बहुत ही अलग ही आनंद आता है। खैर, गीत संगीत को सुनने का हर किसी का अपना अपना अंदाज़ होता है। मैं जिस गीत को सुन करके जो महसूस करती हूँ अपने श्रोताओं के साथ वही साझा करने की कोशिश करती हूँ। और ये गीत कुछ ऐसा ही है, हम आपके दिल में रहते हैं फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गीत है श्रोताओं। और शायद आपने इस गीत को काफ़ी समय पहले सुना होगा, इसलिए आपकी यादों को ताज़ा करवा देते हैं। सुना रहे हैं आपको कार्यक्रम में ये बहुत ही प्यारा सा मीठा सा गीत।

जी हाँ श्रोताओं, तो ये था हम आपके दिल में रहते हैं फिल्म का वो प्यारा सा गीत, और उम्मीद करते हैं आपने ये गीत एंजॉय किया होगा। और श्रोताओं, अब कार्यक्रम में रुख करते हैं जानकारियों की ओर। शाहपुर के विधायक एवं उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने आज शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के पीएचसी सेहवा के नए भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पीएचसी भवन के निर्माण पर 2.52 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने इसके लिए आवश्यक धनराशि स्वीकृत करने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि भवन के निर्माण से क्षेत्र के हजारों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। 4 लेन के समीप स्थित होने के कारण इसका लाभ हाईवे पर होने वाली आपात स्थितियों में भी मिलेगा। पठानिया ने लोक निर्माण विभाग को भवन का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग को पंचायत घर के निर्माण का एस्टीमेट तैयार करने को भी कहा। उन्होंने बताया कि सेहवा में ट्रॉमा सेंटर खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ 4 लेन पर होने वाली दुर्घटनाओं में घायलों को भी तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। साथ ही उन्होंने बताया कि सिविल अस्पताल शाहपुर को अगले 1 माह में नए भवन में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिससे क्षेत्रवासियों को आधुनिक एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस अवसर पर उन्होंने स्वर्गीय दूलो राम को भी याद किया, जिन्होंने स्वास्थ्य संस्थान हेतु अपनी जमीन दान की थी। इस दौरान जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विक्रम कटोच ने स्वास्थ्य विभाग की ओर से मुख्य अतिथि का स्वागत किया और विभाग की ओर से दिए गए निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। श्रोताओं, ये थी जानकारी। 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब फिर से चलते हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर।

श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में आप करते हैं थोड़ी सी बातचीत भी, और बातचीत कुछ इस तरह से कि कार्यक्रम में जो अगला गीत आपको सुनवाने हम

जी श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत जो आप सुनेंगे उसे हमने लिया है दाग फिल्म से, और इस गीत को किसने गाया है? जी हाँ, इस गीत को किसने गाया है इसके पीछे की ही जो कहानी है वो आपके साथ में साझा करना चाहूंगी। 1973 की सुपरहिट फिल्म दाग, जी हाँ 1973 से लेकर के ये गीत अब तक सुना जाता है, और अक्सर इस गीत की जो गायिकाएं हैं उनमें से सिर्फ लता मंगेशकर का नाम जो है वही हमें सुनने को मिलता है, और इनके साथ जो दूसरी प्यारी सी मीठी सी आवाज़ है उसको हम सुनते हैं साथी या कोरस के रूप में, जबकि वो उस दौर की बहुत ही प्यारी मीठी और सुपरहिट आवाज़ थी, और उनका नाम है मीनू पुरुषोत्तम। जी हाँ, नी में यार मनाना नी गीत के बोल हैं जो कि आप मेरी बातचीत के बाद सुनेंगे, और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और मीनू पुरुषोत्तम ने। और इस गीत के पीछे की यही बात मुझे थोड़ी अजीब लगी जब मैं इस गीत को सुन रही थी, और ये पहले भी हमने बहुत बार सुना है, तो एक ही आवाज़ नहीं है इसमें, दो बहुत सॉलिड और प्यारी आवाज़ें हैं, और मुझे लगा कि लता मंगेशकर की आवाज़ तो खैर दुनिया में प्रसिद्ध है ही, लेकिन दूसरी आवाज़ भी काफ़ी मज़ेदार थी, तो थोड़ा सा जब काम किया गया तो पता चला कि मीनू पुरुषोत्तम उस दौर की बहुत ही बेहतरीन सिंगर्स में से एक, उनकी आवाज़ इसमें थी, और रिकॉर्ड्स में उनका नाम नहीं है। उसके पीछे की वजह ये थी कि संगीत कंपनियाँ उस समय की जो नीतियाँ थी, या यूँ कहें कि मानवीय त्रुटियाँ भी कह सकते हैं, उसकी वजह से मीनू नीरज के नाम की जगह इन्होंने कोरस लिखा है, यानी सह गायक, सह गायिका के रूप में इनको जो है वो वर्गीकृत किया गया है। इस गाने में मुख्य पंक्तियां जो हैं वो लता मंगेशकर ने गाई थी, मीनू पुरुषोत्तम ने मुख्य रूप से जवाब देने वाले हिस्से या जो लोक गीत स्टाइल के कुछ अंतरे और भाग हैं उन्हें गाया था, और उस दौर में ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, जैसे खासकर बात करें HMV, उस पर जगह सीमित होने के कारण केवल जो मेन सिंगर होता था उसी का नाम जो है वो छापा जाता था, और बाकी के जो सिंगर्स होते थे उनको कोरस मान लिया जाता था। तो ऐसा ही हुआ मीनू पुरुषोत्तम के साथ भी, और दूसरी बात थोड़ी सी ये भी थी कि वो जो दौर था वो लता मंगेशकर का इंडस्ट्री में सबसे बड़े स्टार के रूप में उस समय लता मंगेशकर जी थी, इसलिए रिकॉर्ड्स की बिक्री बढ़ाने के लिए भी व्यावसायिक रूप से सिर्फ उन्हीं का नाम जो है वो हाईलाइट किया गया था। यशराज फिल्म्स के आधिकारिक यूट्यूब या सोशल मीडिया वीडियो क्रेडिट में आज भी कई जगह सिर्फ लता मंगेशकर और कोरस ही लिखा हुआ दिखाई देता है, ये उस समय की मूल क्रेडिट रोलिंग की वजह से ही है, लेकिन बाद में जब लोगों ने जाना होगा, सर्च रिसर्च किया होगा, तो पता चला कि लता मंगेशकर के साथ जो दूसरी प्यारी सी आवाज़ है वो मीनू पुरुषोत्तम की है। भले ही श्रोताओं शुरुआती दौर में मीनू पुरुषोत्तम का नाम रिकॉर्ड्स के कवर पर नहीं छपा था, लेकिन संगीत प्रेमियों ने और खुद संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उनके योगदान को हमेशा सराहा है। और बात करें आज के डिजिटल युग की, तो इस ऐतिहासिक भूल को सुधार लिया गया है, और स्पॉटिफाई, जियो सावन, गाना जैसे सभी बड़े म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स और सारेगामा की आधिकारिक जूकबॉक्स पर मीनू पुरुषोत्तम का नाम लता मंगेशकर जी के नाम के साथ सह गायिका यानी को सिंगर के रूप में गर्व से दर्ज है। और श्रोताओं, कहीं ना कहीं मैं उद्घोषक कहें या कलाकार कहें, हमें लगता है कि जब साथ में काम किसी ने बराबर किया है तो क्रेडिट सिर्फ एक को ही क्यों, हालांकि वो दौर लता जी का था, और साथ ही साथ जो को सिंगर थी उन्होंने भी उतना ही दम खम दिखाया इस गीत में, खूब मज़े से धड़ल्ले से इस गीत को गाया है, और मुझे ये बात थोड़ी सी अटपटी लगी। थोड़ा सा इसके ऊपर विचार विमर्श और रिसर्च किया गया तो पता चला कि वाकई में मीनू नीरज उस दौर की और बहुत ही प्यारी गायिका थी, और इन्होंने ये ही नहीं बल्कि और भी बहुत से प्यारे प्यारे से गीत जो हैं फिल्म इंडस्ट्री को दिए हैं। चलिए अब बातों को देते हैं विराम और लेते हैं गीत का आनंद लता मंगेशकर और मीनू पुरुषोत्तम की आवाज़ में दाग फिल्म के इस प्यारे से गीत का।

समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, इस कार्यक्रम को 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन से आप सुन रहे हैं और साथ ही साथ 88.4 मेगाहर्ट्ज़ ढटवाल की आवाज़ हमीरपुर रेडियो स्टेशन से भी हमें सुना जा रहा है। तो श्रोताओं, उम्मीद करते हैं हमीरपुर वाले भी ठीक ठाक होंगे और कार्यक्रमों का आनंद उठा रहे होंगे। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे और भी बहुत कुछ है और प्यारे प्यारे गीत भी हैं, जानकारियां भी आपके साथ साझा करेंगे। और मौसम की बात करें तो शुरू में आपको बताया कि तापमान कितना है और धीरे धीरे तापमान में गिरावट आएगी शाम होगी तो, और शाम के साथ ही मौसम भी धीरे धीरे अपना जो है वो करवट बदलेगा। अब से कुछ ही दिनों बाद सैर का जो है त्यौहार वो भी आने वाला है और हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जैसे ही सैर का त्यौहार आता है उसके बाद ये मान लिया जाता है कि जो शरद ऋतु है, शीत ऋतु है, वो शुरू हो जाती है और ठंड जो है उसका हल्का हल्का, जो प्रकोप तो नहीं कहेंगे हम, हल्की हल्की ठंड जो है वो महसूस होनी शुरू हो जाती है। खैर, पहाड़ी इलाकों की बात करें, हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र, वहाँ पे तो इस वक्त भी ठंड है, लोग स्वेटर पहनते हैं और जब भी घरों से बाहर निकलते हैं तो खासकर सुबह और शाम के समय तो उन्हें हल्के फुल्के ऊनी कपड़े, स्वेटर वगैरह पहननी ही पड़ती है। लेकिन मैदानी इलाकों की बात करें, अभी इस वक्त धर्मशाला और ख़ासकर सिद्धबाड़ी के इलाकों में हल्की सी जब धूप होती है तो गर्मी, उमस और गर्मी का एहसास होता है। तो ये एहसास श्रोताओं थोड़े ही दिन है। खैर, अभी बारिश की भी पूरी तरह से छुट्टी नहीं हुई है, बरसात भी सेप्टेम्बर के एंड तक 25-26 तारीख तक जो है वो मानसून यहाँ पे रहेगा, या यूं कहें कि 24-25 तक मानसून के जाने की जो है वो संभावना है। तो मौसम चाहे जैसा भी हो, मौसम बदलते हैं, प्रकृति का नियम है और मौसम के साथ साथ हमें उसी हिसाब से ढलना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि मौसम के साथ इंसानों को भी बदलना चाहिए, इंसान की जो नेचर है वो नहीं बदलती है और बदलनी भी नहीं चाहिए। हाँ, उसमें अच्छे गुण हों, अच्छाइयाँ हों हम सब में, हम यही चाहते हैं और यही दुआ भी करते हैं। श्रोताओं, इस वक्त आप हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और बातें करते करते श्रोताओं, कई बार हम इतने बह जाते हैं कि हमें ख्याल ही नहीं रहता कि हम सिर्फ बातें ही करने के लिए नहीं बैठे हैं, हमने गीत भी आपको सुनवाने हैं। प्यारे प्यारे से गीत चुन करके लाई हूँ श्रोताओं, आपको प्यारे से हैं और सदाबहार नगमे कह सकते हैं इनको। एंजॉय कीजिए इन प्यारे प्यारे गीतों का और मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। 8 बजे तक रहूँगी श्रोताओं आपके साथ।

श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त हूं इस समय आपके साथ पिंकी, और मेरे साथ आप कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। गीत हमने लिया है गुमनाम फिल्म से और गीत को गाया है लता मंगेशकर ने। श्रोताओं, इस गीत का आनंद आप उठाइए और गीत के ठीक बाद आप सुनेंगे समाचार। तो बने रहिए श्रोताओं, यूं ही हमारे साथ। रेडियो गुंजन धर्मशाला है इस रेडियो स्टेशन का नाम, आप सभी जानते ही हैं। चलिए एंजॉय कीजिए इस प्यारे से गीत को।

0: जी हाँ श्रोताओं, गमों को भुला दीजिए और जिंदगी में मस्त होकर के जिंदगी का आनंद उठाइए। इस समय आप कार्यक्रम का आनंद उठा रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। कार्यक्रम जारी रहेगा 7:05 पर भी। अब कार्यक्रम में समय है समाचारों का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
2: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% GDP और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल GDP करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड GDP करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर से बन रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत आज विकास और स्थिरता के लिए भरोसे का मिला है। उन्होंने मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया और स्किल फॉर द वर्ल्ड का आह्वान किया। इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रो इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। इस समय प्रधानमंत्री मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के बीच वार्ता हो रही है। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक महत्वपूर्ण है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता 2026 का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। 2 दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में भारत 5 प्रमुख कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था, जबकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। साथ ही भारत ब्रिक्स में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में आज पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभों पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की। भारतीय पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन ने पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान तनमोल दिक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में 2-3 दिन तक बादल छाए रहने और वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। इस समय आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। रेडियो गुंजन 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है और इसके साथ ही 88.4 ढटवाल की आवाज़ हमीरपुर रेडियो स्टेशन से भी हमें सुना जा रहा है श्रोताओं इस समय लाइव। और अपने प्यारे प्यारे श्रोताओं को हम बता दें कि इस समय हम अपने फेसबुक पेज पर भी लाइव आ गए हैं। अगर आप चाहते हैं इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ना तो आप हमारे रेडियो गुंजन के फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं। श्रोताओं कार्यक्रम में हर बार की तरह से जानकारियां आपके साथ साझा कर रहे हैं, बातचीत का आनंद उठा रहे हैं अपने प्यारे प्यारे श्रोताओं के साथ, और श्रोताओं के साथ हम गीत संगीत का भी आनंद उठा रहे हैं। श्रोताओं कुछ गीत आपके लिए चुन करके लाए हैं और हमारी कोशिश रहती है कि जो भी गीत हम आपके लिए लाएं उनको सुन करके आपको अच्छा लगे, खुशी मिले। और गीत संगीत का श्रोताओं अपना अलग ही महत्व होता है, अलग ही आनंद होता है, चाहे वो फिल्म संगीत हो या लोकगीत हो। लोकगीत की धुनें सुन करके हमारी मिट्टी की महक हमारे रोम रोम में छा जाती है और हमारा मन उन गीतों को गुनगुनाने का, गाने का, और साथ ही साथ अगर धुन ऐसी कोई डांस वाली हो तो थिरकने का भी मन करता है। तो श्रोताओं हम यहाँ इसीलिए हैं कि आपका जो समय है, जिस समय आप रेडियो सुनते हैं, वो मनोरंजक और आकर्षक बना रहे, उसमें आप कार्यक्रम भी सुने, गीत भी सुने और उन गीतों की धुनों पर झूमे भी। और कुछ ऐसे गीत जिनको सुन करके अगर आप झूमते नहीं हैं तो आपकी रूह तक वो उतरे, ऐसा हमारी कोशिश रहती है। तो चलिए कार्यक्रम में बातें तो होती ही रहेंगी श्रोताओं, गीत संगीत का भी अब समय हो रहा है, तो समाचारों के बाद आइए चलते हैं कार्यक्रम में आगे, सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। आप बने हुए हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। श्रोताओं यूं ही बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपनेपन की।

0: चेहरा कुछ जाहिर कुछ नेहा।
1: हाजरीन महफिल मेरा साथ दी, अंतरों से घूम के जब मैं मुखरे पे आऊं तो मेरे साथ।
2: पहले आपके नाम आपकी सेहत भरे।

0: जी हाँ श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम का आनंद आप उठा रहे हैं, साथ ही साथ हम अपने प्यारे प्यारे श्रोताओं के साथ आनंद उठा रहे हैं बातचीत का। और कार्यक्रम में श्रोताओं, अब आपको बहुत ही प्यारा सा गीत आगे हम सुनवाने जा रहे हैं, और ये गीत है श्रोताओं नमक हलाल फिल्म से। जी हाँ दोस्तों, 80 का जो दशक है उसकी बात हो रही है। और श्रोताओं, अपने श्रोताओं को बता दें कि हम फेसबुक पेज पर भी लाइव आ गए हैं, क्योंकि पहले वाली जो हमारी लाइव की हम कह सकते हैं वीडियो थी, वो थोड़ी सी टेक्निकली कुछ सही नहीं थी। चलिए, लाइव भी आ गए हैं और आपसे लाइव बात भी कर रहे हैं। नमक हलाल 1982 में ये फिल्म आई थी, 1982, और आप सभी जानते हैं कि 80s का दौर आजकल सोशल मीडिया पर पूरे जोर शोर के साथ छाया हुआ है। गीत सुनवा रहे हैं श्रोताओं आपको नमक हलाल फिल्म का, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। और इस गीत के बारे में थोड़ा सा बता दें कि इस गाने का संगीत जो है वो बप्पी दा ने बनाया था। जब बप्पी लहरी ने इस गाने की धुन बनाई और किशोर कुमार को सुनाई तो किशोर दा एक बार घबरा गए थे। धुन काफ़ी लंबी और शास्त्रीय शैली पर आधारित थी, इसलिए किशोर कुमार को लगा कि वह इस गीत को, या यूं कहें कि इस मुश्किल गीत को, किस तरह से गा पाएंगे। फिल्म के निर्देशक प्रकाश मेहरा ने इस गाने के बोल लिखने में गीतकार अनजान का साथ दिया। गाने की शुरुआत की पंक्तियां बुजुर्गों ने फरमाया, जीवन के संघर्ष और अपने पैरों पर खड़े होने का संदेश देती हैं। और बात करें किशोर कुमार जी की शानदार गायकी की, हालांकि शुरुआत में किशोर कुमार इस गीत को इस अंदाज में गाने में जो है वो थोड़ा संकोच कर रहे थे कि ये गाना उनके लिए थोड़ा अलग हटके, या यूं कहे कि थोड़ा सा उन्हें लग रहा था कि मुश्किल गीत है कि किस तरह से गाएं, लेकिन बाद में उन्होंने इस गीत को गाया और उन्हें इस गीत के लिए जो है वो सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का फिल्मफेयर पुरस्कार जो है श्रोताओं वो भी मिला। और ये गीत आप सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन के ऊपर फिल्माया गया था। इसमें उनके अभिनय मस्ती का अंदाज जो है वो पर्दे पर लोगों को देखने को मिलता है, और उनका जो ये अंदाज है मस्ती भरा, ये इस गीत को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना देता है। तो श्रोताओं, ये था नमक हलाल फिल्म के इस गीत के पीछे का सारा वृतांत जो हमने आपको सुनवाया। चलिए अब गीत सुनवा रहे हैं आपको 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से। एंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक और यूं ही बने रहिए हमारे साथ 91.2 FM पर।
1: लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर

श्रोता 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं मेरे साथ गुड इवनिंग धर्मशाला। और श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सुन रहे थे नमक हलाल फिल्म का गीत, जिस गीत के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरह से वो गीत रिकॉर्ड किया गया था और एक एक्सपेरिमेंट ही था जो कि सफल हुआ और खूब ज़्यादा सफल हुआ। और उस समय के दौर में जो गीत लिखे जाते थे, खासकर इसके शुरुआत में भी कहा कि बुज़ुर्गों ने फरमाया है अपने पैरों पर खड़े होकर देखिए तो ये ज़माना तुम्हारा है। और ये सिर्फ सुनने वाली बात नहीं है श्रोताओं, ये समझने वाली बातें हैं कि अपने पैरों पे अगर हम खड़े होंगे तभी ज़माना जो है वो हमारा होगा। साथ ही साथ और भी बड़े प्यारे प्यारे इसमें बोल थे। हम कह सकते हैं कि पहले के दौर में इन बातों को बोला जाता था, समझा जाता था, महसूस किया जाता था, जैसे कि पराया धन पराई नार पर नजर मत डालो, आदत है ये बुरी आदत तुम बदल डालो। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है श्रोताओं, वाकई में हमारे शास्त्रों में भी ये सारी बातें लिखी गई हैं कि पराए धन, चाहे वो पराई नार हो या कुछ भी हो, किसी भी तरह से पराई जो चीज़ें होती हैं उस पे अगर हम नज़र रखते हैं या हम गलत भावना गलत नज़र रखते हैं तो हमारे ग्रह खराब होते हैं, हमारा पूरा जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए जीवन में जो भी करें, जो भी करना चाहते हैं, अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ करें, किसी की ज़िंदगी में किसी की खुशियों में आप यूं ही नज़र ना डालें। 91.2 MHz पर श्रोताओं आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और बातें जब करने लगते हैं श्रोताओं तो बातों का इतना रस हम कह सकते हैं कि आता है कि हमें लगता है बस श्रोता सुन रहे हैं और हम बोलते ही जाएं, लेकिन हम इतना ज़्यादा बोलेंगे तो हमारा जो रस है उसमें कोई रस नहीं रहेगा बातों में। इसलिए आगे भी आपसे बातचीत करेंगे श्रोताओं और साथ ही साथ आपको गीत भी सुनाएंगे प्यारे प्यारे। तो चलिए कार्यक्रम में आनंद उठाते हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत का। आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी।

श्रोताओ, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ, कार्यक्रम में अब आपके साथ बातचीत नहीं करेंगे, जी हाँ, अब आपको एक कहानी सुनाएंगे, छोटी सी प्यारी सी। और रेडियो की यही खासियत होती है श्रोताओं कि हम रेडियो सुनते रहते हैं और साथ ही साथ हमारे घर के कामकाज भी होते रहते हैं। और अपनी बात करूँ तो मैं रेडियो सुनते सुनते लिखने का काम भी करती थी, और जब भी मुझे कुछ लिखना होता था तो रेडियो सुन करके मुझे ऐसे लगता था कि अब थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिल रही है। खैर, जब हम छोटे थे उस टाइम इतने अधिक रेडियो चैनल तो नहीं थे, जो हमारे देश के कुछ खास खास चुनिंदा रेडियो चैनल थे वो होते थे और उनको सुन करके ही हम अपने आप को जो है वो बहलाते थे, या यूँ कहें कि मनोरंजन में अपने आप को डुबोते थे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं श्रोताओं। छोटी सी कहानी है और कहानी का शीर्षक भी छोटा सा दीपक। जी हाँ, यह है कहानी का नाम, छोटा सा दीपक। और श्रोताओ, कहानी शुरू होती है एक ऐसे छोटे से गांव से जहाँ पे एक वृद्ध व्यक्ति रहता था और उसके घर के बाहर हर शाम एक छोटा सा दीपक जलता था। एक दिन गांव के एक लड़के ने उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि बाबा, इस छोटे से दीपक से क्या होगा, इतनी बड़ी अंधेरी रात में इसकी रोशनी कितनी दूर तक जाएगी। वह वृद्ध मुस्कुराया और बोला, बेटा, ये दीपक पूरी रात को रोशन करने की कोशिश नहीं करता, ये सिर्फ अपने आसपास का अंधेरा दूर करता है। लड़के को कुछ समझ नहीं आया तो उसने कहा, इसका क्या मतलब हुआ बाबा? तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि मान लो तुम किसी लंबे रास्ते पर चल रहे हो और तुम्हारे हाथ में सिर्फ इतनी ही रोशनी है कि तुम आगे के 10-12 कदम ही देख पाओ, क्या तुम सिर्फ इसीलिए चलना छोड़ दोगे कि तुम्हें पूरा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा? तो लड़के ने कहा, नहीं, जहाँ तक वो दीपक रोशनी करेगा, यानी 10-12 कदम तक अगर वो रोशनी करेगा तो मैं वहाँ तक चलूँगा, फिर जब वहाँ पहुँचूँगा तो आगे के 10-12 कदम दिखेंगे तो मैं फिर से आगे का रास्ता जो है वो चलना शुरू कर दूँगा। इस बात पर वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया और उन्होंने कहा कि बस, जिंदगी भी ऐसी ही है, कई बार हम इसलिए ज़िंदगी में रुक जाते हैं क्योंकि हमें अपना पूरा भविष्य दिखाई नहीं देता और हमें लगता है कि रास्ता बहुत लंबा है, मुश्किलें बहुत बड़ी हैं और हमारे पास साधन बहुत कम है। लेकिन ज़िंदगी हमसे पूरी मंजिल का साथ देखने का वादा नहीं करती, वो सिर्फ इतना कहती है कि अगला कदम उठाइए। आज की छोटी सी कोशिश कल की बड़ी सफलता बन सकती है, आज की एक गलती हमारा कल का अनुभव बन सकती है और आज की एक छोटी सी उम्मीद कल किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो श्रोताओ, अगर आपकी जिंदगी में इस समय थोड़ा अंधेरा है तो घबराइए मत, सूरज निकलने का इंतजार करने की बजाय अपने हिस्से का छोटा सा दीपक जला दीजिए, क्योंकि याद रखिए, रोशनी कितनी बड़ी है ये हमेशा मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आपने अंधेरे के सामने रोशनी जलाने की हिम्मत की या नहीं। पूरा रास्ता दिखाई ना दे तो कदम रोकिए मत, अगला कदम जरूर उठाइए। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की छोटी सी प्यारी सी कहानी, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी और इस कहानी में जो संदेश छुपा था उसको भी आपने समझना है और अपने जीवन में अमल में लाना है। श्रोताओ, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ, कार्यक्रम है गुड इवनिंग धर्मशाला। और अब समय है श्रोताओ, इस प्यारी सी कहानी के बाद आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत सुनवाने का। तो आइए चलते हैं, आनंद उठाते हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत का।

श्रोताओ, 91.2 MHz पर आप हैं समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब कार्यक्रम में सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब कार्यक्रम में समय है प्रादेशिक समाचारों का। बने रहिए यूं ही हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपनेपन की।

0: निराशाजनक करार दिया है। रोहित ठाकुर ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लंबे समय तक कांग्रेस का दुर्ग रहे शिमला जिला में पार्टी का पंचायत चुनावों में प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा। ऐसे में इन नतीजों की गंभीरता से समीक्षा और आत्ममंथन करने की जरूरत है।
1: जनार्दन का जनमत है, स्वीकार करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट की समीक्षा करनी होगी। जयतिराज एक सिखा रहे आपका बेस है, जयसंकल्प की बात हो जाए, इसको धरातल तक अपनी स्कीम्स को योजनाओं को धरातल तक पहुंचाना, उसमें अहम रोल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का रहता है। तो निश्चित रूप में जो नुकसान हुआ है या जो परिणाम आए हैं, इसमें समीक्षा करना आवश्यक।
0: रोहित ठाकुर ने कहा कि उन्होंने अपने दिल्ली दौरे के दौरान पार्टी नेताओं से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, इसमें सरकार के 4 साल का कार्यकाल भी शामिल है। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि मंत्रिमंडल की बैठक सरकार में किसी प्रकार के मनमुटाव के कारण स्थगित की गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश में सुख के नाम पर शुल्क की सरकार चला रहे हैं। जयराम ठाकुर ने आज शिमला में कहा कि प्रदेश के लोग आए दिन एक ना एक सुख शुल्क से प्रताड़ित हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश सरकार के ज्यादातर आदेश और अधिसूचनाएं किसी ना किसी सेवा को समाप्त करने, संस्थान बंद करने और शुल्क लगाने के लिए जारी हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अब सरकार ने परिवार रजिस्टर की नकल के लिए भी शुल्क लगा दिया है, जबकि स्टाम्प से लेकर अन्य आवश्यक जन सुविधाओं की कीमतों को बढ़ाने का भी सरकार ने प्रावधान किया है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी और वर्तमान राजनीतिक हालात से विचलित हैं और उन्हें इस स्थिति से प्रदेश की जनता को अवगत करवाना चाहिए। प्रदेश भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर 17 सितंबर को राज्य के लगभग 8,000 बूथों पर आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित करेगी। इस कार्यक्रम के संयोजक विक्रम सिंह ठाकुर ने आज शिमला में कहा कि प्रत्येक बूथ पर प्रदेश की माताएं, बहनें, युवा, बच्चे और समाज के सभी वर्ग के लोग लगभग 100 दीप प्रज्वलित कर प्रधानमंत्री को दीर्घायु और यशस्वी जीवन का आशीर्वाद देंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम केवल दीप प्रज्वलन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रधानमंत्री के प्रति जनता के विश्वास और विकसित भारत के उनके संकल्प में जनभागीदारी का सशक्त प्रतीक बनेगा। प्रदेश कांग्रेस के सिरमौर जिला प्रभारी धर्मेंद्र धामी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार जनता से किए वायदों को पूरा करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। धामी ने आज नाहन में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश सरकार का 4 वर्ष का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है और कांग्रेस फिर से प्रदेश में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयार है और इसके लिए सिरमौर जिला में

0: बूथ बूथ पर जाएंगे, पार्टी को मजबूत बनाएंगे, अभियान शुरू किया गया है।
1: जिला सिरमौर से कांग्रेस पार्टी ने एक अभियान शुरू किया है कि बूथ बूथ पर जाएंगे और कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे। बहुत जल्दी सभी जो हमारी नई कार्यकारिणी जिला की बनी है उनको कार्यभार दी, जोन वाइज और ब्लॉक वाइज ड्यूटी लगाई जाएगी ताकि हमने कांग्रेस पार्टी की जो है बूथ कमेटी जो हमारी मजबूत बने, हमारा बूथ ज्यादा स्ट्रांग हो।
0: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
2: कल मैंने अपना बीपी और शुगर की जांच करवाई और मेरा शुगर बढ़ा हुआ आया है।
3: अच्छा, कहाँ करवाई ये जांच?
2: यही अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। बड़ी सुविधा है, शुगर और बीपी दोनों की जांच हुई और दवा भी आज से चालू हो जाएगी, वो भी बिना किसी पैसे के।
3: क्या मैं भी करा सकती हूँ?
2: बिल्कुल, ये जांच 30 साल से ऊपर सभी लोगों को हर साल में करवानी चाहिए।
3: मैं आज ही जाती हूँ।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। बैंक कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल का आज हिमाचल में भी व्यापक असर देखने को मिला। प्रदेश में आज दिन भर बैंक बंद रहे और बैंक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विभिन्न स्थानों पर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले धरने प्रदर्शन किए। शिमला में आयोजित विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए यूनियन के प्रदेश संयोजक नरेंद्र शर्मा ने कहा कि यदि अब भी सरकार और बैंक प्रबंधन ने कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी तो 26 अक्टूबर से देश भर में बैंकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी।
5: 96-97% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स जो बैंकिंग इंडस्ट्री की है आज पूरी स्ट्राइक पे। आज की जो ये स्ट्राइक है इसके मुख्य दो मांगे हमारी है। पहली जो मांग है हमारी वो 5-day बैंकिंग को लेकर के, और दूसरा मुद्दा है वो PLI को लेकर है। ये इमीडिएट कारण बना और इसी को बात को लेकर के आज की जो ये सांकेतिक हड़ताल का काल है 3 दिन की, हम जैसे मैंने कहा 28-29 को करेंगे और उसके बाद हम 26 अक्टूबर से जो है टोटल इंडेफिनिट।
0: मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। सुनील शर्मा बिट्टू ने आज शमीरपुर के निकट हरनेड़ गांव में हिम कृषि योजना के तहत निर्मित उठाऊ सिंचाई योजना के उद्घाटन अवसर पर कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और ऐसे उत्पादों का न्यूनतम मूल्य तय करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि हरनेड़ सिंचाई योजना के आरंभ हो जाने से गांवों की लगभग 80 कैनाल भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी और इससे किसानों की आय बढ़ेगी। सुनील शर्मा बिट्टू ने गांव वासियों से मुख्यमंत्री के चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान में सक्रिय योगदान देने की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि गांवों की लिकरोड, रास्तों की मुरम्मत और पुराने कुएं के जीर्णोद्धार के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। मंडी मनाली फोर लेन सड़क पर अब यात्रा और सुगम हो गई है। इस सड़क पर बनी दो सुरंगों दियोड़ व अणोगी को आज से यातायात के लिए खोल दिया है। इन सुरंगों के शुरू हो जाने से मंडी से कुल्लू का सफर अब महज 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। अधिक जानकारी के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
6: करीब 4,466 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस फोर लेन परियोजना में करीब 3.5 किलोमीटर लंबी ये दोनों सुरंगें बेहद महत्वपूर्ण हैं। इनसे शुरू होने से भूस्खलन और जाम के लिए बदनाम 5-6 किलोमीटर लंबे घुमावदार हिस्से को बाईपास किया गया है। मंडी से कुल्लू की दूरी 78 किलोमीटर से घटकर अब 60 किलोमीटर रह गई है और सफर का समय भी लगभग 2 घंटे से घटकर 1.5 घंटे का रह जाएगा। हणोगी सुरंग का वर्ष 2025 की मानसून आपदा में भारी नुकसान पहुंचा था। इसे रिकॉर्ड 7 दिनों में करीब 57 करोड़ रुपए की लागत से दोबारा तैयार किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी इन सुरंगों के खुलने पर प्रसन्नता जताते हुए बधाई दी है। इन सुरंगों के खुलने से कुल्लू मनाली आने वाले पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों और सेब उत्पादों को बड़ी राहत मिलेगी। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
0: शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार लगातार जनाधार खो रही है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज और नगर निगम चुनावों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है और अब इन चुनावी नतीजों का असर विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिलेगा। सुरेश कश्यप ने आज नाहन में एक पत्रकार वार्ता में प्रदेश सरकार पर चुनावी साल में जनता को बरगलाने का प्रयास करने का आरोप भी लगाया।
5: जो वायदा प्रदेश की जनता से किया गया था, 22 लाख महिलाओं से किया गया, यहाँ की प्रदेश की जनता से 300 फीसदी बिजली देने का वायदा हुआ था, 1 लाख सरकारी नौकरियां प्रति वर्ष देने का जो वायदा हुआ था, गोबर और दूध का मूल्य जो है तो देने की बात हुई थी, और बहुत सारे दूसरे वायदे भी हुए थे, लेकिन ये सारी घोषणाओं का क्या हुआ? और अब जब चुनावी वर्ष में जब एक साल से भी कम समय बचा है, ऐसे समय में फिर से जनता के सामने झूठ बोलकर जनता को बरगलाने का प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और इसका कड़ा जवाब प्रदेश की जनता आने वाले समय के चुनाव में देगी, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में भारी बहुमत से अपनी।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने में सहयोग करेगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला जिला परिषद चुनावों में भाजपा की जीत को बताया कांग्रेस के लिए निराशाजनक। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, प्रदेश में शुल्क के नाम पर शुल्क की सरकार चला रहे हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। बैंक कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल से हिमाचल में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित। और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा, किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने लिए थे कई ऐतिहासिक निर्णय। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला
7: श्रोताओ, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। इस समय आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब श्रोताओ, आपसे विदा लेने का मन तो नहीं करता, लेकिन वक्त का दस्तूर है कि जो आया है उसे जाना ही होता है। इसलिए हम भी ले रहे हैं आपसे विदा इसी वादे के साथ कि बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, और साथ ही साथ एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, और यही सोचिएगा कि ना जाने कहाँ से आई थी ये लड़की।

0: चूही? क्या है? क्या है ये?
1: आपने तो कहा था जब तक डस्टबिन ना मिले कचरा अपने पॉकेट में रखना, पॉकेट फुल हो गए। छोटी आदतों से ही होता है बड़ा बदलाव।
2: एक नई आदत अपनाते, जब तक डस्टबिन ना मिले
1: इंडिया के हर पॉकेट को ही डस्टबिन बनाते।

0: रवि जी, मैं से जो सुभाष चटनिस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यहीं हॉस्टल में पढ़ता है?
1: जी सर।
0: वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है।
2: ड्रग्स?
1: अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात कराइए प्लीज।
0: अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा।
1: अरे नहीं सर, कोई तो उपाय होगा।
0: जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर अंकल तो स्मार्ट निकले।
3: अबे चल आजा।
4: वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया। मेरा गेम ओवर।
3: चले, असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत करें।
5: रुको, सोचो और एक्शन लो।

शिव और पार्वती के प्रिय पुत्र, रिद्धि सिद्धि के दाता, विघ्नहर्ता गणपति बप्पा आ रहे हैं अपने भक्तों के द्वार आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने, हर विघ्न बाधा को दूर भगाने और आपकी हर मंगल कामना पूर्ण करने। तो आप सभी को आ रहे इस साल के गणेश चतुर्थी के इस पावन त्योहार की ढेर सारी

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

तुम्हारे गम की डली उठाकर जबां पे रख ली है, देखो मैंने ये कतरा कतरा पिघल रही है, मैं कतरा कतरा ही जी रहा हूँ।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन 91.2 FM। प्रस्तुत हैं आज के प्रमुख समाचार। सबसे पहले सुर्खियां। एयरलाइंस के सभी पायलटों के लिए अब ड्रग टेस्ट जरूरी, DGCA ने दिए सख्त निर्देश। बिजली कटने से पहले मोबाइल पर आएगा SMS। हिमाचल में नई व्यवस्था लागू। हिमाचल में अब ऑनलाइन भी बन सकेगी परिवार नकल, की KYC जरूरी। भारत आएंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का ऐलान। वर्ष 2035 तक भारत का अपना स्पेस स्टेशन और 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अक्टूबर से दिसंबर के बीच 3 चक्रवातों का खतरा, भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी। नशे में डूबे बच्चे को छिपाए नहीं, 112 पर फोन करें, तत्काल मिलेगी मदद। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में बदलेगी वर्दी, छात्र हरी और शिक्षक अलग रंग की ड्रेस में नजर आएंगे। अब समाचार विस्तार से। गणेश उत्सव पर गणेश प्रतिमा विसर्जन 14 सितंबर को जिला कांगड़ा के विभिन्न स्थानों में किया जाएगा। इस मौके पर श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत जिला प्रशासन द्वारा सभी उपमंडलाधिकारियों और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अतिरिक्त उपायुक्त विनय कुमार ने सभी विसर्जन स्थलों पर सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की पर्याप्त व्यवस्था, यातायात का सुचारू संचालन बनाए रखने, विसर्जन स्थल की बैरिकेडिंग, आपातकालीन स्थिति से निपटने हेतु सुरक्षा बल, स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय तथा पर्यावरण व जल स्रोतों की स्वच्छता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मिनी सचिवालय शाहपुर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय NLU शिमला के मौजूदा बुनियादी ढांचे के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण में सहयोग करेगी। प्रदेश सरकार विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे को और सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा उन्होंने विश्वविद्यालय को अपने संसाधन स्वयं सृजित करने पर भी बल दिया। बागवानी विभाग द्वारा मधुमक्खी पालकों के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता शाहपुर के विधायक एवं उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने। शिविर में स्मॉल हाइव बीटल से मधुमक्खियों को होने वाले नुकसान और इसकी रोकथाम के उपायों की जानकारी दी गई। केवल सिंह पठानिया ने SDM शाहपुर को संबंधित पंचायतों के प्रभारियों के माध्यम से नुकसान का आकलन करवाकर जल्द विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि मामला मुख्यमंत्री एवं बागवानी मंत्री के समक्ष उठाकर प्रभावित मधुमक्खी पालकों को सहायता दिलाई जा सके। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने एयरलाइन कंपनियों को निर्देश दिया है कि सभी पायलटों का कम से कम साल में एक बार ड्रग टेस्ट कराया जाए। ये फैसला हाल ही में एयर इंडिया की एक एयरबस A320 से जुड़ी घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी चिंताओं के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार विमान के उड़ान के दौरान हाइड्रोलिक सिस्टम में अचानक खराबी आई, इसके बाद ऑटो पायलट अलग हुआ और विमान में कुछ समय के लिए तेज झटके महसूस हुए। DGCA ने इससे पहले भी भारतीय एयरलाइंस को पायलटों की ड्रग टेस्टिंग के निर्देश दिए थे। अब जुलाई 2027 तक सभी पायलटों का एक बार सैंपल कलेक्ट कर टेस्ट किया जाए। विद्युत बोर्ड ने यह नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत बिजली कटौती से जुड़ी जानकारी उपभोक्ताओं तक SMS के जरिए पहुंचाई जाएगी। नई व्यवस्था के अनुसार यदि किसी फीडर या विद्युत व्यवस्था में खराबी आती है तो संबंधित SDO और JE को तत्काल सूचना मिलेगी। इसके बाद खराबी की स्थिति में कुछ ही मिनटों के भीतर उपभोक्ताओं को भी जानकारी दी जाएगी। इससे लोगों को अचानक बिजली जाने की परेशानी के लिए पहले से तैयार रहने में मदद मिलेगी। विद्युत बोर्ड की ओर से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उपभोक्ताओं तक सही और समय पर सूचना पहुंचाई जाए। हिमाचल प्रदेश में नागरिकों के लिए एक और सुविधा शुरू की जा रही है। अब परिवार नकल प्राप्त करने के लिए पंचायत कार्यालय जाने के साथ साथ ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकेगा। पंचायती राज विभाग ने ई परिवार रजिस्टर पोर्टल पर नई सुविधाओं और प्रक्रिया को लेकर जिला पंचायत अधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों और ग्राम पंचायत सचिवों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। नागरिक ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव के पास आवेदन कर सकते हैं या ई डिस्ट्रिक्ट हिमसेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परिवार नकल लेने के लिए आवेदक को संबंधित ग्राम पंचायत में आवेदन करना होगा। इसके बाद पंचायत सचिव ई परिवार रजिस्टर पोर्टल पर लॉगिन करके संबंधित परिवार की परिवार ID के आधार पर नकल जारी करने की प्रक्रिया पूरी करे। इसके बाद ऑनलाइन काम के लिए पेज खुलेगा। परिवार नकल के लिए 13.80 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। भुगतान UPI, QR स्कैन सहित अन्य ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकेगा। खास बात यह है कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवेदक का आधार आधारित EKYC किया जाएगा। यदि EKYC पूरी नहीं है तो पोर्टल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार पहले उसे पूरा करना होगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आने का ऐलान किया है।
रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शामिल होंगे। यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ष 2020 में गलवान सीमा पर हुए तनाव के बाद ये चीन के राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा और 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय पहुंचेगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अंतरिक्ष कानून पर आधारित सुरक्षित और सतत अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक आंकड़ों का उपयोग मानवता के लिए साझा लक्ष्यों की पूर्ति में किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम केवल देश तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए उपयोगी है। प्रधानमंत्री के अनुसार भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और मौसम निगरानी प्रणालियों से मिले आंकड़ों के आधार पर देश के तटीय इलाकों में आने वाले 3 महीने संवेदनशील रहने की संभावना जताई गई है। अक्टूबर से दिसंबर के दौरान बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में 3 संभावित चक्रवाती गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से कुछ चक्रवात सामान्य से अधिक ताकतवर हो सकते हैं। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और समुद्र में ऊंची लहरों की स्थिति पैदा हो सकती है। आंकड़ों के अनुसार चक्रवातों की तीव्रता पिछले वर्षों की तुलना में अधिक हो सकती है। केंद्र सरकार ने भी इसरो की चेतावनी के बाद निगरानी शुरू कर दी है। मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग को स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। नशे के खिलाफ जागरूकता और आपातकालीन मदद को लेकर पुलिस ने महत्वपूर्ण संदेश दिया है। यदि कोई बच्चा नशे की चपेट में आ जाए या अचानक उसकी तबीयत गिर जाए तो परिवार को घटना छिपाने के बजाय तुरंत मदद लेनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में आपातकालीन सहायता के लिए 112 नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है। ओवरडोज या अचानक तबीयत बिगड़ने की स्थिति में 112 पर फोन कर तत्काल सहायता मांगी जा सकती है। पुलिस के अनुसार नशे के खिलाफ लड़ाई में परिवार की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। बच्चों के व्यवहार में अचानक बदलाव, नशे की सामग्री या गतिविधियों से जुड़े संकेत नजर आए तो परिवार को सतर्क होना चाहिए। नशे से जुड़ी किसी भी आपात स्थिति में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए समस्या को छिपाने के बजाय तुरंत चिकित्सा और पुलिस सहायता लेना जरूरी है। सरकार ने विद्यार्थियों के लिए नई वर्दी निर्धारित की है। नई व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों की वर्दी हरी रंग की थीम पर आधारित होगी। महिला शिक्षकों के लिए हल्के नीले रंग की साड़ी और पुरुष शिक्षकों के लिए ब्लू रंग की ड्रेस निर्धारित की गई। सरकार का उद्देश्य स्कूलों में एक समान पहचान और अनुशासन को बढ़ावा देना है। बताया गया है कि नई यूनिफॉर्म और रंग योजना केवल सौंदर्य से जुड़ी नहीं है बल्कि स्कूलों में एक अलग और मजबूत पहचान स्थापित करने की दिशा में भी कदम है। शिक्षा विभाग की बैठक में स्कूल भवनों की रंग योजना और स्कूलों की एक अलग पहचान स्थापित करने सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की गई। एक बार फिर मुख्य सुर्खियां। सभी एयरलाइंस के पायलटों के लिए ड्रग टेस्टिंग जरूरी होगी। हिमाचल में बिजली कटौती से पहले मोबाइल पर SMS की सुविधा मिलेगी। परिवार नकल के लिए अब ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने भारत आएंगे। 2035 तक भारत का अपना स्पेस स्टेशन और 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय पहुंचाने का लक्ष्य। अक्टूबर से दिसंबर के बीच चक्रवाती गतिविधियों की चेतावनी और नशे या ओवरडोज की आपात स्थिति में 112 पर मदद देने की अपील। इसी के साथ आज का समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है।

0: जूही,
1: क्या है?
0: क्या है ये?
1: आपने तो कहा था जब तक डस्टबिन ना मिले कचरा अपने पॉकेट में रखना, पॉकेट फुल हो गए। छोटी आदतों से ही होता है बड़ा बदलाव।
2: एक नई आदत अपनाते, जब तक डस्टबिन ना मिले
1: इंडिया के हर पॉकेट को ही डस्टबिन बनाते।

0: रवि जी, मैं से जो सुभाष चटनीस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यहीं हॉस्टल में पढ़ता है?
1: जी सर।
0: वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है।
2: ड्रग्स?
1: अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात कराइए प्लीज।
0: अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा।
1: अरे नहीं सर, कोई तो उपाय होगा।
0: जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर अंकल तू स्मार्ट निकले।
3: अबे चल आ जा।
4: वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया। मेरा गेम ओवर।
3: चले, असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत करें।
5: रुको, सोचो और एक्शन लो।

पार्वती के प्रिय पुत्र, रिद्धि सिद्धि के दाता, विघ्नहर्ता गणपति बप्पा आ रहे हैं अपने भक्तों के द्वार आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने, हर विघ्न बाधा को दूर भगाने और आपकी हर मंगल कामना पूर्ण करने। तो आप सभी को आ रहे इस साल के गणेश चतुर्थी के इस पावन त्योहार की ढेर सारी

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: सुनो, क्या मैं बदतमीज हूँ?
3: Oh, no!
4: नहीं।
2: क्या मैं बहुत बड़बड़ करता हूँ?
4: नहीं।
2: क्या मुझे बोलने की अक्ल नहीं है?
4: नहीं।
2: क्या मुझ में दिमाग की कमी है?
4: नहीं। तो
2: क्या मैं अगली दिखता हूँ?
4: अरे नहीं बाबा।
2: तो फिर मम्मी ऐसे क्यों बोल रही है कि तू अपनी बीबी जैसा बनता जा रहा है?

शाला 91.2 MHz पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

दोस्तों, आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: जूही,
1: क्या है?
0: क्या है ये?
1: आपने तो कहा था जब तक डस्टबिन ना मिले कचरा अपने पॉकेट में रखना, पॉकेट फुल हो गए। छोटी आदतों से ही होता है बड़ा बदलाव।
2: एक नई आदत अपनाते, जब तक डस्टबिन ना मिले
1: इंडिया के हर पॉकेट को ही डस्टबिन बनाते।

0: रवि जी, मैं से तो सुभाष चटनीस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यहीं हॉस्टल में पढ़ता है?
1: जी सर।
0: वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है।
2: ड्रग्स?
1: अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात कराइए प्लीज।
0: अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा।
1: अरे नहीं सर, कोई तो उपाय होगा।
0: जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर अंकल तू स्मार्ट निकले।
3: अबे चल आ जा।
4: वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया, मेरा गेम ओवर।
3: चले, असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत करें।
5: रुको, सोचो और एक्शन लो।

शिव और पार्वती के प्रिय पुत्र, रिद्धि सिद्धि के दाता, विघ्नहर्ता गणपति बप्पा आ रहे हैं अपने भक्तों के द्वार आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने, हर विघ्न बाधा को दूर भगाने और आपकी हर मंगल कामना पूर्ण करने। तो आप सभी को आ रहे इस साल के गणेश चतुर्थी के इस पावन त्योहार की ढेर सारी

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: सुनो, क्या मैं बदतमीज हूँ?
3: Oh, no!
4: नहीं।
2: क्या मैं बहुत बड़बड़ करता हूँ?
4: नहीं।
2: क्या मुझे बोलने की अक्ल नहीं है?
4: नहीं।
2: क्या मुझ में दिमाग की कमी है?
4: नहीं। तो
2: क्या मैं अगली दिखता हूँ?
4: अरे नहीं बाबा।
2: तो फिर मम्मी ऐसे क्यों बोल रही है कि तू अपनी बीवी जैसा बनता जा रहा है?

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं सुंदरकांड। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।